मेडिवेब 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 24वीं तिथि तदनुसार 15 सितंबर 2026 हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56:37 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर। 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को

0: एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित 6वें राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ईश्वर की आराधना में जब स्वर भक्ति से जुड़ते हैं तो संगीत केवल सुनाई नहीं देता बल्कि मन को भीतर तक स्पर्श करता है, और हनुमान जी की शक्ति, साहस, समर्पण और भक्ति के प्रतीक हैं। उनकी उपासना में गाया गया प्रत्येक स्वर मन में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार करता है। तो आइए श्रद्धा और आस्था के साथ सुनते हैं ये मनोहारी भजन।

भक्ति का स्वर केवल उल्लास का स्वर नहीं, कभी कभी उसमें विरह, प्रतीक्षा और अपने आराध्य के प्रति गहरी तड़प भी सुनाई देती है। जब मन अपने प्रियतम प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल होता है तो समय का एक एक क्षण लंबा प्रतीत होता है।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। राम भक्ति की परंपरा में हनुमान जी का स्थान अद्वितीय है। वे भक्ति में विनम्रता, कर्म में पराक्रम और हृदय में श्री राम के प्रति अटूट समर्पण का संदेश देते हैं। उनके नाम का स्मरण मन में साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।
1: अतुलित बलधाम कृपा निधान श्री राम भक्त हनुमान मूर्तिमान भक्ति और सेवा मूर्ति है। भक्ति और सेवा का भाव उनके नाम में स्पष्ट दिखाई देता है। ह का अर्थ है शिव, आनंद, आकाश आदि। नु का अर्थ है पूजन, प्रशंसा। मां लक्ष्मी का द्योतक है। न बल, युद्ध, वीरता आदि का सूचक है। अहिल्या पुत्री अंजना के पुत्र हैं, इसलिए आंजनेय है। मरुत के अंश हैं, इसलिए मारुति हैं। कपिगोत्र में श्रेष्ठ होने से कपीश है। पवन के क्षेत्रज पुत्र होने से पवन सुत है। इनके पिता का नाम केसरी था, इसलिए केसरी नंदन कहे जाते हैं। ऐसी विभूति के सामने इस जगत का कोई भी प्राणी श्रद्धा से नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकता।

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुरु को ज्ञान, मार्गदर्शन और आत्मबोध का प्रकाश माना गया है। गुरु वह शक्ति है जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर जीवन को सही दिशा दिखाती है। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक विकास की यात्रा भी है।

0: इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर विचार बिंदु। आज सुनिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के विचार।
1: बच्चे को सिर्फ ऐसा स्कूल और समाज ही नहीं चाहिए जहां बड़ी आयु के लोगों का बोलबाला हो, बल्कि एक ऐसी दुनिया भी चाहिए जिसका वो छोटा सा नागरिक हो और उस दुनिया को कानून, अधिकार, कर्तव्य और मनोरंजन की सारी चीजें उसकी योग्यताओं और अयोग्यताओं के अनुसार उपलब्ध हों। हम एक दूसरे को सिखाते हैं, लेकिन हम में से आधे लोग बाकी आधे लोगों को इतना बुरा समझते हैं कि उनसे बात तक नहीं करना चाहते। हजारों मंदबुद्धि ईमानदार लोग अपने बच्चों को मारते पीटते हैं, क्योंकि वो खुद अपने बचपन में मारपीट के शिकार बने थे। कहा जाता है कि अगर आप बिल्ली को पकड़कर एक बार नहला दें तो फिर वो कभी नहीं नहाएगी। पता नहीं ये बात कहां तक सही है, लेकिन इससे एक बात निश्चित है कि अगर आप किसी को कोई चीज जबरदस्ती सिखलाते हैं तो वो कभी नहीं सीखेगा। याद नहीं आता कि मुझे कभी पढ़ना या लिखना सिखाया गया हो, अतः मैं समझता हूं कि ये दोनों गुण मुझ में जन्म से ही थे। इसके विपरीत बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये सोचकर बड़ी कड़वाहट भर जाती है कि उन्हें किस प्रकार मजबूर होकर पढ़ना लिखना सीखना पड़ा था। हालांकि मेरे दिल में ऐसे शिक्षक के लिए घृणा का भाव है जो इतना असभ्य और अयोग्य हो कि बच्चे को रुलाए बिना पढ़ना सिखा ही ना सके। तथापि पढ़ने लिखने से अनजान रहने के बजाय मैं इस बात को कहीं अच्छा समझता कि अगर मुझे किसी अयोग्य और असभ्य व्यक्ति के पास मजबूर होकर और आंसू बहाकर भी पढ़ना लिखना सीखना पड़ता। मुझे विश्वास है कि अगर लोगों को इस बात का चुनाव करना हो कि वो ऐसे स्थान पर रहना चाहते हैं जहां बच्चों का शोरगुल हो या ऐसे स्थान पर जहां बच्चों की आवाज तक सुनाई न देती हो, तो अच्छे स्वभाव और अच्छी समझ के लोग, सभी व्यक्ति, ज्यादातर खामोशी की अपेक्षा लगातार शोर सुनना पसंद करेंगे। खेलकूद करने वाला बच्चा शोर मचाएगा और उसे मचाना ही चाहिए। बच्चे को अपना अधिकांश समय खेलकूद में बिताना चाहिए, जबकि बड़ी उम्र के व्यक्ति को अपना अधिकांश समय काम में बिताना चाहिए। मुझे स्कूल में पढ़ते हुए बहुत अधिक नुकसान हुआ है और फायदा बिल्कुल नहीं। वहां बच्चे की आत्मा को जैसे गंदगी में घसीटा जाता था। बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा के स्वरूप को बदलना जरूरी है। हमारे स्कूलों में सामंतवादी नैतिकता सिखाई जाती है जो व्यापार द्वारा दूषित हो चुकी होती है। हमारे स्कूल महान और सफल व्यक्तियों के रूप में सैनिक विजेताओं, लूटखोर राजाओं और मुनाफाखोर व्यापारियों के जीवन से उदाहरण देते हैं। हमारे स्कूलों में आज भी नई पीढ़ी के बच्चों को 15वीं शताब्दी की नैतिकता सिखाई जाती है। कौन नहीं जानता कि बच्चे को कौन सा मार्ग ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जिन मार्गों का पता अब तक लगाया गया है वो हमारी सभ्यता को भयानकता की ओर ले जाने वाले हैं। इनके बारे में रस्किन ने कहा था कि ये रास्ता हमें उधर ले जाता है जहां लोग पेट के लिए आपस में झगड़े कर रहे हैं। शिक्षा केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। वास्तव में शिक्षा की आवश्यकता बड़ी उम्र के लोगों को अधिक है और उन्हें जीवन भर मिलनी चाहिए। बच्चे को रोजाना चाहे आधा घंटा के लिए ही हो, कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जो उसके समाज के लिए हितकर हो। बच्चों को शिक्षा के नाम पर गुलाम नहीं बनाया जाना चाहिए, उन्हें घूमने फिरने की पूरी आजादी होनी चाहिए। अगर शिक्षकों ने मुझे यह आजादी दी होती तो वो देखते कि मैं ज्यादा देर तक कक्षा में न रहता और जल्द से जल्द दरवाजे की ओर बढ़ता और बाहर निकल जाता।

0: आप पूछ सकते हैं कि मैं कहां जाता? मैं गांव में जाता, या राष्ट्रीय गैलरी में जाता, या फिर ऐसे पुस्तकालय में जाता जहां स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें न होती और मैं बहुत रूखी और कठिन समझी जाने वाली पुस्तकें पढ़ता। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिन्हें कम शिक्षा मिली होती है उन्हें सबसे ज्यादा जानकारी होती है। कारण यह है कि शैक्षिक परिवेश में पराधीनता का भाव बौद्धिक विकास को कुंठित कर देता है।
1: जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के विचार अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम था विचार बिंदु। आकाशवाणी का यह प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुने इस पखवाड़े के कृषि कार्य के अंतर्गत डॉक्टर शैलेंद्र कुमार से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत।
1: किसान भाई, मौजूदा समय खरीफ के फसल के बाटे और यह समय जो खरीफ के प्रमुख फसल धान के है, तो धान में बहुत ऐसे काम हैं जो खेती बाड़ी में जरूरी होते हैं, तो धान के साथे साथे खरीफ के जौन भी और भी फसल यहाँ यह पखवाड़े में का कीन जा सकत है, आज यह विषय के लिए जानकारी दे के खातिर हमारे बीच में डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह हैं और यह विषय का विशेषज्ञ हैं। आपके और सर हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। हम अपने किसान भाइयों के लिए जाने चाहब कि जौन खास करके सितंबर के महीना बाटे एह पखवाड़ा में जौन खरीफ खास करके फसल बाटे धान बा, एम कौन कौन से कृषि कार्य किए जा सकत।
2: किसान भाइयों नमस्कार। इस माह में सितंबर माह में सब्जियां हैं आपकी, धान है, अरहर है, उर्द मूंग है, फलदार वृक्ष हैं, फूल हैं, सभी में कृषि कार्य किए जाते हैं। जैसे कि अभी बहुत सही समय है, इस समय बरसात अधिक हो रही है और हमारे किसान भाइयों की धान की फसल में अभी तक देखने में आया है कि कोई भी कीट रोग व्याधि से पौधे ग्रसित नहीं है। लेकिन हमारे किसान भाई कुछ काम ये करें कि जो कि हमारी धान की फसल है, धान की फसल में कुछ पुष्पा अवस्था पे और कुछ दुधिया अवस्था पे हैं। जो फसलें हमारी, जिन किसान भाइयों की धान की फसल दुधिया अवस्था पे, वो किसान भाई पोटाश का छिड़काव करें जिससे कि उनके दाने जो हैं चमकीले पैदा हों, जिससे कि किसान भाइयों को अधिक मुनाफा मिल सके। साथ ही साथ ये भी कि कुछ खरपतवार जो होंगे उन खरपतवारों को हमारे किसान भाई धान की फसलों में से निकालें, और साथ ही साथ उन लोगों को ये ध्यान देना है कि कुछ फफूंदी नाशक, क्योंकि जल भराव ज़्यादा हो रहा है तो कुछ फफूंदी नाशक की समस्या आ सकती है फसलों में, तो इसलिए हमारे किसान भाई फफूंदी नाशक के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा है इस दवा का प्रयोग करें, या डाइथिनम 45 दवा है इस दवा का प्रयोग करें। इनके प्रयोग करने से जितने भी फफूंदी नाशक रोग हैं उन किसान भाइयों को वो रोगों से बचेंगे। थोड़ा गंदी बग की समस्या देखने में आ सकती है जहाँ वर्षा कम हुई है, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अधिक हुई है वहाँ पे किसान भाइयों की धान की फसल सुरक्षित है, जहाँ पे वर्षा कम हुई है वो किसान भाई रोगों से बचाने के लिए और कीड़ों से बचाने के लिए जैसे कि यूनालफास दवा है उस दवा का प्रयोग करें। जहाँ दीमक की समस्या ज़्यादा दिखाई दे रही हो वो किसान भाई क्लोरपाइरीफास दवा है उसका प्रयोग करें, तो जहाँ सड़न की समस्या दिखाई दे रही हो वो किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा है। इसके साथ साथ एक दवा आती है काटाप हाइड्राक्लोराइड दवा, ये काटाप हाइड्राक्लोराइड दवा का प्रयोग करें। जो किसान भाई अगर नहीं मिल पा रही है वो किसान भाई 4-8-10 जो दवा आती है 4-8-20 है इन दवाओं का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे किसान भाइयों की धान की फसल बढ़िया चल सकती है। जिन किसान भाइयों ने अगर SRI विधि से अगर अपने धान की फसल को लगाया हुआ है वो किसान भाई जहां वर्षा कम हो रही है वो किसान भाई उसमें सिंचाई की व्यवस्था करें, खरपतवार मुक्त रखें जिससे कि, और रसायनों का प्रयोग करें जिससे कि उनको अच्छी पैदावार मिल सके।
1: डॉक्टर साहब, ये तो खरीफ के जो प्रमुख फसल धान बाटे उनके बारे में बातचीत भाई, लेकिन एक साथे साथे किसान भाई दलहन की भी खेती करता है, तिलहन की भी खेती करता है, तो ओमा कौन से प्रमुख कृषि कार्य

0: किन जा सकते हैं इसमें।
1: देखिए, अगर हमारे किसान भाई जो अरहर की खेती कर रहे हैं, और जिन किसान भाइयों ने अरहर जो है अगर अगस्त के माह में बुवाई कर दी है, वो किसान भाई उसकी निराई गुड़ाई करें, खरपतवार मुक्त रखें। जिन किसान भाइयों ने अगर नहीं कर पाई है, वो सितंबर के मध्य माह में अगर हमारे किसान भाई अरहर की बुवाई कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बीज शोधन करके उसकी बुवाई करें, बीजों में कोई भी रोग व्याधि ना आने पाए उसके लिए हमारे किसान भाई ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन करें। जो किसान भाई रसायन दवाओं का प्रयोग करना चाहते हैं, वो थीरम है, कार्बंडाजिम है, उन दवाओं से का प्रयोग करें, और बुवाई बीज शोधन करने के बाद ही बुवाई करें। साथ ही साथ जो तिलहन की जिन किसान भाइयों ने बुवाई कर रखी है, और जहाँ पे वर्षा क्योंकि इस बार देखने को पाया गया कि अधिक हुई है, वो किसान भाई जल निकास की व्यवस्था करें, क्योंकि अधिक वर्षा से हमारी तिलहनी फसलें और दलहनी फसलें खराब हो जाती हैं, और उनकी निराई गुड़ाई करके हमारे किसान भाई किसी भी फफूंदी नाशक का प्रयोग करें, जैसे कि ट्राइकोडर्मा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। खेतों की गुड़ाई करके थोड़ा सा धूप लगे जिससे कि जड़ें सड़े नहीं, जिससे कि उनको अरहर की और दलहनी तिलहनी फसलों की अच्छी पैदावार मिल सके।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाई अनाज उत्पादन के साथे साथे सब्जी की भी खेती करता है, तो सितंबर माह में भाई जो सब्जी की खेती खास करके होत बाटे और आवे वाले समय में, तो कौन कौन से कृषि कार्य हैं खास करके सब्जी की खेती के लिए, ओके बारे में बताना।
1: सब्जियों की जहाँ तक बात है, हमारे किसान भाई इस सितंबर माह में जिन किसान भाइयों ने टमाटर है, शिमला मिर्च है, पात गोभी है, फूल गोभी है, इनकी नर्सरी नहीं डाली है, वो किसान भाई नर्सरी डालें। लेकिन नर्सरी डालते समय ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नर्सरियों में ही हमारी जो सब्जियां हैं जैसे मिर्चा, टमाटर, बैंगन है, इनमें लीफ कर्लिंग वायरस की समस्या देखने को मिलती है, जो कि किसान भाई अमूमन भाषा में अपनी भाषा में बोलते हैं कि लुटर गई है हमारी मिर्च की पौध। उसके बचाव के लिए अगर हमारे किसान भाई अगर जिस स्थान पे अपनी नर्सरी डाल रहे हैं, उन स्थानों को ऊंचे स्थान का चयन करें, वहाँ 3:2 के रेशियो में गोबर की सड़ी हुई खाद, मिट्टी और रेतीली बालू मिला के बेड बनाएं, और अपने बीजों का शोधन करके बीजों की बुवाई करें, लो टनल पॉली हाउस की व्यवस्था करें, जिससे कि उसमें नर्सरी तैयार होगी तो हमारे किसान भाइयों की पौधे जो है सुरक्षित रहेंगे, उसमें लीफ कवरिंग वायरस से वो ग्रसित नहीं होने पाएंगे। किसान भाइयों को इसी माह में मूली है, गाजर है, पालक है, इनकी बुवाई करें जिससे कि इनको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। जिन किसान भाइयों ने अदरक व हल्दी की बुवाई कर चुके हैं, वो लोग किसान भाई सिंचाई करें, जहाँ पानी अधिक बरसा है वो किसान भाई जल भराव की स्थिति है तो उसे पानी की निकालने की व्यवस्था करें। अगस्त के महीने में जिन किसान भाइयों ने अगर नर्सरियाँ डाली हैं अपनी, वो किसान भाई पौधरोपण का कार्य करें जिससे कि हमारे किसान भाई को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो। और अगेती गोभी में की जो किसान भाइयों ने रोपाई कर चुके हैं, वो किसान भाई निराई गुड़ाई का काम करें। अगेती मटरों की बुवाई करें, जैसे कि आप जानते हैं हमारे किसान भाई सब्जी मटर जैसे कि अर्किल प्रजाति है, आज़ाद मटर 7 है इत्यादि को इनकी सितंबर माह तक इनकी बुवाई कर दें, जिससे कि किसानों को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। जो किसान भाई भिंडी की बुवाई कर चुके हैं और उसमें क्योंकि वर्षा अधिक होने के कारण क्षति अधिक हो सकती है, वो किसान भाई उसमें से पानी की निकालने की व्यवस्था करें, कुछ ना कुछ कीटनाशकों का प्रयोग करें, जैसे इंडोसल्फान है, मोनोक्रोटोफास है, इन दवाओं का छिड़काव करें, या किसान भाई घरेलू स्तर पर ही अपना नीम का तेल का छिड़काव करें, या हमारे किसान भाई गुड़ और चीनी का इनका अगर जैगरी सोल्यूशन बना के और इसी में अगर आप थोड़ा सा बेसन वगैरह मिला के भी अगर छिड़काव करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को नाइट्रोजन की पूर्ति उनकी होगी और उनको अच्छा मुनाफा भी प्राप्त होगा। जो किसान भाई हमारे अगेती आलू की फसल लेना चाहते हैं, वो किसान भाई इस समय आलू की सितंबर माह में आलू की बुवाई कर दें, जैसे कि कुछ प्रजातियां हैं वो मैं किसान भाइयों को बता दे रहा हूँ। चिप्सोना 1 है, चिप्सोना 2 प्रजाति है, जिससे कि इंडस्ट्रियां वगैरह लेके इनके चिप्स बना के बेचती हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। जो किसान भाई सब्जियों के लिए खेती करना चाहते हैं, वो किसान भाई कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी अलंकार है, कुफरी बादशाह है, इन प्रजातियों को लगाएं जिससे कि हमारे किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा और सब्जी की पूर्ति होगी।
0: इस समय देखा जाए सब्जी का उत्पादन कराता है तो हमारा भी कुछ प्रमुख कृषि कार्य हैं जैसे जो किया जा सकता।
1: हाँ, कद्दू वर्गीय जितनी भी इस समय हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियाँ हैं, जैसे कि लौकी है, खीरा है, नेनुआ है, ये करेला है, ये अगर देखने में ये पाया गया है कि इस बार वर्षा अधिक होने के कारण सारी सब्जियों के पौधे जो है खराब हो चुके हैं। जो पौधे हमारे किसान भाइयों ने ऊपरी स्तर की जिनकी खेती है, ऊंचे स्थानों पर जिन लोगों ने उनकी खेती की है, वो किसान भाई इस समय

0: क्योंकि कीड़ों का प्रकोप देखने में बहुत आ रहा है, तो कीड़ों के प्रकोप के लिए क्योंकि सब्जियां जो है हम लोग हमारे किसान भाई डायरेक्ट उनका सेवन करते हैं, तो मैं कहता हूं हमेशा उनसे कि भाई अगर आप लोग इनका डायरेक्ट सेवन कर रहे हैं तो कीटनाशकों का प्रयोग ना करके घरेलू स्तरों पर ही प्रयोग करें। जैसे कि हमारा लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के अगर हमारे किसान भाई छिड़काव कर देते हैं तो कीड़े मकोड़ों की रोकथाम होती है। जैसे कि अगर हमारा ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा का अगर 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर दें तो फफूंदी नाशक रोग से बचाव हो सकता है। इन कुछ तरीकों से हमारे किसान भाई अपनी फसलों को, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, उनको बचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप आयन और यहाँ पखवाड़े जो कृषि कार्य बाटे आकर जानकारी दें, निश्चय रूप से हमारे किसान भाई को इससे लाभ मिले। आपको जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुन रहे थे इस पखवाड़े के कृषि कार्य के अंतर्गत डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इसमें सुनिए डॉक्टर आशुतोष राय की वार्ता, ईयरफोन के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाली हानियां।
1: ईयरफोन लगाने और उससे होने वाली हानियां, उसके बारे में आज बताना चाहूँगा। आजकल हम लोग देखते हैं कि हर इंसान, चाहे वो एडल्ट हो, बच्चा हो, खासतौर से स्टूडेंट्स हैं, कोचिंग जाने वाले हैं, और इवन आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, तो ईयरफोन का जो यूज़ हो गया है, इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। और गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके मेट्रोस तक, हर इंसान ईयरफोन कान में लगाए हुए आजकल चला जा रहा है। चाहे वो मेट्रो में बैठा है, बस में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, क्लास कर रहा है, म्यूजिक्स भी लोग सुन रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो भी ईयरफोन लगे रहते हैं। तो आज मैं उसके फ़ायदे और नुकसान ईयरफोन से होने वाले बताना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि ईयरफोन इसलिए लगाया जाता है कि जो आपके बगल में बैठा हो या आपके साथ दूर हो, उसको आपकी म्यूज़िक या आपके क्लास या कुछ भी जो आप सुनना चाहते हो उसको सुनाई ना दे, वो डिस्टर्ब ना हो, तो आप दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, इसके लिए ईयरफोन लगाया जाता है। लेकिन उसके नुकसान ये हैं कि आपका जो कान का नेचुरल तरीका है आवाज़ सुनने का, वो नेचुरल नहीं रह जाता है। ईयरफोन में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे साउंड को कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने का, या मास्किंग होता है, बैकग्राउंड नॉइज़ मास्क, बहुत तरह के ईयरफोन्स आते हैं, बहुत कॉस्टली भी, बहुत सस्ते भी। तो जो सस्ते वाले होते हैं उनमें कोई भी फिल्टर नहीं होता है मास्किंग का, साउंड कंट्रोल का, अचानक से साउंड तेज़ हो गई, तो एक तो ये कारण है कि कान में बहुत सारे एकॉस्टिक इंजरी जिसको कहते हैं, साउंड से जो इंजरी, जैसे हम लोग देखते थे पहले कि दिवाली में पटाखे बजाते हैं लोग और पर्दा फट जाता है तेज़ पटाखे से, तो आजकल वो ईयरफोन से भी कभी कभी होने लगा है, जो लो क्वालिटी के ईयरफोन्स हैं। तो एक तो होता है कि पर्दा फट गया, दूसरा होता है कि कान की नसों में जो आवाज़ सुनती है नसें, उनमें एकॉस्टिक ट्रॉमा, उनमें साउंड से एक चोट लग जाती है कभी कभी तेज़ साउंड की वजह से, तो उसकी वजह से भी सुनाई देना कम हो जाता है या कान में आवाज़ आने लगती है, जिसको हम लोग टिनाइटस कहते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये आदमी में बहरापन हो जाता है, उसको सुनाई नहीं देता, और सिर दर्द भी होता है कभी कभी लोगों, कुछ लोगों को बहुत सिर दर्द होता है। तीसरा ये कि कान में दर्द, अगर इल फिटिंग ईयरफोन्स हैं, जैसे रबड़ के होते हैं, कड़े रबड़ हैं, सिलिकॉन नहीं है, जो ये ईयर के अंदर डालते हैं, तो वो चारों तरफ चमड़ा लाल कर देगा और दर्द करेगा, तो ये भी एक कारण है। दूसरा ये कि जब आप दिन भर कान में लगाए रहते हैं तो अंदर हवा नहीं जा रही है, मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, तो बरसात में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या वैसे भी उसमें और दर्द भी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, चमड़ा लाल हो जाता है, तो दर्द है, बहरापन है, कान में आवाज़ है, इन्फेक्शन है, ये सब चीज़ें ईयरफोन के मिसयूज़, यूज़ तो नहीं रोक सकते लेकिन मिसयूज़ से होता है, जिसको हमें देखना पड़ेगा। इसके तरीके ये हैं कि हम ईयरफोन एक तो अच्छी क्वालिटी का लें, उसमें कंजूसी ना करें,

0: कान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि ये बहुत सस्ता वाला ले, जैसे हम चश्मा अच्छा लगाते हैं, अच्छा लेंस लगाते हैं, उसी तरह कान में भी हमें अच्छा ईयरफोन लगाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, ब्रांडेड हो। दूसरा ये है सॉफ्ट हो उसका जो ईयर टिप हो, या फिर ईयरफोन की जगह हेडफोन लगाएं जो ऊपर से लगता है, उसमें कान अंदर से दबता कम है, कान के चमड़े कम दबता है, उसमें दर्द कम होता है, तो कान में अंदर मॉइस्चर या गंदगी ये जमा नहीं होती है। ईयरफोन से क्या होता है, जो अंदर वैक्स बन रहा है, जो उसको हम लोग घूट कहते हैं, वो कभी कभी अंदर पुश हो जाता है। तो अच्छा ईयरफोन यूज़ करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, हर समय इस्तेमाल ना करें, साफ़ सुथरा रखें और अपने को बचा के रखें हाई साउंड से, बहुत लो वॉल्यूम पे सुने, इससे आपका कान बचा रहेगा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आशुतोष राय की वार्ता, ईयरफोन्स के ज़्यादा इस्तेमाल से होने वाली हानियाँ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। रात 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम सुनिएगा, इसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ 7 बजे से, और फिल्मों से भजन 7:10 पर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन, दोपहर 12:15 पर पंडित गोपाल दास का क्लैरिनेट वादन और रात 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन। कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज का समय होगा 8:45 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:00, 10:05 पर, 11:30 पर और रात 8:00।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोक कुमादरी में 10:05 पर कलाकार होंगे उदयराज सिंह, मोहिनी श्रीवास्तव और प्रशांत मिश्र और साथी योर लोगों। कार्यक्रम एक ही कलाकार से दिन में 11 बजे सुनिएगा। अपने फोन कॉल्स पर आधारित अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुनिए। कार्यक्रम हेलो फरमाइश पे 12:30 पर प्रस्तुति होगी मधु कुमार की।

दिन में 1:15 बजे ग्रामीण बहनें सुनेंगी पनघट कार्यक्रम में पूर्णिमा जेटली से की गई बातचीत। माँ बाप को सम्मान दें, सामान नहीं। साथ ही रश्मि टंडन से लोकगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 2:30 पर होगा। कार्यक्रम धरती के गीत में कृष्ण कुमार सत्यार्थी से लोकगीत सुनिएगा 5:00 बजे। और युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी 5:15 पर होगा।

0: 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे राधे श्याम कुशवाहा और साथियों से लोकगीत, साथ ही श्यामा प्रसाद पांडे से रामायण पाठ। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी 6:50 पर। 7:30 पर संस्कृत कार्यक्रम में वार्ता होगी दूरदर्शनम माध्यमस्य विश्वसनीय स्तर। 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा। तो ये थे हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर

0: मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: सुरंगेन विस्फुटः परम अमेरिका देशस्य मध्य कमांड विभागेन अस्य खंडनं कुर्वता प्रतिपादितं यत् ईरानीय ड्रोन इत्यनेन एव अस्य पोतस्य उपरि आक्रमणं विहितम्। नेपालस्य विद्युत् संकटम् अपाकर्तुं भारत सर्वकारः अग्रे आगतः। भारतेन दिसंबर मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रतिदिनं विद्युत् निर्यातम् अन्वामोदी। नेपाले आप्लावेन जलविद्युत् परियोजनाः विनष्टाः सञ्जाताः। प्रकृतिकोपस्य संकेतं ददत् भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः प्रत्यपादयत् यत् अद्य दिल्ली हरियाणा असम प्रभृति राज्येषु अतिवृष्टिः भविष्यति। विभागेन अनेन प्रतिपादितं यत् दक्षिण भारते अपि अतिवृष्टिः भविष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। स्वर था हरिहरन का और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन। पहला भजन हमने लिया है फिल्म आदि पुरुष से। आवाज है सचेत टंडन और परंपरा की।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म देव का ये भजन, आवाजें थी, आवाज थी अभिजीत की।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का

0: देसी पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर। 7:20 होने को हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए तक के कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की। 400 राज्य विधि अधिकारियों को दिया जाएगा टैबलेट। लोकायुक्त संगठन के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा जन विश्वास पर खरा उतरना लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी। युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपेल अलुपू ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की खूबसूरती और स्थापत्य कला को सराहा। और हिंदी दिवस पर सर्वोच्च न्यायालय ने की जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की है। इसका लाभ हाई कोर्ट और जिला अदालतों में सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को मिलेगा। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की ओर से कल आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने 400 राज्य विधि अधिकारियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए टैबलेट देने की घोषणा भी की।
1: आधुनिक तकनीक आज की आवश्यकता है, जिससे उन्हें जानकारी मिल सके कि कौन से शासन से जुड़े हुए मामले माननीय न्यायालय के पास आ रहे हैं। इसके लिए 400 ऐसे राज्य विधि अधिकारियों को हम लोग टैबलेट की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। और जो यहाँ पे सक्रिय प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उन सभी अधिवक्ताओं को हम लोग कैशलेस की 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा भी उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ भी यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रदेश के लोकायुक्त संगठन के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। लखनऊ में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त प्रशासन की स्मारिका और सूचना पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जन विश्वास पर खरा उतरना लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी होती है।
1: लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है, वह किसी भी संवैधानिक संस्था में एक सामान्य नागरिक का विश्वास। गुड गवर्नेंस एक पब्लिक ट्रस्ट पर निर्भर करता है। अगर जनता का विश्वास नहीं है तो हम सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी हमारी विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं पर उसी विश्वास के साथ गौरव की अनुभूति कर सके।
0: प्रदेश में ईवीएम वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग FLC को लेकर कल लखनऊ में 35 जिलों के निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों और FLC सुपरवाइजरों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री रिडवा ने बताया कि ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग आगामी चुनाव की तैयारियों का पहला महत्वपूर्ण चरण है।
2: इस कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि यहाँ से जाने के बाद विभिन्न जिलों में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं जिससे चुनाव होता है, उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग FLC शुरू हो गई। फर्स्ट लेवल चेकिंग पहला कदम है चुनाव की तैयारी का, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।

0: होगा वीवी पैट को, जो इंस्पेक्शन टेक्निकली देखा जाएगा सारे पैरामीटर्स सही है नहीं।
1: भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके तहत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण के म्यूल अकाउंट अथवा साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने भारत आई युगांडा के उपराष्ट्रपति।

0: आर्थिक लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण के म्यूल अकाउंट अथवा साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने भारत आई युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपेल अलुपो ने कल आगरा में ताजमहल का दीदार किया। एक रिपोर्ट।
1: युगांडा के उपराष्ट्रपति के आगरा पहुंचने पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच युगांडा की उपराष्ट्रपति ताजमहल परिसर पहुंची, जहां उन्होंने स्मारक की खूबसूरती को निहारा और डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया। इस दौरान गाइड ने उपराष्ट्रपति को ताजमहल के इतिहास, स्थापित कला और संगमरमर पर की गई बारीकी पच्चीकारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने ताजमहल की खूबसूरती और स्थापित कला की प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति आगरा दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से शुरू हो रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत उनकी कर्मभूमि वाराणसी से लेकर उनकी जन्मभूमि वडनगर तक की सेवा यात्रा निकलेगी। यह जानकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत जोशी ने कल वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि सेवा यात्रा का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होगा। यात्रा के दौरान पौधों पर स्वच्छता अभियान, लाभार्थियों से संवाद, अस्पतालों में फल वितरण, पोषण किट वितरण और क्षय रोग उन्मूलन से जुड़े सेवा कार्य किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना और लोगों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों को समझना आसान बनाना है।
2: इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह पहल लोगों और विशेष रूप से दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए शुरू की गई है। इससे वे महत्वपूर्ण फैसलों, उनके प्रभाव और आगे की कार्रवाई को अपनी परिचित भाषा में आसानी से समझ सकेंगे। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर हैं। इससे हजारों की आबादी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रदेश सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल मऊ के मधुबन और दुबारी क्षेत्र में बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों का हाल चाल जाना और उन्हें राहत सामग्री प्रदान की। शाहजहांपुर में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने जलालाबाद विधायक हरि प्रकाश वर्मा के साथ बाढ़ प्रभावित ग्राम कसारी का निरीक्षण किया। उन्नाव के भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक आशुतोष शुक्ला ने कल 90 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। फतेहपुर की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वस ने कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों बड़ाहार, सदनापुर एवं बिंदकी फार्म का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटा है।
3: जिला प्रशासन सतर्क है और कॉन्स्टेंटली वाटर लेवल्स को मॉनिटर कर रही है और कैसे लोगों में प्रॉपर सुविधा पहुंचाई जा सके और कैसे लोगों को कोई असुविधा ना हो उसका पूरा ध्यान।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 18 सितंबर तक कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

0: ने अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए तक के कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की। 400 राज्य विधि अधिकारियों को दिया जाएगा टैबलेट। लोकायुक्त संगठन के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा जन विश्वास पर खरा उतरना लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी। युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपेल अलुपो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की खूबसूरती और स्थापत्य कला को सराहा। और हिंदी दिवस पर सर्वोच्च न्यायालय ने की जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें सुनिए पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन। राग है भटियार। तबले पर संगत की है श्रवण कुमार भट्ट ने। विलंबित रचना द्रुत रचना एक ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन। राग था भटियार, तबले पर संगत की थी श्रवण कुमार भट्ट ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए वाद्य वृंद रचना

92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 8 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद यूपीआई लेनदेन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
2: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्री और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात,

0: समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेथकिन ने भारत और दक्षिण अमरीका के प्रमुख व्यापार समूह मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
4: Given a choice, a judicial officer,
5: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
1: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमवीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है।

0: यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिनभर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा ₹2000 तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ, भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू।

0: आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं नमस्कार, आज है 15 सितंबर और आज का ये दिन अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन एक हमारे देश और दुनिया में जुड़ी चार महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं। आज है दूरदर्शन दिवस, अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और आज के ही दिन दुनिया भर में लिम्फोमा जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। ये वाकई दिलचस्प संयोग है कि तकनीक, संचार, लोकतंत्र और स्वास्थ्य, ये चारों ही क्षेत्र किसी न किसी रूप में हमारे रोजमर्रा के जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। तकनीक हमें आगे बढ़ाती है, संचार हमें जोड़ता है, लोकतंत्र हमें अधिकार देता है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हमें सुरक्षित रखती है।

पहले हम बात करते हैं दूरदर्शन दिवस की। भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत 15 सितंबर मतलब आज ही के दिन 1959 को दिल्ली में एक प्रायोजक सेवा के रूप में हुई और उस समय इसे टेलीविजन इंडिया कहा जाता था। शुरुआत में हफ्ते में कुछ ही घंटों का प्रसारण होता था जिसमें शिक्षा, कृषि और सामुदायिक विकास से जुड़े कार्यक्रम दिखाए जाते थे। 1965 में इसका नाम बदलकर दूरदर्शन रखा गया और नियमित समाचार बुलेटिन शुरू हुए। धीरे धीरे दूरदर्शन का विस्तार पूरे देश में हुआ। 1975 से 76 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शंस टेलीविजन एक्सपेरिमेंट यानी साइट कार्यक्रम के तहत देश के दूर दराज गांवों में शिक्षा और कृषि से जुड़ी जानकारी पहुंचाई गई, जो उस दौर की सबसे बड़ी शैक्षणिक पहलों में गिना जाता था। फिर 1982 में एशियाड खेलों का प्रसारण हुआ, तभी रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई और ये भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। दूरदर्शन ने भारतीय समाज को जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाई। हम लोग, बुनियाद, रामायण, महाभारत, कृषि दर्शन, चित्रहार जैसे कार्यक्रमों ने करोड़ों घरों तक मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और जागरूकता भी पहुंचाई। कहा जाता है कि जब रामायण और महाभारत का प्रसारण होता था तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। पूरा देश मानो एक साथ एक ही पर्दे से जुड़ जाता था। ये दूरदर्शन की सबसे बड़ी ताकत थी, विविधता से भरे इस देश को एक सूत्र में पिरोना।

आज दूरदर्शन के पास देश भर में अनेक क्षेत्रीय चैनल हैं जो अलग अलग भाषाओं संस्कृतियों को समेटे हुए हैं। डीडी न्यूज, डीडी किसान, डीडी भारती जैसे चैनल आज भी करोड़ों लोगों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाते हैं। निजी चैनलों की भीड़ में भी दूरदर्शन आज दूर दराज के गांवों तक जानकारी पहुंचाने का एक भरोसेमंद और सुलभ माध्यम बना हुआ है, खासकर उन इलाकों में जहां आज भी निजी केबल या इंटरनेट की पहुंच सीमित।

आज का दिन उन सभी इंजीनियरों, तकनीशकों, उद्घोषकों और कलाकारों को याद करने का है जिन्होंने भारतीय प्रसारण की नींव रखी और उस माध्यम को सलाम करने का है जिसने पीढ़ियों को जोड़े रखा। और अब बात करते हैं अभियंता दिवस की।

हर साल 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और ये दिन समर्पित है भारत रत्न डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के एक छोटे से गांव में हुआ। डॉक्टर विश्वेश्वरैया को आधुनिक भारत के सबसे महान इंजीनियरों में गिना जाता है। उन्होंने पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सहायक इंजीनियर के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत की। उन्होंने कर्नाटक के कृष्णराज सागर बांध सहित कई महत्वपूर्ण जल प्रबंधन परियोजनाओं की डिजाइन तैयार की। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण प्रणाली और स्वचालित फाटकों जैसे तकनीकों का आविष्कार किया, जिनका उपयोग आज भी कई बांधों जलाशयों में किया जाता है। पुणे शहर को बाढ़ से बचाने वाली प्रणाली भी उन्हीं की देन मानी जाती है।

0: वे मैसूर राज्य के दीवान भी रहे और इस पद पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा, उद्योग, बैंकिंग और कृषि के क्षेत्र में कई दूरगामी सुधार किए। उन्हीं की पहल पर मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और कई तकनीक संस्थानों की नींव रखी गई। वे मानते थे कि किसी भी देश की असली तरक्की उसके औद्योगिकीकरण और तकनीकी आत्मनिर्भरता में छिपी होती है। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 1955 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया और उनके जन्मदिन को ही 1968 से इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। और आज का ये दिन न सिर्फ भारत में बल्कि श्रीलंका, तंजानिया जैसे देशों में भी ये मनाया जाता है।
1: ये पल है वही जिसमें है छुपी

श्रोताओं, आज का दिन उन सभी इंजीनियरों के योगदान को सम्मान देने का दिन है जो सड़कों, पुलों, बांधों, बिजली, संचार और तकनीक के माध्यम से देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। चाहे वो किसी दूरस्थ गांव तक बिजली पहुंचाने वाला इंजीनियर हो या किसी शहर की मेट्रो बनाने वाला इंजीनियर, हर एक का योगदान देश की नींव को मजबूत बनाता है। इंजीनियरिंग सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि समाज की समस्याओं को सुलझाने की एक सोच है और यही सोच डॉक्टर विश्वेश्वरैया के जीवन का सार थी। और उनका एक प्रसिद्ध विचार था कि व्यक्ति को या तो काम में व्यस्त रहना चाहिए या आराम करना चाहिए, पर कभी बेकार समय नष्ट नहीं करना चाहिए। और ये सोच आज भी हर युवा इंजीनियर के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, बढ़ते हैं हम आज के तीसरे महत्वपूर्ण विषय की ओर, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में घोषणा की कि हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना और लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना। लोकतंत्र का मूल आधार है कि जनता की भागीदारी, समानता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता। एक सशक्त लोकतंत्र वही होता है जहां हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार हो, जहां चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो और जहां प्रेस स्वतंत्र हो, जहां कानून का शासन सबके लिए समान हो, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो।

श्रोताओं, बात करते हैं आज के बेहद महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषय के, लिम्फोमा जागरूकता। हर साल 15 सितंबर को दुनिया भर में विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में सही जानकारी मिल सके और समय रहते इसकी पहचान हो सके। लिम्फोमा एक प्रकार का कैंसर है जो हमारे शरीर की लसिका प्रणाली यानी लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। ये प्रणाली हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक अहम हिस्सा है, जिसमें लिम्फ नोड्स, प्लीहा, थाइमस और अस्थि मज्जा जैसे अंग शामिल होते हैं। जब इस प्रणाली की श्वेत रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती है तो लिम्फोमा की स्थिति बनती है। लिम्फोमा मुख्यतः दो प्रकार का होता है, हॉस्किन लिम्फोमा और नॉन हॉस्किन लिम्फोमा। दोनों के लक्षण कुछ हद तक मिलते हैं, लेकिन उपचार की विधि अलग अलग हो सकती है। इनके सामान्य लक्षणों में शामिल है गर्दन, बगल या कमर के गिल्टियों को बिना दर्द हुए आना, त्वचा में खुजली, हल्का बुखार बना रहना। इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय तक बना रहे तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि सही समय पर निदान होने पर लिम्फोमा के मरीज पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।

श्रोताओं, आज के दिन का मुख्य संदेश यही है कि जागरूक बने, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, अपने शरीर में होने वाले किसी भी असामान्य बदलाव को नज़रअंदाज न करें और अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें। जागरूकता ही इस बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। श्रोताओं, इन चारों विषयों में एक बात समान है, जागरूकता। चाहे वो तकनीक हो, माध्यम हो, अधिकार हो या स्वास्थ्य, जागरूक नागरिक ही एक मजबूत समाज की नींव रखता है।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गाना हमने लिया है फिल्म एक दिन से, आवाजें हैं अरिजीत सिंह और मेघना मिश्रा की। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है राम संपत ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म सैयारा का ये गाना, आवाज है विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक की। गीत लिखा है राजशेखर ने और संगीत दिया है विशाल मिश्रा ने।

0: अपनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को, फिल्म कबीर सिंह में गीत लिखा था और संगीत दिया था मिथुन ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और इटावा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का।
2: कन्नौज जिले में गंगा, काली और ईशन नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन कड़ी नजर बनाए हुए है। हालांकि गंगा के जल स्तर में बीते करीब चार दिनों से बढ़त जारी है और गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय है। जनपद में 21 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, जहां आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं एवं चिकित्सकीय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक एवं जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। तीनों नदियों के बढ़ते जल स्तर से जिले के लगभग 3 दर्जन गांव प्रभावित हैं, जबकि गंगा के जल स्तर से आधा दर्जन गांव कासिमपुर, बक्सीपुरवा, चौरा चांदपुर और गुमटिया जलमग्न हैं। गांव कासिमपुर में जलभराव के कारण ग्रामीणों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ के पानी से अब तक बड़े भूभाग पर धान और सब्जी की लहलाती फसलें डूब कर नष्ट हो चुकी हैं। कन्नौज जिले में मौसम में बदलाव के कारण विभिन्न रोगों, डायरिया, खांसी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, खसरा, हैजा, दस्त एवं पेचिस से बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ जुट रही है। अकेले राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन 2000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। कन्नौज जिले में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 8 अक्टूबर तक होगा। फिलहाल सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न पोषण जागरूकता एवं जन सहभागिता आधारित गतिविधियां जारी हैं। इस दौरान गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा बच्चों को भोजन में विविधता बनाए रखने, पर्याप्त प्रोटीन एवं आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति तथा संतुलित आहार के महत्व से संबंधित जानकारी दी जा रही है। कन्नौज जिले में प्रसिद्ध विद्यालयों में शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। जिले की 84 ग्राम पंचायतों में स्थापित डिजिटल लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लिए ज्ञान, जिज्ञासा और स्व अध्ययन का नया केंद्र बनकर उभरी हैं। डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता से विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ रहा है तथा कठिन विषयों को सरल एवं रोचक ढंग से समझने में उन्हें सहायता मिल रही है। ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की पहल ग्रामीण एवं प्रसिद्ध विद्यालयों के विद्यार्थियों को डिजिटल युग की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कन्नौज जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का काम प्रगति पर है। जिले में 1,72,000 से अधिक परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है। अब तक लगभग 19,000 से अधिक महिलाओं को समूहों से जोड़ा जा चुका है। फिलहाल जिले में 10,580 समूहों से करीब 1,25,000 परिवार जुड़े हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। कन्नौज जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जनपद के 2 दर्जन गांव विकसित होंगे। योजना के अंतर्गत प्रत्येक चयनित गांव के विकास पर 20 लाख रुपए खर्च होंगे। गांव के सुंदरीकरण और विकास के लिए शासन को 4,70,00,000 रुपए का प्रशासन ने प्रस्ताव भेजा था। शासन ने प्रथम किस्त में जिले को 71,00,000 रुपए उपलब्ध करा दिए हैं। जल्द ही ग्राम पंचायतों के खाते खुलवाकर विकास कार्यों हेतु बजट उपलब्ध करा दिया जाएगा। कन्नौज जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल से करीब आधा दर्जन जनपदों के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। सेंटर पर इन दिनों अलग अलग सब्जियों की करीब 3,50,000 पौध तैयार है। किसानों की ओर से उपलब्ध कराए गए बीजों के द्वारा इजराइल की तकनीक से पौध तैयार की गई है। हालांकि सेंटर की ओर से भी उन्नत किस्मों की पौध तैयार की जाती है। तकनीकी तरीके से तैयार पौध द्वारा किसानों को बेहतर उत्पादन मिलता है। औरैया, कानपुर देहात, इटावा, हरदोई, फर्रुखाबाद समेत आसपास के जिलों के करीब 45 किसानों ने पौध तैयार करने के लिए अपने बीज सेंटर को उपलब्ध कराए थे। सेंटर इंचार्ज प्रवीण पटेल ने बताया कि सब्जियों की पौध तैयार होने में करीब 30 से 35 दिन का समय लगता है। इसके लिए पॉली हाउस का तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखना पड़ता है।
3: टमाटर है, शिमला मिर्च है, पतली मिर्च है, गोभी है, इन सब चीजों के पौधे हमारे पास तैयार हो रही है। किसान अगर अपना सीड दे रहा है तो 1 रुपया 1 पौधे का हम उसे चार्ज करते हैं।
2: कन्नौज जिले में भारत सरकार की खेलो इंडिया खेलों के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने प्रयास तेज कर दिए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेलों की अहम भूमिका होती है।
4: प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलों के तहत मुख्यमंत्री जी ने खेल के मैदान, मिनी स्टेडियम सारे विकसित किए हैं। खेल को

0: बढ़ावा देने के लिए कोचेज की व्यवस्था, अखाड़ों की व्यवस्था, मैट की व्यवस्था, हमारे बच्चे आगे बढ़ के नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेलें और हम लोग खेल को आगे बढ़ाएं।
1: कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का।
2: इटावा में महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स स्टेडियम में कानपुर जोन की 28वीं अंतर जनपदीय पुलिस हॉकी प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। इसमें मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र यमुना प्रसाद ने गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर खिलाड़ियों व अधिकारियों को संबोधित करते हुए DIG ने कहा कि खेल पुलिस बल में अनुशासन, टीम भावना, शारीरिक दक्षता एवं नेतृत्व क्षमता विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उत्कर्ष प्रदर्शन एवं खेल भावना के साथ प्रतिभाग करने की शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता में कानपुर जोन के 9 जनपदों में इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहगढ़, कन्नौज, जालौन, झांसी एवं ललितपुर की टीमों ने प्रतिभाग किया। इटावा रिजर्व पुलिस लाइन स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल की गर्ल्स अंडर 14 बॉक्सिंग टीम ने ईस्ट जोन CBSE बोर्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन कर पूरे जनपद का नाम रोशन किया। नेशनल के लिए क्वालिफाई अन्या यादव और बानी वर्मा का चयन अब CBSE नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन के लिए हो गया है। यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2026 तक RKSD पब्लिक स्कूल कैथल हरियाणा में आयोजित होगी। इस शानदार सफलता पर पर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ ने छात्राओं को सम्मानित किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने भी खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। उनके प्रोत्साहन से पूरे पुलिस परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। इटावा जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अवगत कराया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जनपद में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में बेटा बेटी को लेकर फैली कुरीतियों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाप्त करना, बेटा बेटी का भेद मिटाना तथा लिंगानुपात को बढ़ावा देना है। इटावा सफारी पार्क में विगत 1.5 माह से अधिक समय से उपचाराधीन शेरनी राधिका की 31 अगस्त 2026 को सुबह लगभग 4:30 बजे मृत्यु हो गई थी। सफारी निदेशक अनिल पटेल के अनुसार दिनांक 8 जुलाई 2026 को शेरनी राधिका एवं अन्य शेरनी के साथ आपसी संघर्ष में घायल हो गई थी। सफारी प्रशासन द्वारा निरंतर निगरानी और विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार उपचार जारी था, परंतु 52 दिन के अथक प्रयास के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका और 31 अगस्त प्रातः 4:30 बजे उसने अंतिम सांस ली। जनपद इटावा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन की एक और बड़ी पहल सामने आई है। विकासखंड ताखा की ग्राम पंचायत बमनीपुर में जय माता दी स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थापित वाटर प्लांट तैयार पंचनद प्रेरणा जल बोतल का अनावरण जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल एवं मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा किया गया। समूह की संचालिका शिवा तिवारी के नेतृत्व में समूह की महिलाओं ने इस वाटर प्लांट की स्थापना की है। यहां स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल तैयार कर बोतल बंद किया जा रहा है। पंचनद प्रेरणा जल को बाजार तक पहुंचाने में समूह की महिलाओं के लिए स्वरोजगार और स्थायी आय के नए अवसर सृजित होंगे। इटावा जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अवगत कराया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कार्यक्रम जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला महिला चिकित्सालय में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 14 नवजात कन्याओं का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इटावा जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा समिति, वृक्षारोपण पर्यावरण समिति और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कूड़ा और मेडिकल वेस्ट निस्तारण में लापरवाही पर DM ने कड़ी नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने कहा कि मेडिकल वेस्ट का इधर उधर फेंका जाना अत्यंत संवेदनशील है, इसके लिए निर्धारित वाहनों की नियमित व्यवस्था, रूट और समय तय कर अस्पतालों को जानकारी दी जाए, लापरवाही पर कार्रवाई होगी। CHC महिवा, जसवंत नगर, PHC और जिला अस्पताल को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इटावा जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जीरो पॉवर्टी अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, बीबी रामजी योजना, गौशाला, प्राकृतिक खेती एवं डिजिटल लाइब्रेरी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि गोवंश सड़कों पर न घूमे, सभी गौशालाओं में दाना, हरा चारा और भरण पोषण की पर्याप्त व्यवस्था हो। जिलाधिकारी ने कहा कि चिन्हित परिवार जनपद के सभी निर्धन और वंचित हैं, इन्हें केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि बिजली, पानी, आवास, स्वास्थ्य, राशन सहित सभी योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इटावा में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रजत सिंह जैन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। समस्त न्यायिक, राजस्व एवं प्रशासनिक विभागों के सहयोग से कुल 1,254 वादों का निस्तारण किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए देश गान।

14 सितंबर से हमारा हिंदी पखवाड़ा शुरू हो जाता है। आज हम इस प्रोग्राम में भी इसी हवाले से एक ओबी पर मबनी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, हिंदी उर्दू का लिसानी रिश्ता। तो समाप्त कीजिए ये खुसूसी प्रोग्राम। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये मुल्क गहवारा है गंगा जमनी तहजीब का, गुलदस्ता है मुख्तलिफ फूलों का, चमन है खूबसूरती का, यहां मुख्तलिफ रंगो नस्ल, मुख्तलिफ जुबाने, मुख्तलिफ पहनावे, मुख्तलिफ कल्चर देखने को मिलता है। अगर हम कश्मीर की खूबसूरती की बात करें तो बेपनाह खूबसूरती है। कश्मीरी जुबान उर्दू की खूबसूरती झलकती है, तो चेन्नई की जुबान, वहां का रहन सहन बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी तरह आसाम बंगाल में बोली अलग, पहनावा अलग। इन सब के साथ साथ अपनी हम राष्ट्रभाषा की बात करें तो यहां हम हिंदी बोलते हैं। हिंदी की बका के लिए, इसकी बेहतरी और इसको आम बोलचाल जुबान के इस्तेमाल के लिए सितंबर माह में इसको पखवाड़े के तौर पर मनाते हैं। 14 सितंबर से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि इसी दिन 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पर कबूल किया। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, आजादी से पहले मुख्तलिफ शायरों ने, मुख्तलिफ कवियों ने अपनी कविताओं में, अपनी नज्मों में हमारे अंदर जोश भरा। इसी तरह बिरज नारायण चकबस्त की कविताएं हमारे लिए मशाले राह हैं। कहां हैं मुल्क के सरताज कौम के सरदार, कहां हैं मुल्क के सरताज कौम के सरदार, पुकारते हैं मदद के लिए दरो दीवार। वतन की खाक से पैदा हुए हैं जोश के आसार, वतन की खाक से पैदा हुए हैं जोश के आसार, जमीन हिलती है उड़ता है खून बन के गुब्बार, जमीन हिलती है उड़ता है खून बन के गुब्बार। इन हिंदी और उर्दू के रिश्तों के बारे में बहुत ही दिलकश अंदाज में बयान कर रहे हैं मोहतरम नईम नजमी साहब।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: हाजिर है लेके अपना सलामी खुलूस हम, हाजिर है लेके अपना सलामी खुलूस हम, फिर से सजाई महफिल फिर आ गए हैं हम। इस खूबसूरत पैगाम के साथ आकाशवाणी रामपुर के मरकज से आपका मेजबान फरीदुल्ला खान हाजिर है। आप सबका तहे दिल से खैर मकदम कर

0: हिंदी और उर्दू दोनों ही सगी बहनों की मानिंद हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर इरशाद नोगानवी?
1: इरशाद साहब, आपका इस प्रोग्राम में हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। बात आ रही है हिंदी की और इसके साथ में ही होता है हमारा हिंदी उर्दू, यानी हिंदी उर्दू का जो रिश्ता है, आप क्या सोचते हैं इस रिश्ते को?
2: ये रिश्ता मेरी नजर में ऐसा ही है जैसे कानून कुदरत है कि दो चीजों के इख्तिलाफ से एक तीसरी चीज वजूद में आती है।
1: जी जी।
2: तो हिंदुस्तान में बहुत सारी कौमें मिलजुल कर सदियों से जो साथ रही हैं,
1: जी जी,
2: बरसों तक, सदियों तक, तो उनके इख्तिलाफ से जो एक नई चीज भर के आई है उसमें सबसे खूबसूरत चीज है ये हिंदी और उर्दू। तो इस तरह से ये दोनों सगी बहने हैं।
1: जी जी।
2: इनको सौतेला नहीं कहा जा सकता।
1: अच्छा।
2: वही कौम है जो मिलजुल कर साथ रहती थी और उन्हीं के आपस में रहन सहन से और उनके ताल्लुकात से जो चीज वजूद में आई वो यही दोनों बहने हैं।
1: बिल्कुल।
2: जो जिसको अगर आप दाएं से लिखें तो उर्दू कह लीजिए, बाएं से लिखते हैं तो हिंदी कह लीजिए। तो इसलिए इनका कायम रहना, इनको तरक्की देना, इनको आगे बढ़ाना हमारा फर्ज है।
1: बिल्कुल।
2: इनकी बका के लिए मेहनत करें ताकि इतिहाद भी मजबूत हो, यकजहती भी मजबूत हो।
1: बेशक, बिल्कुल सही फरमाया आपने।
2: और दूसरी बात ये कि शीरीनी इन दोनों जुबानों में इतनी बला की है, तो जैसे कौमों में के ताल्लुकात में मिठास है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सब में वही मिठास इन जुबानों के अंदर भी है जो आपको बाहर की दूसरी जुबानों में नहीं मिलेगी।
1: नहीं मिलेगी। तो आप हमारे सामीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो हमारा ये हिंदी सप्ताह चल रहा है तो इस पर क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे सामीन?
2: इस बारे हमारी राय यही है, इसी तरह रहते हैं, तरक्की करें और अपना देश तरक्की करें। उसके लिए जरूरी है जैसे अपने कल्चर को मजबूती से पकड़ना, ऐसी अपनी जुबानों को भी मजबूती से पकड़ना जरूरी है
1: जी।
2: तो उसके लिए हम हिंदी भी पढ़ाएं, अपने बच्चों को हिंदी सिखाएं और हिंदी बोलें, हिंदी पर फख्र करें, ऐसे ही उर्दू पर। दोनों को अलग करके ना देखें।
1: जी जी बिल्कुल।
2: भाई वो बिल्कुल अलग है।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छे ख्यालात थे आपके। उर्दू में हिंदी कवियों ने खूब नाम कमाया, क्या कहते हैं दुष्यंत कुमार? इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, या इसमें रोशनी का करो इंतजाम और। इसी तरह क्या खूब कहा है फिराक साहब ने, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। हिंदी और उर्दू का मेल एक अटूट है क्योंकि उर्दू का जन्म यही हुआ, ये पहले हिंदवी जुबान थी जो बाद में उर्दू जुबान हो गई। इसी तरह हिंदी के वो अल्फाज जो हमारी रूह में उतरते हैं, जैसे पवन, सुमन, हर्ष, वर्ष वगैरह, और पवन पर नगमे भी लिखे गए। सुनरी पवन चले पुरवैया, मैं हूं अकेली अलबेली, तू सहेली मेरी बन जा साथिया। हिंदी के बगैर उर्दू अधूरी है और उर्दू के बगैर हिंदी। इसी पर लता हया भी क्या खूब कहती है।

0: हिंदी और उर्दू के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं डॉक्टर जहांगीर अहमद खान।
1: हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषाओं में से हिंदी एक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसी हिंदी भाषा ने देश को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य किया था। हिंदी हमारी प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता के बीच एक मजबूत कड़ी है। देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी उन सबको आपस में जोड़ने का काम करती है। मातृभाषा के रूप में हिंदी हमारे विचारों और भावनाओं को सबसे सहज और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हिंदी के ज्ञान के प्रचार प्रसार का एक सशक्त माध्यम है। आज के समय में हिंदी का दायरा केवल साहित्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जनसंचार, विज्ञापन, फिल्म उद्योग, अनुवाद और डिजिटल कंटेंट रोजगार के अपार अवसर उपलब्ध हुए हैं। हिंदी भाषा का भविष्य उज्जवल है, हम इसका प्रयोग गर्व और सजगता से करें।
0: आइए डॉक्टर जेबनाथ साहिबा बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान करती हैं ये रिश्ते।
2: उर्दू और हिंदी दोनों ही जबानें हिंदुस्तान की जबानें हैं और इन दोनों की हैसियत आपस में बिल्कुल ऐसी है जैसे एक माँ की दो बेटियां हों। यानी इन दोनों की बुनियाद या इन दोनों की माँ जो है वो खड़ी बोली है, तो काफी हद तक इन दोनों में ममासलत है। उर्दू और हिंदी दोनों की ग्रामर तकरीबन एक सी है, 100% नहीं कह सकते लेकिन कम से कम 90% तो इन दोनों की ग्रामर एक है। बोलने में दोनों एक जैसी हैं, बस ये कह सकते हैं कि इनके लिखने का तरीका दोनों का अलग है। उर्दू जबान जो है वो फारसी रस्म-उल-ख़त, नूरी नस्तालीक कह लीजिए, मुख्तलिफ किस्म के उसके खत हैं, लिखने के तरीके हैं, अरबिक में भी के भी ढंग से लिखी जाती है, लेकिन असल जो इसका लिखने का तरीका है जो हम लोग आमतौर पर लिखते हैं तो वो है फारसी का। तो इसे फारसी की सरपरस्ती हासिल रही और हिंदी जबान जो लिखते हैं हम वो देवनागरी में लिखते हैं, तो संस्कृत जबान से मिलती जुलती है काफी हद तक। संस्कृत की सरपरस्ती, संस्कृत का उसे बहुत कुछ उसने संस्कृत जबान से हासिल किया, तो इन दोनों जबानों में सिर्फ एक ही फर्क हमें नजर आता है। हम बोलते हैं तो मतलब दोनों की बोलने का तरीका भी एक ही है कि मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ या मैं सोने जा रही हूँ। इस तरह के जो हम ये इस अल्फाज बोलते हैं या इस तरह के जो हम जुमले बोलते हैं तो ये हम उर्दू में बोलते हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं, और हम हिंदी में बोलते हैं तो उसके बोलने का तरीका हिंदी में भी वही रहता है। तो कुछ खास टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये उर्दू जबान के हैं और ये हिंदी जबान के हैं, उन अल्फाज को हम बहुत कम बोलते हैं। लिटरेरी जबान हम, साहित्यिक जबान हम लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, उस वक्त हमारे ये सब अल्फाज

0: आ जाते हैं, कुछ जबानों ने उनसे लिए हैं, अंग्रेजी जबान से लिए हैं, जैसे हिंदी में और उर्दू में। उर्दू में तो स्टेशन के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, हिंदी में तो है, लेकिन हिंदी वाले भी स्टेशन को स्टेशन ही बोलते हैं और स्टेशन ही लिखते हैं। अगर वो अपनी लिटरेरी या बहुत शकील जबान में स्टेशन या कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हिंदी जबान के हैं, तो वो उनसे बचते हैं। इतने मुश्किल अल्फाज लिखना आजकल जो है फैशन नहीं है। जबान जो है वो तहजीब की नुमाइंदगी करती है। सर सैयद अहमद खान इस बात के कायल नहीं थे कि मुश्किल अल्फाज लिखे जाएं, और उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में इस काम को बहुत बड़े पैमाने पर कराया। मीर अमन और लल्लू लाल जी वगैरह ने इस काम को अंजाम दिया कि मुश्किल फारसी आमेज, अरबी आमेज जो जबाने थी उनको आसान नजरे आरी में को ट्रांसलेट किया जाए। तो ऐसे ही हिंदी जबान जो थी उसके अंदर बहुत टिपिकल वर्ड्स जो थे, जो बहुत दकीक अल्फाज थे, उनसे गुरेज किया गया। और आज के दौर में जो हम जबान का ढांचा देख रहे हैं वो बिल्कुल एक सा नजर आता है। न उर्दू वाले बहुत शकील उर्दू बोल रहे हैं और न ही हिंदी वाले बहुत पेचीदा या बहुत शकील हिंदी बोल रहे हैं। वो भी मुश्किल अल्फाज से बच रहे हैं, उर्दू वाले भी मुश्किल अल्फाज से बच रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है और इस वक्त जो जबान इस्तेमाल की जा रही है वो इस्तेमाल की जा रही है जिसे बआसानी बच्चा बच्चा समझ सके। जो हमारी जबान है, जिसको हम अपने नज्म है, नस्र है, ये हिंदी में जैसे कविताएं लिखी जा रही हैं, गद और पद में जो इस्तेमाल की जा रही है जबान, उस जबान को हम जरूर एक पैमाने पर नाप तोल करते हैं। इसके अलावा जबान का कोई ऐसा ढांचा हमें मौजूदा दौर में नजर नहीं आता, लेकिन इसकी इफादियत से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा बाकी रहने वाला जो होता है वो लिटरेचर होता है, और जो कि हमें किताबों में मिलता है, और वो किताबें हमारी लाइब्रेरीज में महफूज हो जाती हैं, जो कि सदियां गुजर जाने के बाद भी हमारे अहद का पता देती हैं। जो हम जबान लिखते और पढ़ते हैं उस जबान में आज भी हमें मेयार नजर आता है, और उसमें हम हिंदी और उर्दू दोनों ही बहनों को फरामोश नहीं कर सकते। हिंदी और उर्दू दोनों ही हिंदुस्तान की पैदावार है, दोनों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया, यहीं परवरिश पाई, यहीं ये जबानें फूली फली और आज तक ये दिलों पर राज कर रही हैं। तो हमें इन अपनी जबानों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें बोलना और पढ़ना चाहिए, और मियारी जबान का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को भी मियार का पता चले। उर्दू ने तो खोशा चीनी का काम किया है, सभी से थोड़ा थोड़ा लेकर अपना एक स्ट्रक्चर तैयार किया, और आज ये जबान जो कि बाजारी जबान हुआ करती थी, आज ये जबान दिलों पर राज करने वाली जबान है।
1: अभी आप ये ओबी पर मबनी हिंदी उर्दू का लिसानी रिश्ता, इस पर खुसूसी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। तरतीबो पेशकश थी मोहतरम विक्रांत चौधरी की, तहरीर थी फरीदुल्लाह खान की। आपको ये प्रोग्राम कैसे लगते हैं, इसके लिए आप हमें अपने खत के जरिए अपनी राय दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। इस नंबर पर आप अपनी राय हमें जरूर दें, आपके खत का, आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और खत पर मबनी प्रोग्राम होता है ये, हमारा महीने का आखिरी जुमा होता है, उसमें सुबह 9:30 बजे आप सुनिएगा अपने खत के जवाबात। और अब अपने मेजबान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज से दीजिए इजाजत।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं

0: ज्ञापनों की बुकिंग
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं विभा विश्वास। पहले सुनते हैं भजन, रचना है मलोक दास की।

विभा विश्वास के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक

0: रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
2: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में है। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। नई दिल्ली में कल राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कृषि आधारित लोक पर्व नुआखाई के अवसर पर देशवासियों, विशेषकर ओडिशा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस पर्व से आपसी सद्भाव और सौहार्द और मजबूत होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत

जब भी हम कोई शानदार गाना सुनते हैं तो हमें पर्दे पर दिखने वाले एक्टर्स याद आते हैं, लेकिन एक बेहतरीन गाने को जन्म देते हैं पर्दे के पीछे रहने वाले जादूगर, यानी हमारे सिंगर्स और लिरिसिस्ट।

शब्दों की गहराई और सुरों की बंदिश जब मिलती है तब बनता है एक अमर गीत। आज का हमारा यह सफर एक ऐसे ही कलाकार के फनकार के साथ शुरू होगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी आवाज़ से जिसकी कमी आज भी इस म्यूज़िक इंडस्ट्री को खलती है, दिलीप जैन केके की आवाज़। और उनके साथ शब्दों को पिरोया था सईद कादरी ने। फिल्म जन्नत से सुनिए हाँ तू है।

अदरी साहब के वो गहरे लफ्ज़ सच में दिल को छू जाते हैं। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, जब इंडस्ट्री के दो सबसे सधे हुए और सुरीले फनकार यानी मोहित चौहान और श्रेया घोषाल एक साथ आते हैं तो जादू होना तय है। लेकिन इस जादू में चार चांद लगाए गीतकार प्रसून जोशी ने, उनके खूबसूरत शब्दों ने, जिन्होंने बहुत ही सादगी से रोज़मर्रा के एहसासों को पन्नों पर उतारा। फिल्म आरक्षण से शंकर एहसान लॉय के संगीत में सजी ये खूबसूरत रचना सुनिए, अच्छा लगता है।

लता जी की आवाज़ और जावेद साहब की कलम का वो तालमेल आज भी लाजवाब है। दोस्तों, जब हम 90 के दशक के म्यूज़िक की बात करते हैं तो आनंद बख्शी साहब का सब नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने अपने करियर में हज़ारों गाने लिखे, लेकिन यश चोपड़ा जी की फ़िल्मों के लिए उनकी लिखी हर एक लाइन सीधे आम इंसान के दिलों पर राज करती है। उदित नारायण और लता जी की आवाज़ में उत्तम सिंह के कंपोजिशन के साथ सुनिए 90 के दशक का वो आइकॉनिक गाना जिसने हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया, दिल तो पागल है।

सुरों और शब्दों का यह सफ़र जितना गहरा है उतना ही खूबसूरत भी। 2000 के दशक के उस दौर में एक कंपोज़र कम लिरिसिस्ट ने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिमेश रेशमिया और समीर जोड़ी की। फिल्म आशिक बनाया आप में से कृष्ण कुमार कुन्नाथ यानी केके की आवाज़ में बिल्कुल सुना होगा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

साल 2007 की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने हमें हंसाया भी और रुलाया भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म तारा रमपम की। फिल्म का एक ऐसा गाना है जो सीधे दिल को छू लेता है, साइयाँ। एक तरफ जहाँ जावेद अख्तर साहब के लिखे लाजवाब अल्फाज हैं, वहीं विशाल शेखर का संगीत और श्रेया घोषाल की प्यारी आवाज़ ने इस गाने में जान फूंक दी। यह गाना फिल्म के सबसे मुश्किल दौर को दिखाता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां एक परिवार तकलीफ में है पर उनका प्यार और उम्मीद अभी भी जिंदा है। श्रेया घोषाल की आवाज़ में जो दर्द और ठहराव है वह सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं दिल के सबसे करीब यह खूबसूरत नगमा।

का प्यार और उम्मीद अभी भी जिंदा है। श्रेया घोषाल की आवाज़ में जो दर्द और ठहराव है वह सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं दिल के सबसे करीब यह खूबसूरत नगमा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के कार्यक्रम में कलाकार होंगे उदय राज सिंह और मोहिनी श्रीवास्तव और प्रशांत मिश्र। पहले सुनते हैं उदय राज सिंह और साथियों के स्वर में देवी गीत।

आप सुन रहे थे उदय राज सिंह और साथियों के स्वर में गंगा गीत। लीजिए अब सुनिए मोहिनी श्रीवास्तव की आवाज में लोक भजन।

प्रशांत मिश्र के गाए इस देवी गीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

धन्यवाद अखिलेश। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। प्रातः के 11 बजे हैं और ये समय है फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार का। आज के कलाकार है ऋतिक रोशन।

ऋतिक रोशन नागरथ, जिनका पेशेवर नाम ऋतिक रोशन है। आपका जन्म 10 जनवरी 1974 को बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ था, जो आज का मुंबई है। आपके पिता प्रसिद्ध फिल्मकार राकेश रोशन हैं। आपने सिडम हैक महाविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई की, यानी आप एक कमर्शियल क्षेत्र में ही जाना चाहते थे। क्योंकि पिता पहले से फिल्मों में थे तो कहना ना होगा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि फिल्में बनी।

राकेश रोशन ने अक्सर अपने पिता, क्षमा कीजिएगा, ऋतिक रोशन ने अपने पिता राकेश रोशन के साथ सहयोग किया। उन्होंने 1980 के दशक में कई फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में संक्षिप्त भूमिकाएं निभाईं। बाद में अपने पिता की चार फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया। उनकी पहली प्रमुख भूमिका बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म 2000 में आई कहो ना प्यार है थी। इस फिल्म के गीतों ने रातों रात ऋतिक रोशन को स्टार बना दिया। आपका अभिनय भी बेजोड़ था। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको इसी फिल्म से सुनवा रहे हैं।

इस फिल्म के लिए गीत लिखा था इब्राहिम आश्क ने और संगीत निर्देशन था राजेश रोशन का, और पिता तो निर्माता थे ही। फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन के बैनर तले आई ये फिल्म अपने समय की सुपर डुपर हिट फिल्म थी।

इस फिल्म ने ऋतिक रोशन को रातों रात स्टार बना दिया। उसी समय द कल्चर कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले फिल्म आई फिजा, इसके गीतों ने तो धूम मचा दी थी और इस फिल्म से ऋतिक रोशन का करियर आसमान छूने लगा था। अगला गाना हमने इसी फिल्म से लिया है, जिसे आवाज़ दी है सुनिधि चौहान और करसन सागरिथा ने। गीत के बोल तेजपाल कौर के हैं और संगीत निर्देशन अनु मलिक का। तो आइए सुनते हैं।

ऋतिक रोशन लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। इसके बाद एक फिल्म आई 2003 में, साइंस फिक्शन था ये, कोई मिल गया, फिल्म क्राफ्ट के बैनर तले। इस फिल्म ने भी ऋतिक रोशन को चर्चित किया, देश नहीं विदेश में भी। आज इस युग में जो कुछ भी होता है पूरी दुनिया में देखा सुना जाता है, दुनिया सिमट चुकी है इंटरनेट के माध्यम से, भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में अपने पांव पसार रही है। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का गीत कोई मिल गया, उदित नारायण और चित्रा की मिली जुली आवाजों में। गीत इब्राहिम अश्क का है और संगीत निर्देशन फिर से राजेश रोशन का।

2006 में फिल्म क्राफ्ट के बैनर तले ही अगली फिल्म आई क्रिश, वो साइंस फिक्शन का ही अगला वर्जन था। इस फिल्म ने भी धूम मचाई और ऋतिक रोशन की करियर में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको इसी फिल्म से सुनवा रहे हैं, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की मिली जुली आवाज़ों में। गीत नासिर फराज ने लिखे हैं और संगीत निर्देशन फिर से राजेश रोशन का ही है।

जीवन साथी के रूप में इन्होंने सुजैन खान का चुनाव किया था 2000 में। 2014 में विवाह विच्छेद हो गया। ये इनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी और ये शायद इस गीत में बताया गया है, कोई तुमसा नहीं, ये प्रायश्चित का गीत है और यही इस कार्यक्रम का संदेश भी। जीवन साथी का चुनाव केवल एक बार होना चाहिए। ये धर्मेंद्र भी तो बन सकते थे, जिन्होंने हेमा मालिनी के साथ भी बखूबी निभाया अपनी पहली पत्नी के रहते हुए।

ये प्रायश्चित का गीत है और यही इस कार्यक्रम का संदेश भी। जीवन साथी का चुनाव केवल एक बार होना चाहिए। ये धर्मेंद्र भी तो बन सकते थे, जिन्होंने हेमा मालिनी के साथ भी बखूबी निभाया अपनी पहली पत्नी के रहते हुए।

0: फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज आपने जिन फिल्मों के नगमे सुने उनके नाम हैं कहो ना प्यार है, फिजा, कोई मिल गया और सबसे अंत में क्रिश। अब इस कार्यक्रम को ख़त्म करने की अपने रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान को दीजिए इजाज़त। प्रस्तुति प्रदीप मिश्र की थी। एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमारे आकाशवाणी के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कार्यक्रम बना सकें। हमारे आकाशवाणी का व्हाट्सएप नंबर है 8004926250 रिपीट 8004926250। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत यादें फिल्म से, सुनिधि चौहान और सुखविंदर सिंह की मिलीजुली आवाज़ों में। रचना आनंद बख्शी की है और संगीत निर्देशन है अनु मलिक का।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

0: आप सुन रहे हैं आशा भोसले, सुनीति चौहान और सुखविंदर सिंह की मेरी जुड़ी आवाज़ों में यादें फिल्म का गीत।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब दिल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले,

आकाशवाणी प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हरिहरन और जानकी की मिलीजुली आवाजों में रचना आनंद बख्शी की है और संगीत निर्देशन है विजु शाह का। फिल्म का नाम है प्यार इश्क और मोहब्बत।

कार्यक्रम का अगला गीत दिल दिया दर्द लिया फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल शकील बदायूनी ने लिखे हैं और संगीत निर्देशन है नौशाद का।

काली टोपी लाल रुमाल। आइए सुनते हैं इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर गाया गीत। रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और संगीत निर्देशन है चित्रगुप्त का।

तीसरी कसम। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मन्नाडे की आवाज़ में। शब्द के बोल, शब्द रचना शैलेंद्र की है और संगीत निर्देशन है शंकर जय किशन का।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं दादी माँ फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत निर्देशन रोशन का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। सरकार ने कहा है कि बैंक ₹2000 तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।

0: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक की शुरुआती बढ़त खत्म हो गई और दोपहर के सत्र में वो गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सबरस प्रसारित होगा रात 8:30 पर। कीर्ति चौधरी से गीत और भजन सुनिएगा सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर।

पंचायत घर लेकर आएंगे हम 6:30 पर। राधे श्याम कुशवाहा और साथियों के गाए लोकगीत के अलावा श्याम प्रसाद से रामायण पाठ हम आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में। युवा श्रोताओं का नियमित कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। आज के पीड़ा स्रोत मोक्ष गुंडम विश्वरैया।

कृष्ण कुमार सत्यार्थी से लोकगीत सुनिएगा धरती के गीत कार्यक्रम में हमारी शाम की सभा के आरंभ में 5 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दोपहर 2:30 पर।

ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम पनघट होगा दोपहर 1:15 पर। इसमें पूर्णिमा जेटली की बातचीत सुनिएगा, माँ बाप को सम्मान दें सामान नहीं। इसके अलावा रश्मि टंडन के गाए लोकगीत भी हम आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में।

श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रसारित होगा। 12:30 पर प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम एफ 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। शास्त्रीय संगीत के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार। जब बुद्धि में विवेक नहीं होता वह विनाश का कारण बनती है। बुद्धि के साथ विवेक का होना आवश्यक है। आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं अपने विवेक की कसौटी पर कसें कि क्या वो सभी के लिए कल्याणकारी है या केवल आपके लिए। अगर वो केवल आपके लिए है तो निश्चित रूप से आप खुद का विनाश कर रहे हैं। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम एफ 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित गोपाल दास से राग शुद्ध सारंग में क्लारियोनेट वादन।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप पंडित गोपाल दास से राग शुद्ध सारंग में क्लोरियोनेट वादन सुन रहे थे। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आइए सुनते हैं श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हैलो फरमाइश। प्रस्तुति मधु कुमार की है।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: इस दुनिया में अगर रेडियो न होता तो टेंस फोन की अदाओं पे खुदा राजेंद्र कुमार ना हमेशा प्रचार से लोग मुझसे कहते हैं विविध भारती के।
0: तो विविध भारती के श्रोता जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है जंजीर
0: जी,
1: और गाने की वो दीवाने हैं को न घर चाहिए मोहब्बत
0: भरी एक नजर चाहिए। भाई वाह, बहुत ही अच्छा गीत चुना है राजेंद्र जी ने। तो आपकी इस पसंद के गाने को सुनवाया जाए
1: जी मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: हाँ नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार जी।
1: मैडम मैं रमेश गुप्ता बोल रहा हूँ, रहने वाला हूँ जिला प्रयागराज गांव नाम है चक्षा परीक्षा
0: जी
1: और रहते हैं मुंबई में मुंबरा कल्याण फाटा।
0: जी बताइए रमेश जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैडम आज हमें गाना सुना, इनका नाम है जानवर।
0: जी गाने के बोल
1: गाने
0: क्या
1: बोल
0: है?
1: रहे हैं मेरे सपनों के राजकुमार।
0: जी, करिश्मा कपूर के ऊपर फिल्माया हुआ ये गाना जानवर फिल्म से मुंबई से सुनना चाहते हैं रमेश जी, आइए सुनते हैं।

0: फरमाइश, कार्यक्रम अपना नाम बता दें।
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से आदरणीय मधु दीदी को करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है हीरो नंबर वन
0: जी,
1: इसका शीर्षक गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ राजेंद्र कुमार जी के लिए और प्रेम

0: यादव, राकेश कुमार जी, लोकेन्द्र वर्मा और साथ में राजू यादव जी के लिए सुनना चाहता हूँ आकाशवाणी प्रयागराज से।
1: तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: सोनू जायसवाल बोल रहा हूँ, खाइबर प्रतापगढ़ से।
1: जी प्रतापगढ़ से सोनू जी ने कॉल की है, तो सोनू जी कौन सा गीत सुनेंगे?
0: मुजरिम का
1: गाने के बोल याद है?
0: नहीं हो जीना तेरे जीने।
1: तो आपकी पसंद के इस गाने को हम सुनवाएंगे। आपको अपने मित्रों के नाम लेने हैं?
0: जी हाँ
1: जी
0: दिनेश।
1: दिनेश, तो भाई अपने मित्र के संग मिलके सुनिए मुजरिम फिल्म का ये गाना। आवाज़ है साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की, लीजिए सुनिए।

0: श्रोता सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
1: सुरेंद्र यादव, बांका जलालपुर, पोस्ट मोवा, प्रयागराज।
0: जी सुरेंद्र जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मुस्कान फिल्म का नाम है
0: जी,
1: गाना का बोल है जाने मन चुपके चुपके।
0: तो मुस्कान फिल्म के इस गीत की फरमाइश आई है सुरेंद्र जी की, तो हम सुनवाने जा रहे हैं। लीजिए सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की फोल कार्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की थी। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। एक बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे, उसके बाद इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण के अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योगों के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में DRDO उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार अभूतपूर्व हैं।
2: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, IDEX हो, ADITI हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
1: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी के उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 147 अंक गिरकर 74,635 पर और निफ्टी 74 अंक की गिरावट के साथ 23,324 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Defense Minister Rajnath Singh has said measures have been taken to ensure that India does not remain dependent on imports in the defense sector but moves towards self-reliance. Addressing the DRDO Industry Synergy Meet Vimarsh 2026 in the National Capital today, Mr. Singh said self-reliance should become a part of the nation's character and attitude.
2: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं,
3: द रिफॉर्म्स विटनेस्ड इन द डिफेंस सेक्टर ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स आर अनप्रेसिडेंटेड एंड सेवरल गेम चेंजिंग डिसीजंस हैव बीन टेकन। दिस इंक्लूड द पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आईडेक्स, अदिति एंड द डिसीजन टू एलोकेट 25% ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट टू द प्राइवेट सेक्टर।
2: और इसके परिणाम आप सबने महसूस भी किए।
1: The Defence Minister said the partnership between DRDO and industry can make India a global hub for defence manufacturing. Mr. Singh said over the years, DRDO has demonstrated its capabilities in every field from missiles to radars, combat aircraft to submarines, electronic warfare system to artificial intelligence. Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav has underlined India's commitment to embedding circular economy principles into its sustainable development framework. Addressing the inaugural session of the 10th edition of the World Circular Economy Forum 2026 in Gandhinagar, Gujarat today, the minister stressed that India has modernized its deep-rooted ancient cultural practices of reuse, repair and conservation values into contemporary policies under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
4: Circularity must extend it beyond waste management. It calls for embedding circular economy principles into the development and maintenance of sustainable and resilient infrastructure. For India, this is an important moment because our BRICS chairship has placed circular economy alongside sustainable lifestyles.
1: National Engineers Day is being celebrated today to honor the birth anniversary of Mokshagundam Vishveshwarayya, one of India's greatest engineers. The day is celebrated to remember Vishveshwarayya's contributions and honor the role of engineers in the nation's growth. Prime Minister Narendra Modi has paid

0: tributes to M. Vishveshwaraya. In a social media post, Mr. Modi extended his greetings to engineers for their contributions to building, innovating and providing solutions for a better tomorrow.
1: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके।
2: मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
0: The BJP today criticized the absence of three Congress-ruled state chief ministers at the BRICS dinner held in Delhi last week. Addressing the media in New Delhi, BJP leader and MP Bansuri Swaraj said, "There may be political and ideological differences, but when it comes to India and the national interest, there should be no room for any kind of discord." She added that BRICS was India's platform and not of any political party. Iran has said it will not negotiate with the United States unless its conditions are met. Secretary of Iran's Supreme National Security Council Mohsen Rezaei made the remarks in a social media post today in response to U.S. President Donald Trump's remarks, in which Trump claimed that Tehran wanted to make a deal and that Washington could resume negotiations with it. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 this evening. India lead the three-match series 1-0 after a convincing 7-wicket win in the opening match on Sunday. Benchmark domestic equity indices were trading lower in the afternoon session today. The Sensex dropped 147 points to 74,635, while the Nifty dipped 74 points to 23,324 when reports last came in. On the sectoral front, capital goods, realty and industrials were the major laggards. Conversely, IT and FMCG were trading with gains. And with that, we end this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के वुकला के लिए सालाना 5 लाख रुपए तक की कैशलेस तिब्बी सहूलियात का ऐलान किया है। ये फ़ायदा हाईकोर्ट और ज़िला अदालतों में फ़ाल तौर पर प्रैक्टिस करने वाले वुकला को दस्तियाब होगा। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से मुनक्किद एक अवार्ड तकरीब में वज़ीर आला ने 400 रियासती लॉ अफसरान को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए टैबलेट्स देने का भी ऐलान किया।
4: आधुनिक तकनीक आज की आवश्यकता है, जिससे उन्हें जानकारी मिल सके कि कौन से शासन से जुड़े हुए मामले माननीय न्यायालय के पास आ रहे हैं। इसके लिए 400 ऐसे राज्य विधि अधिकारियों को हम लोग टैबलेट की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं, और जो यहाँ पे सक्रिय प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उन सभी अधिवक्ताओं को हम लोग कैशलेस की 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा भी उपलब्ध करवाने के लिए यह भी हम आज यहां पे घोषणा कर रहे हैं।
3: वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल रियासत की लोक आयुक्त तंजीम के 50वें योम तासीस की तकरीबात में शिरकत की। लखनऊ में मुनक़िद तकरीब में वज़ीर-आला ने लोक आयुक्त इंतजामिया पर एक यादगारी और मालूमाती किताबचा भी जारी किया। अपने खिताब में वज़ीर-आला ने कहा कि अवामी एतमाद पर पूरा उतरना जमहूरियत का सबसे बड़ा इम्तिहान है।
5: लोकतंत्र के जो सबसे बड़ी ताकत है, वह किसी भी संवैधानिक संस्था में एक सामान्य नागरिक का विश्वास। गुड गवर्नेंस एक पब्लिक ट्रस्ट पर निर्भर करता है। अगर जनता का विश्वास नहीं है तो हम सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी हमारी विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं पर उसी विश्वास के साथ गौरव की अनुभूति कर सके।
3: रियासत में ईवीएम और वीवीपैट की पहली सतह की जांच एफएलसी के सिलसिले में कल 33 अजला के इंतखाबी ओहदेदारों और एफएलसी निगरानों के लिए लखनऊ में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग और रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर नवदीप रणवा ने भी वर्कशॉप में शिरकत की। चीफ इलेक्टोरल अफसर ने कहा कि ईवीएम

0: एम की पहली सतह की जांच आइंदा इंतखाबात की तैयारियों में पहला कदम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर फ्रॉड और मुतनाज़े लेन देन को रोकने के लिए एक नए फ्रेमवर्क का मसौदा जारी किया है। इसके तहत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ मुतनाज़े लेन देन की रकम को आर्जी तौर पर मुंजमित कर सकेंगे। ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होगा जब 1,000 रुपये से ज़्यादा की गैर मामूली मुंतकली को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से मुंसलिक होने का शुबा हो। मसविदा रहनुमा खतूत अगले साल 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल होंगे, लेकिन बैंक उन्हें इससे कबल भी अपना सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश पर 17 सितंबर से शुरू हो रहे सेवा संकल्प अभियान के एक हिस्से के तौर पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी से उनकी जन्मभूमि वडनगर तक एक सेवा यात्रा निकाली जाएगी। ये इत्तला भारतीय जनता युवा मोर्चा के कौमी सदर हेमांग जोशी ने कल वाराणसी में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि सेवा यात्रा को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यात्रा के दौरान दरख्त लगाना, सफाई मुहिम, इस्तफादा कुनिंदगान से बातचीत, अस्पतालों में फलों की तकसीम, न्यूट्रिशन किट्स की तकसीम और तपेदिक के खात्मे से मुतालिक खिदमात के काम अंजाम दिए जाएंगे। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश और डैमों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत में कई नदियों की आबी सतह में इजाफा हुआ है। सैलाब से हज़ारों अफराद मुतासर हुए हैं। रियासती हुकूमत के वज़रा, अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। शहरी तरक्की और तवानाई के वज़ीर AK शर्मा ने कल मऊ के मधुबन और दोभारी इलाकों में सैलाब रिलीफ कैंपों का मुआयना किया। शाहजहांपुर में रियासती वज़ीर नरेंद्र कश्यप ने जलालाबाद के MLA हरि प्रकाश वर्मा के साथ कसारी के सैलाब से मुतासरा गाँव का मुआयना किया। उन्नाव के भगवंत नगर असेंबली हलके में MLA आशुतोष शुक्ला ने 90 खानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया। फतेहपुर की जिला मजिस्ट्रेट निधि गुप्ता वत्स ने बड़ाहार, सदनापुर और बिंदकी फार्म के सैलाब से मुतासर इलाकों का साइट पर मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया राहत और बचाव कामों में सरगर्म अमल है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने मशरकी उत्तर प्रदेश में 18 सितम्बर तक भारी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 में और यह समय है ग्रामीण बहनों के कार्यक्रम पनघट का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पनघट।

0: गुंजा, अरे ओ गुंजा, अरे हम तोसे कहा राम राम।
1: राम राम जया बहनी, और अपन पनगढ़ सुनाए बैठी सब श्रोता बहनी हरन का राम राम।
0: राम राम गुंजा, देखा तो आज कितनी सुंदर लगत हो। कल तीजा व्रत रहो ना।
1: बिल्कुल बहनी, देखा कुल जो है तो हम सब बहनी हरे आज सुबह रहिया जो है कहती नहीं कि देखा भुराई की पूजा की जात है तो हाँ बिल्कुल, तो हम सब बहनी सब एक जुट हो के मंदिरे गए और पूजा आराधना कीन। और जाना थू ये व्रत ऐसा ना है निराजली व्रत जो ने अपने पति देव के लिए उठावा जाते सब बहनी हरेन भी कराते और हमका लगा था कि तू कसना उठाए हो वो।
0: देखा गुंजा बात तो तू सही कहो।
1: हाँ?
0: तो देखा ये जो व्रत है ना ऐसा
1: हाँ?
0: कौन है जो उनकी नाही रहा।
1: बिल्कुल।
0: तो देखा कहे सुबेरवा उठ के जब सुहाग लिया जाते ना
1: हाँ?
0: पल उस क्षण हमारे लिए मतलब सबसे महत्वपूर्ण होता। और देखा पूरा निर्जला व्रत रही के पति की लंबी आयु के लिए
1: कामना कीन जाते
0: कामना कीन जाते। तो देखा कितना अच्छा और जैसा माहौल कितना अच्छा हो जाता है। और जब व्रत और त्योहार एक एक भी देखा देखा जाते कि छोट मोट त्योहार की तरह से हम लोग देखते।
1: बिल्कुल देखा बहनी, कहा थे ना कि ये जो तैयारी बाटे तीज व्रत की

0: एक जैसे लोग शादी के विवाह के तैयारी करते हैं,
1: बोला ऐसे माहौल हो जाते ना
0: बिल्कुल ऐसे लगा था। और देखा हो भी का है ना, कहे कि ये शादी शुदा से जुड़ा है जब एक विवाह के तौर पे, तो जब तू कहो कि सुबह सुहाग लेके, तो बिल्कुल वो विवाह के क्षण याद हो जाते हैं जो भुराई के विवाह होते हम सबके। देखा गावन में कैसा, गावन का हर जगह है बहनी, देखा अब कोनो अंतर ना है बाटे।
1: हाँ, और का देखा जब गांव में रात जब भी पूजा कही के तो सब हम लोग इकट्ठा हुई थी।
0: हाँ,
1: तो देखा ढोल बजा शुरू होता तो देखा रात
0: देखा जब हम सब गौ नहीं गाई थी मुला रात भर तो चलत है
1: बिल्कुल। देखा गुंजा देखा जब ये सब व्रत और त्योहार आवत है तो देखा कितना अच्छा लगत है, घर का माहौल अच्छा हो जाता है, हम सब लोग एक साथ एकजुट हो जाए
0: बिल्कुल,
1: कितना प्रेम बढ़ जाता है ना। लेकिन गुंजा कभी कभी ऐसा भी होते, हम देखा है कि कभी परिवार जब त्योहार आवा तो हम माँ से कोनो ऐसा मतलब इंसान है या कोनो ऐसा व्यक्ति है जेका जेका कोनो न कोनो बात से ओका तकलीफ है या कोनो बात से दुखी है, तो का होते कि वो त्योहार में पूरी तरीके से शामिल नहीं होती, अपनी खुशी में शामिल नहीं होती
0: बिल्कुल।
1: तो देखा जब परिवार की बात आवत थी तो हमका लगा था कि देखा थोड़ा ना परिवार बड़ा जो उन्हें एक गृहस्थ आश्रम जो उन होता ऐसा है, मतलब ऐसा होता कि इमा जो हमार लोग होता इन सब का थोड़ा बहुत देखा उतार चढ़ाव अच्छा बुरा इन सब से ऊपर उठ के सोचे का पड़ा
0: बिल्कुल। कहे कि देखा एक दूसरे के सहयोग से ही परिवार चलत है
1: बिल्कुल। और देखा जब सहयोग की बात आवा थी तो देखा छोट मोट चीज में ना अपन मन दुखी ना करे चाहिए
0: बिल्कुल। हाँ,
1: कभो कभो ऐसा होते कि देखा कहा जाते कि भाई परिवार है तो थोड़ा मतलब तू थोड़ा तू सही ला थोड़ा हम
0: सही ले बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बुरा माने से नहीं चलत
0: और साथ ही साथ अगर बुरा मान भी जाते हैं तो उसका ज्यादा समय तक ना ही खींचा, काहे कि देखा वो कभो ना कभो बड़ा रूप ले लेते हैं
1: बिल्कुल।
0: तो हो सके तो आपस में बातचीत करके बहनी अपने मनमुटाव को दूर कर लें।
1: देखा गुंजा परिवार की तो बात हम करत रहे पर देखा जीवन में कोनो मतलब हर किसी का कभो ना कभो हार का सामना करे पड़ा थे।
0: अच्छा बहनी जय बहनी हम समझ गए, तू आज लगत है कि यही बात पे चर्चा करे चाहत हूँ।
1: बिल्कुल देखा मुझे तो समझ गयो ना।
0: हाँ।
1: तो देखा आज जो ने हम लोग चर्चा करब हार में ही जीत है।
0: अच्छा
1: और देखा जब परिवार से चाहे जुड़ी बात हो चाहे बाहर की कोनो बात हो।
0: हाँ।
1: देखा कभो कभो ऐसा भी होता है कि पढ़ाई में कम अंक कम आ जाते, काम में असफलता मिल जाती, परिवार में कोनो से छोट मोट मन मुटाव होगा, हर परिस्थिति में हमें कुछ ना कुछ देखा ये सिखावती
0: बिल्कुल।
1: असली जीत यही है कि हम हार के बाद भी हिम्मत ना हारी।
0: बिल्कुल सही कहो तू बनी, हार के बाद ही जीत होते है, काहे कि यह जीवन के सच्चाई बाटे। अगर आप कौनो काम शुरू करत हैं, अगर आपका ई लागत है कि आप ओमा असफल हो जात हैं, मुला फिर से अगर हम सब जीत के पते प्रयास करत हैं तो वो जीत कहीं ना कहीं हम सभी के
1: मिल जाती। और देखा परिवार वो जगह है जहाँ हमार देखा परिवार की बात हो चाहे बाहर की भी बात हो, देखा जहाँ हमार जो ने छोटी सी हार भी बड़ी सी बन के जब निकला थी तो देखा घर में यानी कि कोनो छोट बच्चा हो जिसके परीक्षा में कम अंक आवे थे ओका डांटे की बजाय परिवार में ओके हौसला बढ़ाएगा चाहिए, समझाएगा चाहिए देखा परीक्षा का परिणाम पूरी जिंदगी तय नहीं करत, यही तरह यदि कोनो से कोनो गलती हो जाए तो परिवार के सदस्य का एक दूसरे की कमियां गिनावे के बजाय हाथ साथ खड़े होकर समाधान ढूंढे चाहिए। कई बार देखा परिवार में छोटी छोटी बात पे बहस हो जाती, ऐसे समय में हम अपनी बात मनावे के बजाय थोड़ा पीछे हट जाओ भी अच्छी बात होता।
0: बिल्कुल देखा जय बहनी जैसे तू कहो कि हार हम सबे का बतावत है सबब देते है कि हर हमार जो ने काम बा अगर हम उनका कमी बांटे हाँ तो अगर असफलता मिलता है तो उस समय जो गलतियां निकलत है उस सब गलतियों से हम सबके पहचान करावत है कि हमारे अंदर कौन कमी बाटे कि जो ने हमें असफलता मिलत बाटे
1: बिल्कुल। और देखा तब है हम सोच पाई थी कि हमका केपर कौन चीज पे काम करे
0: बिल्कुल
1: का है ना। और देखा जब इंसान ई समझ जाते कि देखा अब हमका ई अपन हमार ई कमी पे हमका काम करेगा तो आगे बढ़ जाते
0: बिल्कुल।
1: यही लिए कहा जाता है कि कभी भी हार का हार की तरह नहीं, अगर मान लो कहूं असफलता मिल गई है या कोनो चीज में ऐसा लगा था कि नहीं नहीं अब
0: मैं दुखी ना हो
1: दुखी ना हो कैसे वही पहली सीढ़ी है
0: बिल्कुल,
1: सफलता की
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: सही कहो बहनी। और साथ ही साथ देखा जब हम सभी हार के सामना करते हैं तो उका हार के तरीके से ना देखे।

0: ना देखे
1: कहे कि जब हम सबे कोनो जीत बड़ी जीत हासिल करे थे तो उके पहला पड़ाव हार होत है तो ये बते हार कोनो ऐसी समस्या नहीं है कि जैसे हम सबे जूझत रहे और परेशान होत रहे अपने आप के घटावत रहे मुला इसे उभरे के चाहिए इसे आगे बढ़े के चाहिए।
0: बिल्कुल देखा गुंजा कितनी अच्छी बात कहो। लेकिन देखा जब हम बात करी थी लड़कन बच्चन की तो देखा हमारे लड़कन जो बच्चन होते हैं देखा उनका जब सही पोषण मिलत है सही माहौल मिलत है सही आहार मिलत है तो इसे उनकर जो आगे की जो सफलता की सीढ़ी तय हो जाती। कैसे देखा कहा जाते कि माँ जो ने प्रथम शिक्षिका होते हैं तो जब हमार माँ शिक्षिका के रूप में हमार मार्गदर्शन कर रहे थे तो कौन भी ऐसी परेशानी का कौन ऐसी परेशानी हुए जेका जो ने सामना हम कर सबे ना कर सका। तो देखा जब नवजात शिशु के बारे में बात कर गुंजा कि देखा उनकी देखभाल भी
1: जरूरी बात है बिल्कुल।
0: और देखा उनकी देखभाल जब शिशु नवजात होता उस समय देखा खास कर माँ का ध्यान रखे का पड़त है। कैसे देखा कि ओके भरण पोषण का आहार उनका ठोस आहार कौन सा देखा है या तरल पदार्थ कौन सा देखा है। तो देखा सबसे पहले तो जब हम शिशुअन की देखभाल की बात करब तो पैदा होते जब जो नवजात शिशु होते उनका देखा जो ने माँ का दूध प्रथम जो ने ओके आहार
1: बिल्कुल
0: होता
1: बिल्कुल
0: है ना और ओके साथ देखा जब माँ का दूध ओका मिले तो आहार के रूप में और सही ओके साथ साथ देखा ओके मालिश होएगा चाहिए
1: बिल्कुल। और जैसे तू कहो कि माँ के गर्भवती माँ जब शिशु के जन्म देते हैं तो सर्वप्रथम जो माँ के दूध होता है ओमा जो है इम्यूनिटी जिसका कहते हैं प्रतिरोधक
0: क्षमता
1: बहनी वो बच्चे में बहुत ज्यादा मिला था
0: उसे मिला था बिल्कुल सही।
1: और साथ ही साथ जब हम नवजात शिशु का देखभाल कर रहे थे तो उनके विशेष रूप से साफ सफाई के ध्यान
0: विशेष ध्यान रखे चाहिए बिल्कुल सही। देखा गुंजा कितनी अच्छी बात कहो कि नवजात शिशु की सफाई का खास ध्यान अक्सर कहा होता है कि जब शिशु आ जाते हैं या बच्चा घर में आवत है सब इतना खुश हो जाते हैं कि खुशी के मारे सबे का मन कर रहे थे कि लाओ हमो गोदी में ले
1: ननवार गदेला सबे सोचत कि अब हमार नंबर है गोद में लेके
0: अरे हम सबका कह गई हम खुद ही नहीं रुक पाई थी
1: बिल्कुल मैंने
0: बस मन कर रहे थे कि तुरंत गोदी में ले ले लेकिन सही बात है जब भी ओका छुए हाथ धोए के और बाहर से आए तो कोशिश करें कि साफ सुथरा कपड़ा पहन के छुए।
1: देखा मैंने कहा कि शुरुआती 6 महीने तक बच्चों का केवल माँ का दूध दे और ऊपर से जो ने पानी या जो ने भी तरल पदार्थ है जैसे तू बताओ तो वही सब दे चाहिए और जैसे कि खाद पदार्थ है तो जब तक वो 8वें 9वें महीने में ना ही लग जाते हैं तो जैसे खिचड़ी है मिल्ट वाली चीजें वो दिन जाते हैं।
0: देखा 6 महीने के बाद हम सब लोग जाने थे कि ठोस आहार हल्का सा ठोस आहार दे सकी थी तो थोड़ा थोड़ा बच्चन का दे का चाहिए। और देखा सबसे देखा गुंजा एक बात तो हम ही जाने थी कि बच्चन के मालिश यदि सही समय पर मतलब समय समय पर हो जाए ना तो बच्चन की जो मांसपेशी होते हैं वो काफी मजबूत हो जाते हैं।
1: और साथ ही साथ अगर जैसे मौसम के बदलाव रहता है तो जैसे बच्चन के साफ सफाई ना ही हो पावत बोला ऐसे में तो उनके और ज्यादा कीटाणु या फिर रेसेस वगैरह हो जाते शरीर में जैसे खाद टाइप का तो अगर बहनी हरे हो सके तो उनका गुनगुने पानी से और कोनो सूती कपड़ा हो
0: उसे पोछ
1: हाँ उसे पोछ दें तो उनके जो भी मैला है गंदगी है दूर हो जाते हैं
0: बिल्कुल सही
1: असुरक्षित भी रहते हैं।
0: देखा गुंजा जब ननवार गदेल का तो वैसे हम सब लोग जानी थी कि ध्यान रखे का चाहिए
1: बिल्कुल
0: पर देखा खास ध्यान माँ उनके आहार का विशेष ध्यान रखे का चाहिए माँ का। और हम तो अपनी बहनी लोगन का भी कहा कि देखा जब वो अपने ननवार गदेल का ध्यान रखे थे तो सही में थोड़ा दिक्कत आवत थी खुद का ध्यान भी रखे में तो देखा खुद का भी ध्यान रखे
1: बिल्कुल। देखा कहा है कि बहनी चलाता है पोषण सप्ताह जो उन्हें 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक पोषण माँ मनावा जाते हैं।
0: तभी आज हम लोग ये बात किया ना
1: बिल्कुल
0: गुंजा देखा बात तो हो गई तो कसना चला एक लोकगीत सुन लिया जाए
1: बिल्कुल
0: और सुनावा थी रश्मि टंडन बहनी
1: बहनी हरे भी सुने

0: गुंजा
1: गुलाबुआ का फूल ना है पर देखा बहनी नाराज और खुशी लगा रहा था रूटा
0: हाँ
1: बनाओ मुला देखा आगे तू काला है बट
0: देखा, जब गीत तो होएगा, पर आज देखा, आज अभी हम लोग बात करते रहे ना
1: हाँ बेटी
0: कि देखा गदेलन की जगह देखा मतलब परिवार की
1: हाँ
0: बच्चन की, तो वही से जुड़ी देखा बातचीत है, माँ बाप को सम्मान दे सामान नहीं, और इमा बात की है पूर्णिमा जेटली बहनी से गीता सिंह, तो चला सुना जाए।
2: देखा बहनी हिरन, हम सभी पनघटे पे अक्सर आपके बदे नया नया विषय लेके आवत रहा थी। वैसे ही आज एक ठे भावपूर्ण विषय लेके आए ही हम सभी माँ बाप को सम्मान की जरूरत ना की सामान की। और ए विषय पे हमरे साथे बातचीत करे बदे आई ही बहनी पूर्णिमा जेटली जी। देखा बहनी, हम आपसे ई जाने चाह थी कि माँ बाप हमरे जीवन में इतनी अहम भूमिका रखा थन, लेकिन आज के दौर में, आज के समय में हम सब देखा थी कि हम सब उनका समय नहीं देत, उनका सम्मान नहीं देत, बल्कि कोनो एक दिवस मनाए लेती, मातृ दिवस, पितृ दिवस मनाए के, और उनका कुछ उपहार दे दे थी और सोचा थी कि बस हमार जिम्मेदारी पूरी हो गई। तब हम सब के विस्तार से बतावें कि हम सब के का करे के चाहिए, का का ध्यान देवे के चाहिए, जोने से कि माता पिता के ई महसूस ना हो कि उनके परवरिश में कोनो कमी रह गई है।
3: हाँ बहन, आप एकदम सही कहें कि आज के समय में ना लोग मातृ दिवस है, पितृ दिवस है, ये सब बहुत मनाए लगे हैं, पर ऐसा मातृ दिवस और पितृ दिवस तो डेली है। हमारे माँ बाप जो हम लोग को संस्कार देनी, जो हमें समय देनी, जो हमें प्यार देनी, उनका तो हम लोग कभी उनका वापस कर ही नहीं सकते। आप ऐसा समझें कि उनका जो प्यार है, प्यार जो दे हैं, वो तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। हम लोग को बस इतना चाहिए, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, तो हमका ये चाहिए कि हम उन्हें समय दें, 2 सेकंड उनके पास बैठी, उनसे प्यार से बात करी। कहे कि सामान तो बाजार से बहुत खरीदा जा सकता है, पर हम ना उन्हें सम्मान

0: सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके घर में यदि कोई आएगा और हम उनसे यदि वो पूछी ना हमसे कि कौन है और हम उनसे गंदे ढंग से बोल दिया, तो ये तो हमारे लिए खराब बात है ना। उनसे 2 मिनट प्यार से बोल दे, नए अम्मा हमारे घर में फलाना आए हैं, तो उनसे यूँ लगी है कि नहीं ये बच्चा हमसे बदतमीजी से नहीं बोली सी, ये हमारी शिक्षा है। और जो व्यक्ति आवा है हमारे घर में तो वह ही देख करके खुश हुई है कि नए इनके घर में आप बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान होत है। और माँ बाप का तो सम्मान जो प्यार मिलत है ओका तो कोई मोल ही नहीं ना। जीवन भर पैसा कमा लो, घर बना लो, चाहे जो भी कर लो, पर उसे बेहतर तो कोई माँ के आशीर्वाद से बढ़कर तो कोई चीज़ है ही नहीं ना। आप 2 सेकंड माँ बाप के पास बैठो, माँ से हालचाल पूछो, तो माँ को ये लगे कि नहीं हमार बच्चा हमार जरूरत समझत है, हमारे पास 2 घड़ी आ करके बैठ गवा, बातचीत कर लिया, उनके लिए तो यही है बहुत है।
1: यानी कि पूर्णिमा बहिनी, कहीं ना कहीं आप ये कहे चाहती कि उनके साथे बैठ के उनके मन के बात निकलवावें कि ऊ का चाहत हैं, ऊ का देखे चाहत हैं, ऊ का पहरे चाहत हैं, ऊ का खाए चाहत हैं, आ ऊ का सोचत हैं, उनका कौन चीज की जरूरत है। हम सब अक्सर ही करत ही कि उनके बदे कुछ उपहार ले आई के रख दे थी और सोचे थी कि उनके खाना पीना दवाई हो ही गया, बस हमार जिम्मेदारी तो पूरी, हम तो सब कुछ करते हैं।
0: नहीं बहन ऐसी बात नहीं ना, ये तो सोचना ही ना चाहिए। कहा है कि जब हम लोग छोटे रही थी तो माँ बाप तो हम लोग की जरूरत को बिना कहे समझ जाते हैं, है ना। और आज हम यदि उनका कुछ दे दे, मान लो कुछ सामान लाए और रख दिया, अम्मा ही ले लो, तो अम्मा इसे नहीं लेती, अम्मा को निकाल के देओ कि देओ अम्मा हम आपके खातिर लाए हैं, तो उन्हें अच्छा लगे कि नहीं बच्चा हमार खातिर लाए है, हमार ध्यान दी सी। समय समय पर उन्हें दवाई दे दो, दवाई ना दे को होता है, दवाई निकालो के साथ पानी भी दो कि लो अम्मा बैठो दवाई खाओ पानी पियो, तो उन्हें अच्छा लगा था कि नहीं बच्चे को हमारे लिए समय निकाले। वही बाप हैं बड़े बुजुर्ग हो गए कि नहीं बापू अब आप बैठो, अब हम आपके लिए काम कर बे, अब आप घर में बैठ करके हमारे घर के देख रेख करो, बागवानी करो, तो उससे उनका मन भी लगा रहता है, पेड़ पौधन भी देखत है,
1: और अपन शौक भी पूरा
0: अपना
1: होता।
0: शौक भी पूरा होता है।
1: हाँ, और आपको कहे के ये मतलब है पूर्णिमा बहिनी कि जब हम उनका समय दे थी और उनका सम्मान दे थी तो हमका उनका ये महसूस होता कि देखा हमारे लड़कन बच्चन हमारे भावना के कितना समझत हैं, और जब उनका आदर मिलत है तो उनका हृदय एकदम गदगद हो जाता
0: गदगद हो
1: है
0: जाता है।
1: ना।
0: माँ बाप समान ना समझे को चाहिए, उन्हें तो ईश्वर समझे को चाहिए। काहे कि हमारे पास ईश्वर के रूप में यही माँ बाप मिलत है जो हमें जन्म दिए हैं, और हमारा बस इतना कर्तव्य बना था कि जब वो बुजुर्ग हो जाए, जब उनका हाथ कांपे लगे, तो बस हम उनका हाथ पकड़ करके 2 कदम उनके साथ चली बैठी, उनसे दुई दुई टुक करके बात कर ली, तो उनका 2 मिनट का बात करना उनके लिए पूरा थकान खत्म कर देते हैं। जीवन की जितनी भी थकान रही, जितना भी वो हम लोग के साथ करी, वो सारी चीजें उनके लिए खत्म हो जाती।
1: हाँ, कहे के मतलब यह पूर्णिमा बहनी कि समय देवे से ये होता कि उनका आप ही कहे चाहती कि जब हम सब उनके साथे चलत फिरती उठत बैठती तो एक तरीके से हम सभी वो जिम्मेदारी पूरा करते ही जौन वो हमरे प्रति करे रहें जब वो युवावस्था में रहें,
0: हाँ
1: यानी कि अब समय हमार बाटे कि हम अपने समय के उनका दई।
0: हाँ बहन एकदम सही कहें, हमार तो यहू कहना है कि हम लोग बड़े हो गए तो हम अपने बच्चन को उनके पास छोड़ दें, तो थोड़ी देर हमारे बड़े बुजुर्ग के पास रहिए तो उसे कुछ शिक्षा मिली है कि नहीं हम बच्चन को कैसे बड़ा करना है, बच्चन को कौन सी ज़रूरत है। हम जो उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं वो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे माता पिता वो सब उन्हें समय देते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाए के कि कैसे कैसे अच्छी अच्छी बातें बताए के कि कैसे रहना है, कैसे सबसे बात करना, कोई आ रहा तो उन्हें कैसे सम्मान देना है, वो सारी चीजें हमारे बड़े लोग सिखावत है हमारे माँ बाप को कोई। और आप ऐसा भी समझो बहन कि जैसे हम लोग अपने माँ बाप का पैर छुई थी तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, सर पे हाथ फेरते हैं, तो आप ये ऐसा समझो कि वो तो हमारे कवच के समान है, जैसे कर्ण को कवच मिला रहा कि कोई भी परेशानी से उनको दूर रखे से, झगड़े से, तीर कमान से, वैसे आप यही सही समझो कि माँ बाप का जो आशीर्वाद है वो हमें हर तरह की परेशानियों से दूर रखने का वो आशीर्वाद है।
1: बिल्कुल सही कहा तू।

0: देखा पूर्णिमा बहिनी, धर्मशास्त्र में भी माता पिता का क्या महत्व है, क्या मूल्य है, एकरे बारे में बहुत जगह चर्चा करी गई है। एकरे बारे में कुछ बतावे।
1: हाँ बहन, एकदम आप सही पूछें। हम तो धर्म से भी ये सीखे थे कि माँ बाप तो सबसे सर्वोपरि हैं। है, माँ बाप का जितना हम ध्यान रखबे उतना ही हम का सब कुछ आगे से आगे होता चला जाइए। कहीं हमें अपने धर्म से ही सीखना चाहिए कि जैसे कि गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान जो रहे, तो एक दिन उनके माता पिता शंकर पार्वती कहें कि ऐसा है कि दोनों में प्रथम पूज्य कौन होइए। तो कार्तिकेय जी तो अपना निकल चले अपने वाहन पे बैठ करके, और गणेश जी कहें कि हम अपने माता पिता को बैठा लीन और उनके साथ फेरी लगा लीन। और कहें कि ऐसा है कि हमारे लिए तो सबसे प्रथम जो है पूरा संसार जो है वो हमारा माँ बाप है, और उसे बढ़कर के कोई नहीं ना। और जब वो कार्तिकेय जी आए कहें कि ऐसा तुम तो कहीं गए हो नहीं, हम तो हुए हैं सब जगह। तो कहें नहीं, हम भी गए रहे, पर हम ना अपने माता पिता के आगे कोई चीज, हमारे आगे कुछ न, माता पिता के आगे कुछ नहीं ना। तो हम उन्हीं को ले करके सात फेरी लगा लिया और हम आए, पूरी पूरा संसार हम भ्रमण कर लिया।
0: ये तो देखा बहुत अच्छी बात बताई आप बहनी। अब देखा हम ये जाने चाहती आपसे कि माता पिता का रीति रिवाज और परंपरा का बढ़ावे में भी भूमिका होता ना।
1: हाँ बहन, एकदम सही कहें, क्योंकि हमारे घर में जौन पूजा होए, जौन छोटा मोटा काम काज होवत है, तो उनमें हमारे बड़े बुजुर्गन का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो बतावत है कि कैसे हमें पूजना चाहिए, कैसे कौन भगवान का कैसे पूजा होइए, हमार कुल की प्रथा कैसे है, कुल की पूजा कैसे होती। तो ये हमारे घर के बड़े बुजुर्गन ही बता पाते हैं।
0: और देखा शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई हर जगह माता पिता अगर उपस्थित ना हो तो यही चीज कितनी कठिनाई के साथ होता
1: एकदम बहन, एकदम
0: है
1: सही आप कह रही हैं कि हम लोगों को जैसे कहीं जाना होए तो हम लोग अपने माँ बाप के पास अपने बच्चन रख के चले जाए, तो हम लोग को ये तो नहीं चिंता रहा थी कि हम बच्चन को कहाँ छोड़ आए हैं,
0: ना।
1: कहाँ रख के आए। तो ये तो निष्फिक्रता रहा थी ना कि घर में बड़े हैं उनके पास रहिए तो हमारा बच्चा सुरक्षित रही है।
0: और देखा हम ये समझे थे कि उत्तराधिकार जैसी भी कोनो चीज होत है जो माता पिता से हम सभी के प्राप्त होता है उकरे बारे में आप का कहें।
1: हाँ एकदम सही बहन आप पूछें कि हमें तो जैसे मान लें अपने माँ बाप का धन दौलत घर द्वार सब मिलते हैं, ओके साथ साथ उनका जो संस्कार है, उनके जो अच्छे काम हैं, वह नो सब का हम लोग जिम्मेदार हो जाए थे। लोग हमें उनके नाम से पहचानत है। हमेशा आप यहू देखे हुई हैं कि लोग कहा, माँ बाप हमेशा कहते कि हम चाहे थी हमारे बच्चन के नाम से हम का पहचाना जाए। तो ये उनके अच्छे संस्कार होते हैं उन बच्चन के, कि माँ बाप उन्हें अच्छे संस्कार दी नहीं तभी उनका उन लोग जान पाए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तू। यानी कि खाली जमीन जायदाद के बात नहीं होत, अच्छे संस्कार और सम्मान भी हम सभी के उत्तराधिकार में माता पिता से मिल जाते। यानी कि जौन कुछ वो अपने जीवन में अर्जित किए हैं वो सब हम सभी सहज ही प्राप्त कर जाता। तो देखा ये तो हमें समझे के चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण उनकर स्थान बा, और जब उनकी अनुपस्थिति होत है तब ये ज्यादा समझ में आवत है। तो काहे नहीं हम सभी उनके उपस्थित रहते ही सब चीज के समझ जाए।
1: एकदम सही कहीं बहन कि आज जब कोई के माँ बाप मान ले माँ नहीं रही, बाप हैं, बाप नहीं रहे, मतारी रहे हैं, तो बड़ा अंदर से ही तकलीफ होता है कि हम काहे ने दोनों की सेवा कर सके, उनका आशीर्वाद ले सके। आज जब कोई के माँ बाप नहीं रहते तब उन्हें लगा था कि नहीं माँ बाप रहते हम तो ही करते, अब तेरे ही में और पूजा करे से कोई फायदा नहीं ना, उन्हें माला पहनाने से कोई फायदा नहीं ना। जबकि हम ईद करी कि उनके रहते उनका ध्यान रखी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखी, उनसे 2 मिनट बैठ के अच्छे से बोल चाल ली, ना कि उनके जाए के बाद खूब बढ़िया उनका खिलाई, तेरे ही मनाई खिलाई।
0: यानी कि एक लालच की भावना से नहीं कि देखा हम उनकर अच्छे से श्राद्ध कर दे तो ये धरा पे हमके बहुत सुख प्राप्त हुए। देखा मेहनत करा, काहे कि माता पिता हम सभी बदे बहुत तपस्या करते हैं, वो
1: बहुत
0: तपस्या
1: ज्यादा
0: के हम सभी समझ नहीं पाए महसूस नहीं कर पाए।
1: आप ये ऐसा समझे कि माँ बाप तो हम सब बच्चन के खा, मान लो बनाइन खाना बच्चन को भूख लग गई तो अपने आगे की थाली भी बच्चन को दे देती। बाप अपना फटा कपड़ा पहने रही है पर बच्चन को स्कूल की फीस जरूर दई है, कि नहीं हमार बच्चन अच्छे से पढ़ाई करें, हमार गधेलन अच्छे से पढ़े लिखे, जैसे हमार बच्चन कुछ अच्छे बने।

0: और अच्छा कमाए, बस उनकी
1: हाँ,
0: यही खुशी रहा
1: आ
0: थी।
1: लड़कन जब ये बात के, उनके त्याग के, उनके तपस्या समर्पण के अच्छे से समझ जाते हैं, तो देखा जीवन जो है प्रकाश से भर जाता है, माता पिता सुखी हो जाते हैं। तो जरूरत है हम सभी के कि उनका महंगा उपहार दें ना दें, ये आपकी इच्छा, लेकिन उनका सम्मान, उनका अपनापन और उनको समय जरूर जरूर से दें, है ना।
0: हाँ
1: तो
0: बहन एकदम,
1: पूर्णिमा बहनी, आप पनघटे पे आई, समय दीन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गुंजा देखा कितनी अच्छी बातचीत रही,
3: हाँ
2: और
3: बहनी,
2: देखा गीता सिंह बहनी और पूर्णिमा जिटली बहनी दोनों कितने अच्छे से फरियाए की सारी चीज़ें बताई
3: बिल्कुल
2: कि देखा माँ बाप का सम्मान दे ना कि सामान, और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है ना,
3: बिल्कुल
2: तो माँ बाप का प्रेम दे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चला अब एक ही गीत सुन लिया जाए,
3: हाँ।
2: फिल्म है
3: दोहे सवरिया,
2: नहीं, फिल्म है मिलन और सुनावती और आवाज़ है लता जी की, तो चला सुना जाए।
3: चला सुन लें जाए।

0: हाँ बातचीत हो गई,
1: गौनाई भी कितनी
0: गौनाई भी
1: लिंगिक
0: सुन लिया
1: स्त्रीलिंग
0: हुआ, अब चला
1: चला
0: रसोईया चली
1: भाई नहीं
0: तो देखा आज रसोई घर से कहाँ है गुंजा अपने पनघटे पे।
1: तो दिखा बहनी, रसोइया से लाए बाटे हम सब्जियों के छिलके भी काम के हैं।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात है गुंजा। अक्सर हम लोग कहा करी थी कि
1: हाँ
0: देखा सब्जी के छिलका जो ना बेकार की चीज समझ के
1: फेंक
0: फेंक
1: दे
0: दे थी,
1: बिल्कुल
0: है ना। पर देखा वो हमार जो माँ रही तो
1: हाँ
0: अक्सर कहा करे वो जो तरोई आवा थी ना, एक तो
1: हाँ
0: निनुआ आवा थे पर
1: हाँ
0: एक तरोई आवा
1: थोड़ा
0: थी
1: छिलका होके
0: कड़ा
1: कड़ा
0: होता
1: सा
0: है
1: रहता
0: ना।
1: है। हाँ
0: हाँ
1: मोट
0: तो
1: मोट के होते
0: अक्सर
1: हैं।
0: वो जब वो छिलका छीले तो की सब्जी बनाए के हम लोगन का खवावे,
1: हाँ बहनी
0: इतनी स्वादिष्ट बनत रही वो सब्जी कि ना पूछा। हमका आज हो जब मुका याद करी थी उस सब्जी का तो मुंह में पानी आ जाता,
1: बिल्कुल
0: कभी
1: सही
0: कभी
1: कहा बहनी।
0: बनाई भी है।
1: हाँ कहे कि वो सब्जी जब भून के बनाते हैं सोंधे सोंधे खुशबू आवत रहे।
0: इतनी स्वादिष्ट लगत है गुंजाओ, चाहे वो रोटी के साथ खाओ चाहे पराठा के साथ, बहुत अच्छी लगत है।
1: बिल्कुल सही कहो बहनी। देखा बहनी सब्जियों के छिलके में वाकई बहुत काम के होते हैं। और उस सब्जी के छिलके का फेंका के ना की चाहिए, जैसे तू बताओ काहे से कि एमा भरपूर मात्रा में पोषक तत्व और जो ने एक छिलकन होते हैं सब्जियन के, केवल कचरा ना है होते, उनमें बहुत पोषक तत्व होते हैं और गुणों के खजाना होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: स्वास्थ्य के बदले सब्जी के छिलके बहुत लाभदायक बा। आलू के छिलकों में फाइबर, पोटेशियम और विटामिन बी और सिक्स के प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो उन्हें पाचन और ब्लड प्रेशर के ठीक
0: ठीक
1: रखा
0: करते
1: है।
0: हैं, बिल्कुल सही।
1: खीरा के छिलके में फाइबर और विटामिन के होते हैं, जो उन्हें त्वचा और दिल के सेहत के बदे बहुत ही फायदेमंद
0: बिल्कुल
1: आवे।
0: देखा खीरे का जो छिलका है वो तो खावा भी जा सकता है
1: हाँ
0: आसानी से,
1: बिल्कुल
0: कैसे अगर अगर खीरे का बिना छीले खावा जाए, बस ऊपर का जो होता है जो ओका निकाल दीजिए, मैं कहा जाता है कि थोड़ा
1: कड़ुआपन।
0: कड़वा होता है
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ
0: तो
1: थोड़ा सा
0: ओका
1: घिस
0: काट
1: लें।
0: के, हाँ उसका
1: हाँ
0: घी के घिस के ओका हटाए दे, बाकी तो खीरे का छिलका आसानी से खाया
1: बिल्कुल
0: जा
1: बिल्कुल।
0: सकता है।
1: और जानो तुम्हें नहीं, अगर खीरे के छिलके के साथ हम खाए थे तो जो ना हमें हमार सबके रक्त संचार है ओका शुद्ध भी बनावत है।
0: बिल्कुल। और देखा गुंजा एक बात और कहा, जब हम लोग छिलके की बात करी थी तो
1: हाँ
0: सब्जी के अक्सर जो जैसे कि तू बताओ कि गाजर है,
1: हाँ
0: खीरा है, आलू है और देखा तरोई है,
1: हाँ
0: जब भी इन छिलकन का जब भी सब्जी बनावे का हो या एका सहेगा खाए का हो तो उका ध्यान रखें कि साफ पानी से धुल लें, कम से कम आधा घंटा एक नमक के पानी में उका भिगोए के रखें,
1: अच्छा बहनी।
0: तब ओके जो जो भी
1: हाँ
0: कीटनाशक उमा होता
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: हट जात है।
1: बिल्कुल। और साथ ही साथ बहनी देखा, और जो ने खेती बाड़ी के बदे प्याज आलू खीरा के 2 से 3 दिन पानी में भिगोए कर ओकर पानी में जो के पानी होत है भिगोवा हुआ वो पौधन में डाले से पौधन में मिनरल्स मिलत हैं, जो ने खेती के बदे बहुत उपयोगी है।
0: खाद बन जाते ना।
1: छिलकों का मिट्टी के परत के साथ दबा कर सड़ाई के से बहुत अच्छी और उपजाऊ साफिट जिका बोलाते हैं वो मिट्टी तैयार होते हैं। सब्जियन के छिलकों से पौधों के बदे एक ताकतवर खाद बनाया जा सकता है। और देखा बनी कईयों सब्जियों के छिलकों में उनकर गूदे की तुलना में अधिक मात्रा में विटामिन और खनिज होते हैं। आलू खीरे और इस सब में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और पोटेशियम पाया जाता है। छिलके पौधों के बाहरी वातावरण से बचावत है। काहे कि देखा जब हम कोनो भी पौधा लगाए थे तो वो जो हवा के जब फिल्टर करते हैं शुद्ध कराते हैं, तो हम सभी जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वही सब तो हम सभी के मिलाते हैं। तो देखा कहीं ना कहीं इस सब भी हम सब छिलके से भी बना सके। यही बदे जो ने पौधे के जो बाहरी होते हैं उसे जो है ऑक्सीडेंट के बहुत मात्रा अधिक होते हैं, यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ावत है। और साथ ही साथ मैंने देखा जो छिलका होता है वो जो है आघुलनशील फाइबर उच्च मात्रा में होता है, ये कब्ज के समस्या के दूर करता है और पाचन तंत्र के भी दुरुस्त रखता है।
0: देखा कितने फायदा हैं छिलके के, और देखा सब्जी के छिलकन का मतलब ऐसा ना समझें कि बेकार हैं, उनका काम के समझें, है
1: बिल्कुल
0: ना। तो गुंजा
1: हाँ बहनी।
0: देखा तू कितनी अच्छे से बताओ कि छिलके के कौन कौन काम होते हैं और देखा कैसे कैसे वो फायदा करे थे, पर कसना अब एक गीत भी सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल बहनी, नेकी और पूछ पूछ।
0: हाँ तो चला, फिल्म है दिल्ली 6 और सुना आवाज है रेखा भारद्वाज जी की।
1: हमारे बहनी अरे भी सुने।

0: बन जाओ, देखा कितनी नोक झोंक वाला गाना है,
1: बिल्कुल
0: इतना अच्छा लगा था हमको सुने में, और देखा हमारे बहनियों ने भी सुने हुई है तो अच्छा लगा हुई
1: बिल्कुल
0: गुंजा। देखा सब हम लोग पनघटे पे आई थी, कितनी सारी बातें अपनी बहनी लोगन से करी थी। कई बार तो ऐसा भी होते कि कुछ नए नए भी विषय होते हमारे सब के पनघट कार्यक्रम में, और देखा हम लोग कोशिश करी थी कि अच्छे से अच्छा गीत भी उन लोगन का सुनवाई, बहनी हरन का सुनवाई, अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करी ताकि उन लोग खुश हुए और कुछ ना कुछ हमार तारीफ भी करें। और देखा जब बात तारीफ की आवत थी तो ऐसे जुड़ा एक ईमेल संदेश है, तो चला वो सुना जाए।
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
0: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
3: हमारा ईमेल एड्रेस है
4: pangatprogram@gmail.com, स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com, pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
3: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन देर कोने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
5: बेसब्री से इंतजार रही।

0: देखा संदेश भी सुन लिया गवा,
1: हाँ बनी।
0: और अब देखा अपनी बहनी लोगन से जात जात एक बात ही कहे चाहिए थी कि देखा कल तीज रहा, आज
1: हाँ
0: अपन खूब कहे पूरा दिन देखा जब निर्जला व्रत रहा जाते तो पानी नहीं जा शरीर में
1: बिल्कुल।
0: तो कमी हो जाती, तो आज खास ध्यान रखें कि ढेर सारा पानी पिए और हल्का फुल्का भोजन से अपन दिन की शुरुआत करें और
1: ज्यादा
0: ध्यान
1: भारी भोजन ना लें, काहे
0: बिल्कुल
1: कि जो पेट का डाइजेशन जेका विनी क्षमता होती ओका मेंटेन करे रहे के चाहिए।
0: तो देखा अब विदा लेके समय भी हो चला है, एक घड़ी इशारा करे थी कि बस अब घर चला जाए, तो चला राम राम किया जाए,
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: बेनी
0: बेनी
1: अरे।
0: अरे।

अभी ग्रामीण बहनें अपना कार्यक्रम पनघट सुन रही थी। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम में 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। दो बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। बने रहें हमारे साथ।

0: at 7:30 this evening. India lead the three-match series 1-0 after a convincing 7-wicket win in the opening match on Sunday. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% lower in the afternoon session today. The Sensex dropped 337 points to 74,445, while the Nifty was down 130 points to 23,268 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Defence Minister Rajnath Singh says government taking steps to ensure self-reliance in defence sector. Chief Ministers of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan and Delhi signed Kishau Multipurpose Dam Project Agreement for rejuvenation of Yamuna River. India committed to promoting circular economy as part of sustainable development, says Environment Minister Bhupendra Yadav. World Circular Economy Forum gets underway in Gandhinagar. Prime Minister Narendra Modi hails engineers as karma yogis of nation building. U.S. court blocks Trump administration's new visa rules for foreign students and journalists. IMD forecasts heavy rainfall over Punjab, Delhi, Kutch, Tamil Nadu, Assam and Meghalaya today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second T20 international in Delhi this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
1: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
2: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
3: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की

0: भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
1: Our intellectual engagement with international affairs must keep pace.
2: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम हैं।
4: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
2: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
5: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थितिकी, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब 1 महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाद

0: मतदाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉ एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
2: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदर पूर्वक नमन करता हूँ।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है।
4: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी, सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
5: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
6: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टीम बनाने का निर्देश दिया। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
5: आकाशवाणी समाचार के लिए से
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी।

भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा

0: चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्म योगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो घड़ी में 2:30 हुए हैं और ये समय है NCERT के प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। तो आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। आप सबका उमंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है, प्रिय उद्घोषक जी मन से नमस्कार। आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद। करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरें तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपकू आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर हमारा कार्यक्रम भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चिपकू आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहां के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओं, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी ओर एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटीं। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता देवी का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का

0: सहारा है और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओ, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खिजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले, जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम आज कहते हैं पेड़ बचाओ, पानी बचाओ, सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये संदेश भरे पड़े हैं, बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होती हैं, उपदेश होते हैं और जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ। लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य बोलते हैं। तो श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गांव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिएगा, जिनके लिए पेड़ केवल लकड़ी मात्र नहीं थे, लेकिन वो जीवन का आधार थे। आइए सोचें, पेड़ हमारी सांस हैं, हमारे लिए शीतल छाया हैं, वे हमारे जल और मिट्टी के रक्षक हैं और सबसे बढ़कर वे आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। तो आज हम उमंग कार्यक्रम में मन की उमंग से चलते चलते एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें, एक पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपको आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वन और वन्य जीवन संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है द क्रो। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में संदेश दिया गया है कि हम अपने मूल स्वरूप में ही अच्छे हैं, किसी और से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
3: हेलो मैम।
1: हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू मैम?
1: आई एम गुड, थैंक यू सो मच वान्या। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, Today I am going to share something with you. Are you ready?
2: Yes, ma'am.
3: Okay, ma'am.
1: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
2: Yes, ma'am.
4: Pets are so lovely.
1: Right, Soham.
5: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
1: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
5: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
1: Wow, that's good. And what about you, Navya?
6: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
1: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
7: Ma'am, when I come home, my cat jumps

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। आप सबका उमंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है, प्रिय उद्घोषक जी मन से नमस्कार। आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद। करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरें तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपकू आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर हमारा कार्यक्रम भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चिपकू आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहां के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओं, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी ओर एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटीं। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता

0: देवी का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का सहारा है। और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओ, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खिजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले, जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम आज कहते हैं पेड़ बचाओ, पानी बचाओ। सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये संदेश भरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होती हैं, उपदेश होते हैं, और जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ। लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य बोलते हैं। तो श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गांव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिएगा, जिनके लिए पेड़ केवल लकड़ी मात्र नहीं थे, लेकिन वो जीवन का आधार थे। आइए सोचें, पेड़ हमारी सांस हैं, हमारे लिए शीतल छाया हैं, वे हमारे जल और मिट्टी के रक्षक हैं, और सबसे बढ़कर वे आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। तो आज हम उमंग कार्यक्रम में मन की उमंग से चलते चलते एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें। एक पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपको आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वन और वन्य जीवन संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है द क्रो। कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में संदेश दिया गया है कि हम अपने मूल स्वरूप में ही अच्छे हैं, किसी और से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
3: हेलो मैम।
1: हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू मैम?
1: आई एम गुड, थैंक यू सो मच वान्या। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू। आर यू रेडी?
2: यस मैम।
1: ऑलराइट, यू ऑल नो दैट pets are special members of our family, isn't it?
2: Yes, pets are so lovely.
1: Right, Soham.
4: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
1: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
4: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
1: Wow, that's good. And what about you, Navya?
5: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
1: Oh, that's lovely.

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। अभी कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अपराह्न के 3 बज चुके हैं और ये समय है सभा समापन का। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम से आपकी सेवा में हम फिर से हाजिर होंगे। आज के कलाकार हैं कृष्ण कुमार सत्यार्थी। इस बीच हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे धरती के गीत।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत। कलाकार हैं कृष्ण कुमार सत्यार्थी। आइए सुनते हैं पहले इनके स्वर में देवी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कृष्ण कुमार सत्यार्थी के स्वर में देवी गीत। आइए अब सुनते हैं खेमटा। अरे यही है, यही है। हाँ तो वही तो बजा था।
1: नहीं, ऊपर वाला।

धरती के गीत कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीत। अभी आप सुन रहे थे खेमटा, कलाकार कृष्ण कुमार सत्यार्थी। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय चल रहा है कार्यक्रम धरती के गीत। कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कृष्ण कुमार सत्यार्थी के स्वर में ये कहरवा।

0: इस गीत के साथ ही धरती के गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, कुछ ही पलों में युवा साथी सुनेंगे युववाणी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
0: अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

चलिए आज कार्यक्रम की शुरुआत कुछ टर्म से करते हैं। गौर कीजिएगा, नोमोफोबिया, साइबरफोबिया, टेक्नोफोबिया, फोमोरिग्जाइटी, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, नेट होलिलिज्म, टेक्साइटी, ये सारे टर्म्स आपके फोन्स और उसके फीचर से जुड़े हैं। 16x9 का छोटा सा डिवाइस किस तरह से आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इन सभी टर्म्स के क्या मायने हैं, मोबाइल डिवाइस हम चला रहे हैं या ये हमें, बात होगी आज इस पे। बात होगी मोबाइल से मोहब्बत या मजबूरी की, बात होगी क्या युवा डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। इन सभी मानकों पर आज युवानी के कार्यक्रम में मेरे यानी पूजा यादव के साथ आप जुड़े रहिए। आज का दौर डिजिटल क्रांति का है, जहां स्मार्टफोन सिर्फ बात करने का जरिया नहीं बल्कि हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। आप खुद सोचिए, क्या आप एक दिन बिना फोन के रह सकते हैं? फोन अगर बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह का हमारे मन में फियर होने लगता है, कहीं कोई इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज मिस तो नहीं हो गया। और ऐसा नहीं

कि हमेशा से ये डर हमारे मन में रहा हो, लेकिन बीते कुछ सालों में हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन पर बढ़ गई है। मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपने लाइफ में पहला स्मार्टफोन अपने टीचर के हाथ में देखा था, व्हेन आई वाज इन क्लास 6। पूरे स्कूल में शायद सिर्फ उनके ही पास था, लेकिन आज स्कूल में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के पास उनका पर्सनल फ़ोन है, एंड आई थिंक इट्स अ बिग चेंज। अब सवाल ये है कि ये चेंज हमारी अपनी सहूलियत का नतीजा है या मार्केट की मार? मार्केट के फ्रेम से देखें तो जिन जिन स्कूल स्टूडेंट्स के पास उनका स्मार्टफोन है वो उनके कस्टमर हैं, लेकिन क्या बात ये उन बच्चों को पता है? और यही वजह है कि आज हमारे सामने ये सवाल आ खड़ा हुआ है, मोबाइल से मोहब्बत या मजबूरी।

मोबाइल सहूलियत या मानसिक गुलामी। आज के यूथ के लिए मोबाइल सिर्फ कॉलिंग तक लिमिटेड नहीं है, वो बल्कि एजुकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन पेमेंट और सोशल कनेक्शन, सब कुछ स्क्रीन के एक टच से हो जाता है। इसी वजह से मोबाइल एक जरूरत और कंपल्शन दोनों लगता है। लेकिन दूसरी तरफ बिना किसी वजह के घंटों स्क्रीन स्क्रॉल करना, सोशल मीडिया पर लाइक्स कमेंट से अपना मूड तय करना और फ़ोन पास ना होने पर एंग्जाइटी फील करना, ये दिखाता है कि अब कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन हमारा एडिक्शन बन चुका है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिजिटल डिटॉक्स पर भी बात करें। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप फ़ोन को एकदम से दूर कर दें अपने से और उसका यूज़ एकदम से छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि इसका कंट्रोल और बैलेंस्ड यूज़ करना। तो कुछ सिंपल से स्टेप हैं जिनको फॉलो करके हम डिजिटल डिटॉक्स की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसे कि नो फोन जोन, खाना खाते वक्त या सोने से एक घंटा पहले फ़ोन से आप दूर रहें, टाइम लिमिट सेट यानी स्क्रीन टाइम ट्रैकर का यूज़ कर सकते हैं, और थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव ऑप्शन, वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलकर आउटडोर गेम्स, रीडिंग और लोगों से फेस टू फेस बात करने की आदत हमें डालनी चाहिए। वैसे श्रोताओं, आपको ये बता दें कि आज 15 सितंबर 2026 को दूरदर्शन अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में एक प्रायोगिक प्रसारक के रूप में हुई। इसका पहला प्रसारण का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और इसका रंगीन प्रसारण पहली बार 1982 में हुआ था। 80 और 90 के दशक में रामायण, महाभारत, बुनियाद, मालगुड़ी डेज और चित्रहार जैसे कार्यक्रम ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट ले आते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे और हमारा कार्यक्रम और बेहतरीन बने। तो आज हमने शामिल की है बातचीत। भारतीय सैनिक हवलदार दिनेश कुमार सिंह से हमारी साथी दिव्या द्विवेदी ने बातचीत की है, तो आइए सुनते हैं।
6: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं मुझे यानी आपने दिव्या को, और आपकी दिव्या हमेशा कुछ ना कुछ खास, कुछ ना कुछ अलग, कुछ बेहद नायाब लेकर आपके लिए हमेशा लेकर आती है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेहद खास साक्षात्कार। इस साक्षात्कार को बेहद खास बना रहे हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि, जिनके पास है एक बेहद ही खास एक्सपीरियंस जो हमारे युवा श्रोताओं के साथ वो साझा करेंगे। ये एक्सपीरियंस इतना खास कैसे है दोस्तों? क्योंकि व्यक्तित्व बेहद खास है। दोस्तों, आज का हमारा सफर भी कुछ ऐसा ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान, जिनकी जिंदगी हमें अनुशासन, साहस, समर्पण और देश के प्रति जिम्मेदारी जैसे कई अनमोल सबक सिखाती है। हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना से जुड़े हमारे आज के विशेष अतिथि की, यानी स्पेशल गेस्ट की। आर्मी जब भी नाम आता है तो हमारा पूरा जो यूथ समाज है वो जोश से भर जाता है। आज हम उनसे जानेंगे सेना की जिंदगी कैसी होती है, क्या जैसी हम सोचते हैं मिश्मराइजिंग बिल्कुल वैसी होती है या उससे बहुत ज्यादा अलग होती है, कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है युवाओं के लिए अनुसार।

0: पैशन और फिटनेस कितना जरूरी है। आखिर एक युवा भारतीय सेना का हिस्सा बनने का सपना कैसे पूरा कर सकता है? तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं हम उस मेहमान का स्वागत, उन खास मेहमान का स्वागत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे श्रोताओं को आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें।
1: जी, मेरा परिचय केवल मेरा नाम और मेरी सेवा से नहीं है, मेरी पहचान उस तिरंगे से है जिसके लिए देश का हर सैनिक अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहता है। जय हिंद। मैं दिनेश कुमार सिंह, ग्राम उतरौला, पोस्ट परसपुर, डिस्ट्रिक्ट गोंडा, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने सन 1996 में 12th और सन 1999 में स्नातक की उपाधि पाई और उसके बाद में सन 2000 में भारतीय सेना में सेवा करने का अभूतपूर्व गौरव प्राप्त हुआ।
0: आपने अपने बारे में हमें बताया कि आपने एजुकेशन कैसे ली। 2000 में जब आपने सेना ज्वाइन की, तब आपके दिल में बहुत सारी बातें होती होंगी, बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि सेना में मैं देश के लिए सेवा करने आया हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी, बहुत सारे चुनौतियाँ होंगी। कैसी कैसी बातें थीं उस वक्त आपके मन में? क्या जोश था, क्या जुनून था जो आपने देश के लिए सेवा करने के इस मार्ग को चुना?
1: जी मैम, बिल्कुल सही पूछा आपने। आज से तकरीबन 26 साल पहले सन 2000 में ये जो आज की सुविधाएं हैं वो सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। हम लोग किसी रेडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से सेना के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी पाते थे, और खास करके जब हम वो सेना के वर्दीधारी किसी एक सैनिक को, एक जवान को देखते थे, उस समय ऐसा हमें लगता था कि काश हम भी अगर इस स्टेज पर पहुंच जाते, हमको भी ये वर्दी हमारे जिस्म पे मिलती और हम भी यहाँ से जाके पूरे देश का भ्रमण कर पाते तो कितना अच्छा रहता। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश करी कि हमें सेना के अंदर में जाना है। सेना के अंदर में जाने के लिए हमने प्रयास किया 1996 तक। 1996 में जब हमने 12th कंप्लीट करी, उसके बाद से हमने कोशिश करी जाने के लिए। हर एक स्टेप पर बार बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रही। कभी फिजिकल में कमजोरी लगी, कभी मेडिकल में कमजोरी लगी, कभी रिटर्न एग्जाम में कमजोरी लगी, कभी कुछ प्रॉब्लम आई, लेकिन ऐसे 4 साल तक कंटिन्यू प्रोसेस करते करते, कंटिन्यू कोशिश करते करते, लास्ट में जो है 2000 सन में मुझे जो है भारतीय सेना में कम्युनिकेशन ग्रुप में सर्विस मिली, और उसके बाद से मैं 26 साल तक वहां पर अपना सेवा दिया, पूरा किया मैंने।
0: वाओ सर, आपने जो कुछ भी हमें बताया कि आप 1996 से तैयारियां कर रहे थे, कई
1: जी
0: बार
1: मैम,
0: बहुत सारी असफलताएं मिली आपको, लेकिन
1: जी
0: वो जो
1: मैम,
0: एक जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है, वो कभी खत्म नहीं हुआ और आखिर में आपने अपनी मंजिल पाई। लेकिन सर, जिस मंजिल को आपने पाया था वो अंत नहीं थी, बल्कि वो एक नए जीवन का आरंभ था।
1: जी
0: आपने
1: मैम,
0: जब सेना ज्वाइन कर ली, हाँ, तो उसके बाद कैसी कैसी चुनौतियां आईं? हमारे जो यूथ लिसनर्स हैं वो आपके एक्सपीरियंस को सुनना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल मैम, मैं आपसे यहाँ से बताऊंगा। एक तो मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूँ, बिल्कुल प्लेन इलाका हमारा तो यहाँ पे रहता है। हम अपने परिवार के बीच में रहते हैं, हमको ये भी नहीं पता चलता है कि जो हम घर से एक कदम बाहर निकालेंगे उसके बाद में हमारे में साथ में क्या होगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे हमेशा, हमको टाइम से हर एक चीज मिलता है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, रहने के लिए छत मिल रही है, पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है। लेकिन जब एक सैनिक अपने घर से, अपने परिवार को, अपने जो गाँव है, ग्राम है, उसको छोड़ के जब बाहर निकलता है, उसके पास कैसी कैसी सिचुएशन आती है। मैं यहाँ से स्टार्टिंग में मैडम, सबसे पहले मैं यहाँ से पहाड़ी क्षेत्र गोवा में गया, जहां पर मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई, और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जो मेरी पहली पोस्टिंग मिली हिल, वो मुझे मिली लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख जनवरी फरवरी मार्च मई जून का महीना, उसमें इतनी बर्फबारी होती है, एक 20 साल या 25 साल का एक युवा जिसने कभी भी बर्फ ना देखी हो अपने लाइफ में, सिर्फ कभी टीवी में, कभी पिक्चरों में देखी हो, और वो सनसनाती हुई हवाएं, वो रातें जो हमको फर्स्ट यूनिट में ही मिली, जो हमारी पहली पोस्टिंग थी वो लेह लद्दाख में थी। लेह लद्दाख के जो कठिन स्थिति है, जहाँ पे मतलब दिन में भी पानी जमता है, रात की तो भी बात ही क्या कहें, ऐसे ऐसे सिचुएशन में जो हमारा दिनचर्या है, जो हमारी रूटीन है, मतलब 5 बजे आपको सवेरे तैयार होना है, उठना है, उसके बाद में मॉर्निंग वॉक में जाना है, उसके बाद में आने के बाद में अपना नेक्स्ट जो काम, जो भी टास्क आपको मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, आपने उसको पूरा करना है, उसके बाद में देर रात तक का जो भी टास्क है, मतलब एक अजीब सी लाइफ, ये पता नहीं चल पाता कि मतलब मैं अभी कौन से स्टेज पे काम कर रहा हूँ। जब कभी कभी हम उसके

0: बारे में सोचते हैं कि यार हमने आज सवेरे से लेकर शाम तक क्या किया, उसके बाद में ये पता चलता है कि हमने तो घर के बारे में तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। हम तो बस केवल अपने जो हमारी ड्यूटी मिली है सिर्फ उसके बारे में ही सोचते रहे, उसके बारे में ही करते रहे, जो कुछ भी हमने काम किया, जो कुछ भी मतलब टास्क मिला हमको करने के लिए। उसके बाद मेरा पोस्टिंग आया कलकत्ता के लिए, कलकत्ता में पीएस स्टेशन था, मुझे बहुत वहां पे रिलैक्स मिला, लेकिन वहां पे भी थोड़ा बिजीएस लाइफ रही। जिंदगी का सबसे जो आप पूछना चाहती हैं अहम मकसद है वो जेएनके का होता है, जो वैली कश्मीर है। कश्मीर की वैली में मैं तकरीबन 14 साल नौकरी किया, 14 साल का वहां पे एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि जितनी बार भी हम अपने घर से निकलकर वहां पे जाते हैं कश्मीर के लिए, उस समय में हमको ये नहीं पता चलता है कि मतलब अभी हम अभी क्या मतलब जाएंगे तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसके बारे में एक डिस्टर्बेंस मतलब जीवन में रहता है।
1: ये तो है सर, आपने हमारे साथ लेह लद्दाख का एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने जेएनके का एक्सपीरियंस शेयर किया। जो हम यूथ्स होते हैं जब ट्रिप के बारे में सोच रहे होते हैं, घूमने के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हम लोग बस यही कहते हैं कि दोस्त चलते हैं लेह लद्दाख की ट्रिप मार के आते हैं, और कुछ नहीं तो कश्मीर घूम लेते हैं। हम एक घूमने के पर्पस से उस चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन आपने उस दृष्टिकोण से उन दोनों जगहों को देखा, वहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल नौकरी की, वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट किया। और दोस्तों आपने सुना ना कि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उन्होंने हमें बताया कि लाइफ कई बार इतनी ज्यादा चैलेंजेस हो जाती है कि हमें ये तक ध्यान नहीं रहता कि जिंदगी में हम अपनों को भूल ही चुके हैं। तो दोस्तों आप कभी मत भूलिए कि जो परिवार जिससे आप इतना प्यार करते हैं, जो आपके साथ हमेशा रहता है, वो आपके लिए गिफ्ट है। आपको उनके साथ रहने का, उनके साथ जीने का, उनके साथ हंसने बोलने बात करने लड़ने झगड़ने का वक्त मिलता है। लेकिन जो हमारे भारतीय सैनिक के जवान होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनके पास वो अहम जो पल है वो मिलता ही नहीं उन्हें। तो हमेशा भगवान आपको जो देता है उसकी कद्र करना सीखे। तो दोस्तों हम अपने जो आज के मुख्य अतिथि हैं दिनेश सिंह जी, उनसे हम आगे भी बात करेंगे। अब जरा हम बात करेंगे कि इतनी क्रूशियल डेज में आपने अपने फौजी धर्म को निभाया, फौजी जीवन को निभाया, इसमें फिटनेस का कितना महत्व था आपके लाइफस्टाइल में, आपने कैसे उसको मेंटेन किया। हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे यूथ दोस्त हैं, वो आपको सुने और वो सीखें कि फिटनेस सिर्फ एक फौजी के लिए जरूरी नहीं होती, वो एक हर इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है। आप जरा उन्हें बताएं कि कैसे आपने मेंटेन किया, कैसे।
0: जी जी जी, मैं अपने देश के युवाओं को युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि युवा शक्ति ही देश की सबसे बड़ी शक्ति है। अनुशासन, साहस, मेहनत और देश के प्रति समर्पण से कोई भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे लाइफ स्टाइल से मैं मतलब बेसिक बताऊँ, बिल्कुल एक हम लोग का जब एक था या ये जो भी आर्मी से हम अभी रिलेटेड हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको जो है अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए उठने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप सूर्य उदय से पहले मतलब मॉर्निंग में 4 से 5 के बीच में उठ जाते हैं, तो आपकी मतलब 50% आपकी जो लाइफ स्टाइल है वहीं पे आपकी सुधर जाएगी। तो अगर आप 4 से 5 बजे तक उठ जाते हैं और डेली का जो आपका रूटीन है तैयार होने का, उसमें तैयार होने के बाद तकरीबन आप 20 मिनट अगर वॉकिंग करेंगे, योगा करेंगे या दौड़ेंगे, जॉगिंग करें, योगा करें या रनिंग करें, कुछ भी करें 20 मिनट के बाद में, उसके बाद तकरीबन 20 मिनट से 25 मिनट तक आप योगा करें। योगा करने के बाद में 10 मिनट का समय आप निकालें, बाद में फिर आपको जो टास्क मिलता है उस टास्क को आप करें। मैं आपके केवल बेसिक जो फिटनेस के बारे में है वहीं पे चल रहा हूँ खाली। उसके बाद में आपका दिन भर का जो भी टास्क है उस दिन भर के टास्क को करते रहें। जब भी आप सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसमें अच्छा भोजन करने की कोशिश करें, दोपहर में खाना खाते हैं अच्छा खाने की कोशिश करें, रात में खाना खाते हैं कम से कम खाना खाने की कोशिश करें, अधिक से अधिक पानी पीने की कोशिश करें, और चिंताओं से मुक्त होने के लिए कोशिश करें कि भाई जितना भी आप चिंताएं लेके आते हैं सवेरे के टाइम जब अपने इष्ट देव से आप रूबरू हो रहे होते हैं, उनसे आपकी बातचीत हो रही होती है, तो अपने सारी चिंताओं को उनके ऊपर दे देना है कि अभी ईश्वर आप ही देखिए, हमने जो आपने हमको इस दुनिया में लाए थे, हमसे जो भी आपने काम कराया, हमने उस काम को किया, उसमें जो भी त्रुटियां हो रही है, जो भी मिस्टेक हो रही है, जो भी गलतियां हुई हैं, उसको आप देखिए। और ये रूटीन करते करते आपको शाम तक लेके आना है। शाम को भी सेम जो आपने सवेरे 1 घंटे का काम किया है, 20 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, ये मैं मानता हूं कि आजकल की बिजी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जिम मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको गार्डन, मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको पार्क मिलेगा, और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो आपके घर में आपकी छत मिलेगी, आप छत के

0: ऊपर भी अपना समय निकाल के आधे घंटे के लिए अगर शाम को भी इस चीज को करते रहेंगे और डाइट अपना सही रखेंगे तो आई थिंक आप बिल्कुल फिटनेस में रहेंगे।
1: आपने अभी बोला कि आप अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइए,
0: जी
1: क्योंकि आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है यूथ को। एक स्ट्रेस के लिए एक बीमारी आ चुकी है, हाइपरटेंशन।
0: जी
1: आजकल बहुत सारे युवा से ग्रसित हैं। आप तो
0: जी
1: ऐसी नौकरी ही करते थे जिसमें स्ट्रेस 24 घंटे लगा रहता था। आपने उसे कैसे मैनेज किया, हमारे लिसनर्स को जरा बताएं।
0: जी मैंने उसको बहुत बेहतर तरीके से वो किया। इसके अंदर में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो मेरे परिवार की थी। मेरे परिवार के तरफ से मुझे कभी भी इस तरह से मतलब तनावपूर्ण स्थिति में घर के तरफ से कोई संदेशा नहीं मिला या कोई सिचुएशन ऐसी नहीं आई कि जिसके चलते मैं देश सेवा करने में अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करूं। घर के तरफ से मुझे, फैमिली के तरफ से, मेरे माँ के तरफ से, मेरे फादर के तरफ से और खास करके मेरे वाइफ के तरफ से, बच्चों के तरफ से एंड फुल रिलेशनशिप के तरफ से मुझे कभी भी ऐसे मतलब सिचुएशन में नहीं आना पड़ा। इन लोगों ने अपनी सिचुएशन को स्वयं ढूंढा, स्वयं उसका जो है सॉल्यूशन निकाला। क्योंकि मैंने जब भी वर्दी पहनी थी उस समय भी मैंने इस चीज को इन लोगों को बताया था कि देखिए सबसे पहले आज जब मैं वर्दी पहन रहा हूं तो मेरे लिए सबसे पहली जो मेरी चुनौती है वो है मेरा देश, उसके बाद में मेरा कर्तव्य और उसके बाद में मैं स्वयं हूं। तो जब मैं स्वयं हूं उसके बाद में आप लोगों का नंबर आता है। तो जो भी मैं अपनी देश सेवा कर रहा हूं या जो भी मैं सर्विस कर रहा हूं, जो मैं नौकरी कर रहा हूं, उसमें मुझे आप लोगों की तरफ से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। तो जो मतलब एक दो पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया मैम मेरा कि जो मैं अपना पर्सनल लाइफ तो चलो है ही नहीं, कोई पर्सनल लाइफ तो है नहीं, एक हो गया फैमिली लाइफ, एक हो गया मेरा जो कर्तव्य है, मेरी जो ड्यूटी है, जो मेरा देश के प्रति कार्य है वो। तो मैंने अपने देश का काम किया सबसे पहले और परिवार ने अपना काम किया अपने हिसाब से, और उसी के बीच में मैं इन दोनों को, दोनों नाव पे पैर रखकर मतलब चलते चलते और 26 साल का जो है टर्नओवर मैंने अपना निकाल दिया।
1: मतलब फैमिली सपोर्ट आपके लिए एक वरदान के जैसे था। उन
0: जी
1: सभी
0: मैम
1: ने आपकी सिचुएशन समझी, आपके देश प्रेम को समझा, आपकी वर्दी की अहमियत समझी और आपके जुनून और जज्बे को सराहा। मैं आपसे एक और सवाल बस इतना सा पूछना चाहूंगी। एक्चुअली ये सवाल नहीं है, ये एक नसीहत है, सीख है। तो आप हमारे लिसनर्स को बस ये सीख दें कि कैसे अपने रास्ते पर चला जाता है, कैसे अपनी जिंदगी को एक लक्ष्य को साध कर उस पर काम किया जाता है।
0: जी मैं अपने तरफ से आज के युवा को थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ कि आज का युवा सिर्फ अपने भविष्य के बारे में ना सोचे बल्कि ये भी सोचे कि वो देश के भविष्य को मजबूत बनाने में अपना क्या योगदान दे सकता है। अपने लक्ष्य को तय करे, लगातार मेहनत करे, अपने माता पिता और देश का सम्मान करे और नशे तथा गलत सोच और संगति से दूर रहे। सपना बड़ा देखो, कठिन मेहनत करो, अनुशासन को देश का हिस्सा बनाओ और अपने हर काम में देश हित का ध्यान रखो। देश ने हमको बहुत कुछ दिया है, अब हमारी बारी है कि हम देश को कुछ वापस दें। हम सैनिकों ने सीमा पर देश की रक्षा की है, अब देश की तरक्की की जिम्मेदारी हमारे युवाओं के कंधों पर है। मेरा विश्वास है जब युवा मजबूत होगा तभी भारत मजबूत होगा।
1: बहुत अच्छी बात कही सर कि आपने देश की सुरक्षा तो संभाल रखी है, लेकिन अब जो देश का विकास है वो हम युवाओं को संभालना। और मुझे यकीन है कि आपका ये जो विश्वास है ना, वो हमारे देश के जो करोड़ों युवा हैं, लाखों युवा हैं, जो देश की उन्नति में अपनी बुद्धि का योगदान दे रहे हैं, वो देते रहेंगे। अपने देश को संपन्न, सर्वगुण संपन्न बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
0: जी बिल्कुल, मैं अंत में अपने युवाओं को और अपने देशवासियों को भी एक दो लाइन थोड़ा बोलना चाहता हूँ देश के लिए भी, कि खून की हर बूंद देश के नाम हो, हर सांस तिरंगे के नाम हो, जब तक शरीर में जान रहे भारत माता का सम्मान रहे। मिट्टी से बने हैं हम, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन जब तलक भी सांस है हिंदुस्तान के काम में आएंगे। इसी के साथ मैं और अपने यूथ के लिए एक मैसेज कि हाँ जो लक्ष्य आपने साधा है उस लक्ष्य पर आप अपना जो है काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।
1: तो दोस्तों, हमारा आज का साक्षात्कार यहीं समाप्त होता है। और जैसा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि दिनेश जी ने हमें ये बताया कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो उनके कंधों पे थी, उन जैसे सैनिकों के कंधों पे थी, लेकिन देश की उन्नति की जिम्मेदारी हम युवाओं पर है। और उनके इस भरोसे को, उनके जैसे लाखों सैनिकों के इस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे।

0: में साबित करके दिखाना है, अपने देश को सफल, सुदृढ़ और सुंदर बनाना है। इसी के साथ मैं दिव्या द्विवेदी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने भारतीय सैनिक हवलदार दिनेश कुमार सिंह से हमारी साथी दिव्या द्विवेदी की बातचीत सुनी। हमें पूरी उम्मीद है कि ये बातचीत बेहद सार्थक हुई होगी आपके लिए, और यकीनन लद्दाख और कश्मीर को एक नए नज़रिए से देखने का हमें मौका मिला, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि फिटनेस बेहद ज़रूरी है एक आर्मी के लिए भी और हम जैसे जो सिविल्स हैं उनके लिए भी। तो फिटनेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बहुत थैंक यू दिव्या का भी जिसने ऐसी सार्थक बातचीत हमसे साझा की। अब श्रोताओं, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट प्रेरणा पुंज की ओर, और आज के हमारे प्रेरणा पुंज हैं मोक्ष गुडम जी। भारतीय इतिहास में ऐसी महान विजनरी, सिविल इंजीनियर और राष्ट्र निर्माता के रूप में उनका नाम दर्ज है। उन्होंने अपनी तकनीकी प्रतिभा और दूरदर्शिता से आधुनिक भारत की नींव रखी। वे केवल एक उत्कृष्ट इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक महान शिक्षाविद और मैसूर के सफल दीवान भी रहे। उनके योगदान के सम्मान में ही भारत में हर साल 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है। उनका जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले के मदेना हली गांव में हुआ था। हायर एजुकेशन के बाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उनकी असाधारण प्रतिभा को देखते हुए उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लोक निर्माण विभाग PWD में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो कृष्णराज सागर बांध मैसूर में कावेरी नदी पर इस ऐतिहासिक बाढ़ का निर्माण उन्होंने किया। ऑटोमेटिक फ्लड गेट्स का पेटेंट, ऑटोमेटिक स्लाइस गेट का आविष्कार उन्होंने किया, और जैसा कि हमने बताया कि वो मैसूर के दीवान रहे, और 1955 में भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। उनके जन्मदिन पर 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है।

तो श्रोताओं, अब बारी है प्रश्न मंच सेगमेंट की। तो कल का सवाल पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, जिसका सही जवाब है तिब्बत का पठार। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज का सवाल है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही जवाब आप हमारे नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 800-4926-250। हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी पूजा यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम भी 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हिंदी में। समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए दोनों देशों के बीच में। जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार के पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
2: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में

0: धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है, इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत ने HIV एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं और इन परीक्षाओं में चयनित कर्मचारियों को संबंधित पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई, जिनकी नियुक्तियां सरकारी अधिसूचना से प्रभावित हुई थीं। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 103 मेगा हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत हैं कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात 10 बजे लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे खेल दर्पण। शाम 6:30 बजे पंचायत घर में ग्रामीण श्रोता राधे श्याम कुशवाहा और साथियों के स्वर में लोकगीतों के अलावा रामायण पाठ सुनेंगे। शाम 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा किसान चर्चा, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर डॉक्टर सौम्या कृष्णा की वार्ता प्रसारित की जाएगी। दूरदर्शनम जन माध्यमतस्य विश्वसनीय स्वरः। सुगम संगीत 7:45 इसमें आप कीर्ति चौधरी के स्वर में गीत और भजन सुनेंगे। 9:30 बजे

सकते हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। शाम 6:30 पर शास्त्रीय संगीतिक कार्यक्रम में आप पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन सुनेंगे। रात 8 बजे चित्रपट संगीत और 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल रात 9:30 दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। कृषि जगत में प्रातः 6:35 पर किसान भाई डॉक्टर डीएस चौहान की वार्ता सुनेंगे, आलू की सह फसली खेती। प्रातः 6:45 पर रोज की तरह स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा। इसमें आप बदलते मौसम में बच्चों में होने वाले सामान्य संक्रमण के बारे में वार्ता सुनेंगे। रामचरितमानस का संगीतमय पाठ सुन सकते हैं सवेरे 7 बजे। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सवेरे 7:30 पर आप सुनेंगे पंडित संजीव अभ्यंकर का ख्याल गायन। दिन में 12:15 पर पद्मा तलवलकर का ख्याल गायन और रात्रि 10:30 पर पंडित उमाशंकर का सितार वादन। उर्दू कार्यक्रम में सवेरे 9:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे डॉक्टर अर्शिया सरफराज का मकाला मखदून मोहिद्दीन इंकलाब का शायर। सुगम संगीत में सवेरे 9:30 पर कलाकार होंगी पामेला नंदी। वॉइस ऑफ प्रयागराज, इसमें आप सुनेंगे डॉक्टर मुकेश उपाध्याय से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत। सवेरे 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में कलाकार होंगे भारत लाल, नीलम शर्मा, राम प्रसाद और साथी। शाम 6:30 पंचायत घर में लोकगीतों के कलाकार होंगे राम प्रसाद और साथी। पंचायत घर में लोकगीतों के अलावा ग्रामीण भाई श्रीपति उपाध्याय से नीति वचन सुनेंगे। श्रोता अपने फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गाने सुन सकते हैं। फोन इन कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। ये वाणी रोज की तरह शाम 5:15 पर। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे बोलते नगमे। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं समूह स्वर में देश गान।

0: अभी आप समूह स्वर में देशकान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम भी 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। नवदिल्ल्या प्रतिपादितं यत् खातिप्रदेशे वाणिज्यिक पोतानां सामुद्रिक यात्रिणां नागरिकाणां तथा नागरिक मूल संरचनायाः लक्ष्यीकरणं भारताय अस्वीकार्यमस्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरतां प्राप्तुं सशस्त्र बलानां रक्षानुसंधान विकास संघटन संस्थायाः तथा उद्योग जगतः मध्ये अधिक सहकारस्य आह्वानं कृतवान्। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली चेत्येतेषां मुख्यमंत्रिभिः यमुना नद्याः पुनरुद्धाराय किशाऊ बहुउद्देशीय बंध परियोजना संबद्धे संधौ हस्ताक्षराणि कृतानि। अमेरिकायाः न्यायालयेन वैदेशिक छात्राणां वार्ताहराणां च कृते ट्रंप

पंचों राम राम। देखा पंच भाई, अपने पंचायती में आज हम आवा ही, और अपने पंचायती में भैया गीत गवनाई से लई के जोन खेती किसानी के बात होए, और साथ ही साथ भैया देखा जोन कुछ जानकारी वाली बात है, वो सब आपके साथ।

सामने पहुंचाई जाए। देखो पहली चीज ये पंच भाई की भाई जोन समय चलत बाटई, अब भाई देखा खरीफ का समय चलत बाटई और खरीफ में जोन राजा फसल हो था वो होता भैया धान। धान का फसल में अब भाई जोन काम करे की जरूरत बाटे कि भाई जोन आपके खेते में डाणे में जोन भैया खरपतवार उगी आवा हैं ओका हटाई दें, समय समय पे भैया जोन दवा बाटे जोन कीटनाशक बाटे ओकर छिड़काव कराई। अगर आपके खेत में अतिरिक्त पानी बाटे भाई देखा ए साल बारिश अच्छे से भाई बाटे, और जोन कहा जाता कि भाई

जोन कीटनाशक बाटई ओकर छिड़काव कराई, अगर आपके खेत में अतिरिक्त पानी बाटई, भाई देख ए साल बारिश अच्छे से भाई बाटई। और जोन कहा जाता कि भाई पानी धान के भाई चाहत होता, पर ज़्यादा पानी भी भैया आपके नुकसान कही जाता, पेड़ों से गिर जाता। काहे का भाई जब बाली लग जाए पेड़ में तो पेड़ हो जाए आपके भारी, भारी होए के खातिर भैया उमन गिरे के खतरा होता। तो सही तरीका होकर यही बाटे कि जोन अतिरिक्त पानी बाटई ओका भाई अपने खेत से निकाल लिया जाए। दूसरा चीज़ ये बात बाटे कि जोन जानकारी के बात हम करते रहे कि भैया अपने सरकार जोन बाटई भाई खेती किसानी में भी और अपने पंच भैया के भाई प्रोत्साहित करे बिना तमाम तरह के भैया योजना लय के आवत है, जेमन कि भाई आपका आर्थिक रूप से मदद हो सके, सामाजिक रूप से आपका मदद हो सके। ए तरह की तमाम जोन सरकारी योजना बाटे वो आप किसान भैया बरे भाई सरकार जोन बात लेके आवत है। उमन एक महत्वपूर्ण योजना बाटे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब भैया देखा योजना में का बाटे भाई हम सब एक किसान बने ही है, कबो न कबो भैया देखा पैसा की जरूरत पड़त है, कबों खाद खरीदे के बाटे, कबों बीज खरीदे के बाटे और कबों कीटनाशक खरीदे के बाटे। समय समय पर जब पैसा की जरूरत पड़त है भैया तो देखा हम सब तो कतों आऊ तो हमारे आय का स्रोत तो नहीं बाटे। तो अगर पैसा का मदद हो जाए भैया रच रुआ भी हम कहते हैं तो भाई उसे अपनी खेती किसानी में काफ़ी लाभ मिला था और खेती किसानी भी भाई सुचारू रूप से चला था। भाई कतों आप गवा गया ऋण ले बिना, ऋण आपके नहीं मिला, काश्तकार भाई ज़्यादा पैसा लेत बाटा बाटे और ज़्यादा आपसे ब्याज लेत बाटे। ऐसे अच्छा बात है कि भैया जोन प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना बाटे भाई इमन आपके भैया 2000 रुपया 3 बार आपके 1 साल में मिले। जोन पात्र किसान भैया हरे हैं भाई उनका ये भाई DBT यानी डायरेक्ट आपके खाता में जोन आपका बैंक खाता बाटे ऊपर मिले। अब ऐसे होए का कि आपके जब समय समय पर पैसा मिल रहे तो भाई आप समय समय पर खाद खरीद सकत है, समय समय पर भैया बीज खरीद सकत है और जोन दिक्कत परेशानी आपके पहले होत रही वो ना होए। अब जानकारी का एक बात और बाटे किसान भाई कि अपने भाई सरकार जोन बाटे भाई जोन छोटवार लड़का बच्चा होते हैं भाई उनकर पोषण सही से हो सके ये बिना भाई 9 सितंबर 2026 से चलत बाटे आपका पोषण माह। पोषण माह का भैया शुरुआत जोन ए बरे की गई बाटे कि भाई जोन आपको छोटवार बच्चा हैं या जोन आपका गर्भवती महिला हैं भाई उनका सही तरीके से उनका जो है पोषण मिल सके। होत का है कि भाई जोन शुरुआती एक दिन होता 100 दिन 200 दिन 300 दिन बच्चा बरे वो बहुत ज़रूरी होता पोषण बिना, वो समय अगर सही तरीके से आपके पोषण मिल जाए तो भाई निश्चित तौर पर भाई आपके आगे वाला जोन समय होता वो अच्छा होता। साथ ही साथ देखा भैया बात तो हम बहुत ढेर सारी आपके बतावा पर अपने पंचायती की जोन परंपरा बाटे कि हम सब जब आई थे तो भाई आपके स्वागत में कुछ गीत गवनई लेके आई थे। तो भाई आज के अपने पंचायती में राधे श्याम कुशवाहा संघातिन का एक विकास गीत बाटे आवाओ के सुन लिया जाए।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: हाँ पंचभाई, देखा हम सभी सुना गवा लोकगीत राधे श्याम कुशवाहा और संघातिन का साथे साथे संदेशो सुना गवा। अब देखा भैया, आज मंगलवार का दिन बाटाई और मंगलवार के दिन भैया अपने पंचायती में रामायण पाठ बजत है, तो भैया श्यामा चरण पांडे का रामायण पाठ बाटाई। अब देखा को सुन लिया जाए, फिर आगे बात बत कही हुए।
4: यह रामायण पाठ लघु कथा सुंदरकांड से है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई।

पर बार बार रघुबीर संहारी। तरक्यो पवन तने बल भारी, यही गिरि चरण देई हनुमंता।

हनुमान जी को बहुत प्यारे लगे। बोले, हे भाइयों, तुम सब लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट न आऊं। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रभु के नाम को हृदय में रख कर चल देते हैं। जिस पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी कूदे वह तुरंत पाताल में चला गया। समुद्र ने हनुमान जी को रामचंद्र जी का दूत जानकर मैनाक से कहा, तुम इनकी थकावट दूर करने वाले बन जाओ। इंद्र वज्र जा दिन कर लीना, पर्वत सबे पंख बिन कीन्हा, ता दिन मारुत कीन सहाई, ता सुतने लंका को जाई। सिंधु बचन उरयानी तुरत उठे मैनाक, तब कपि कह कीन प्रणाम बार बार कर जोरी के। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जा

आज सुरन मुहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमार। राम काज करि फिर मैं आओ, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहो मुहि जान दे माई। कवन वो जतन देह नहीं जाना, ग्रससिन मोही कहो हनुमान। जो

सुत बातिश भयऊ। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी को जाते देवताओं ने देखा, बल देखने के लिए सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। सुरसा ने कहा आज भोजन बहुत ही अच्छा मिला हुआ है। हनुमान जी ने कहा प्रभु का कार्य करके आऊंगा और तब मुझे खा लेना। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दूत

बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागी बिदाता हे सिर नावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, राम काज सब करिहूं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चल्यो हनुमान। निश्चर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह के परछाही, गहई छाह सकसो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरतई चीन्हा, ताहि

स्वामी जी कहते हैं, समुद्र में एक राक्षसी रहती है। वह अपनी माया से आकाश के जीव जंतुओं को पकड़ लेती है। यही कपट हनुमान जैसी भी किया। हनुमान जी उसे मारकर समुद्र पार जा पहुंचे।

तापर जाई चढ़ो भय त्यागे, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरी पर चढ़ी लंका तही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेखी, अति उतंग जलनिधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत अति घना, चहु हट हट सुभट बीथी, चारु पुर बहु विधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनि को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल से।

0: नर नागसुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बलगर जही नाना अखारिणी भिड़ही बहु विधि एक एक ही तर जही करियतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिशि रक्षही कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही यही लागि तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही रख।
1: हाँ पंचो देख जोन रामायण पाठ रहा श्यामाचरण पांडे का भैया वो सुना गब अब देख चली चला का बेला भाई बात तो भाई पंचो आज्ञा आप आज्ञा दें हम तो पंचो राम राम।
2: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम किसान वाणी लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद।
1: रत्ना बहनी।
0: हाँ ओम भैया।
1: देखो हम पंचे खेती करे थन और सोचे थन कि अपनी खेती में यहाँ ज्यादा ज्यादा मुनाफा होए।
0: भैया आज की जरूरत यह है कि अगर हम पंच खेती करी या कोनो काम करी तो वही में ज्यादा ज्यादा मुनाफा हो, एक खातिर नई नई तकनीक नई नई जानकारी का इस्तेमाल करब बहुत जरूरी।
1: हाँ तो अपनी खेती में यहाँ देखो समन्वित कृषि प्रणाली अपनावे जरूरत है। काहे तेरे देखो आकर जोन हम पंचे खेती करी थन जोन फसल उत्पादित करी थन वही माँ कबो कबो नुकसान हो जाते।
0: सही बात कहा, तो नुकसान ना हो पावे पूरी तरह से अपने हाथ खाली ना हो पावे उसके खातिर खेती के साथ साथ वो खेती से संबंधित जो उन काम होते हैं उनका करत रही जिससे हमका दोहरा लाभ मिले।
1: हाँ अब देखो हरहा गोरू पाल सकत हो अपने खेती के साथ और मछली पालन कर सकत हो मुर्गी पालन कर सकत हो।
0: बिल्कुल सही बात कहा, तो इनका करे से जो अपनी खेती के काम में कोई अड़चनो ना आई और साथ में यह ई काम करे से अपनी खेती में कहूँ ना कहूँ सहयोगी रहते हैं।
1: और यह बात यह होते जैसे मान लो जोन अपन मुख्य फसल हम बंचे कर रहे हैं

0: अगर वही माँ कोनो नुकसान हो जाते तो जो दूसर फसल किन जा रही है वही तेरे मुनाफा हो जाते तो हम पंचन के यहाँ घाटा नहीं लग पाते।
1: सही बात कहा थो कि अपने हाथ जो है पूरी तरह खाले नहीं हो पावत है, कुछ न कुछ अपने हाथे में यहाँ धन रहते है जिसे काम कोई रुकत नहीं है।
0: हाँ, और काम तब हूँ नहीं रुकत है जब हम पंचन कैया आज की खबरें पता चल जाती हैं।
2: उत्तर प्रदेश में रबी सीजन 2026-27 की तैयारियों के तहत किसानों के लिए प्रमाणित बीजों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग की ओर से गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ, सरसों और अलसी सहित विभिन्न रबी फसलों के बीज 50% तक के अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही पात्र किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट का लाभ भी दिया जाएगा। किसान कृषि विभाग की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित अवधि में बीज की बुकिंग कर सकते हैं। गेहूं और अन्य फसलों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। लक्ष्य से अधिक बुकिंग होने की स्थिति में किसानों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जा सकता है। कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते ऑनलाइन बुकिंग कराने का और योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रत्ना बहनी।
4: हाँ ओम भैया।
3: देखो खरीफ की फसलें अपने ख्यात मैया है इबेरा और जो है महिमा का प्रबंधन किया जाए। अगर कोई विशेषज्ञ भैया तेरे जानकारी मिल जाते तो कन्ना नहीं खोई जाते।
4: तो भैया काहे ना जानकारी दिवा दिन जाए। आज की बातन में खरीफ फसलों में सामायिक प्रबंधन जी के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन भैया।
3: तो आओ जाना जाए।
5: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय खरीफ की फसलें आपके खेत में खड़ी हैं, तो सामायिक प्रबंधन क्या कुछ करें इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र फर्स्ट जमुनाबाद गोला लखीमपुर खीरी से वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर पीके बिसेन साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस समय जहाँ खरीफ की फसलें खेत में हैं तो सामायिक प्रबंधन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर किसान भाइयों बहनों को ध्यान देना है।
6: किसान बहनों भाइयों आपको सादर नमस्कार। इस समय किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी हमारे देख रहे होंगे कि मौसम की पूर्वानुमान और मौसम की बहुत सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध हो रही है, बारिश हो रही है, और इसको देखते हुए अगर संभव हो तो खेत से अपने पानी, अगर धान का भी फसल है तो ज़्यादा पानी उसमें भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई प्रजातियाँ हमारी ऐसी हैं जो कि उस तरह की नहीं है कि उनको पूरा पानी में डूब जाएँ वो, तो वहाँ अगर संभव हो तो पानी निकालने की आप व्यवस्था कर सकते हैं। अगर जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है तो वहाँ पे पानी लगाने की आवश्यकता है, हल्की पानी जरूर लगा दें। साथ ही साथ ये देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों के जो धान की हमारी फसलें जिन्होंने समय से लगा दिया था उसमें बालियाँ भी निकल रही हैं, कुछ लोगों की बाली निकलने की अवस्था है, तो ऐसी अवस्था में अगर आपका जो नत्रजन है जिसका आपने भाग नहीं डाला है तो वो यूरिया के माध्यम से 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका बुरकाव कर सकते हैं। इसके अलावा पोटास जो हमारे पास है उस पोटास को भी अगर आप ले लीजिए तो वो जो है अगर आपने डाला ही नहीं शुरुआत में तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले लीजिए, जो म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से आता है उसको डाल दीजिए।
5: डॉक्टर साहब जल प्रबंधन की बात चल रही है तो जहां जरूरत से ज्यादा बारिश का पानी खेत में है तो हर फसल में जल निकास
6: जी बहुत जरूरी है। खास करके धान तो हमारा ठीक है, फसल अपने आपको संभाल लेता है, लेकिन खास करके जो दलहनी फसलें हैं जैसे हमारा है इसमें उड़द है, मूंग है, अरहर है, तिल है, और साथ ही साथ मूंगफली है और मक्का भी है हमारा, ये फसलें हमारी जो है अगर ज़्यादा बारिश हो रही है और पानी लग गया तो ये सूख जाएंगी और इसमें बीमारी या जो हमारे कीट का भी प्रकोप हो सकता है।
5: डॉक्टर साहब पोषक तत्व प्रबंधन में धान के अलावा किसी और फसल पर कुछ देना है
6: इस समय? अगर जिसका ये देखने में भी आता है मूंगफली, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है अभी कुछ लोगों ने लेट से भी बुआई की है, मतलब देर से बुआई उन्होंने कर दी, तो ऐसे मूंगफली की जो हमारी फसल है उसमें चाहें तो वो जिप्सम को कैल्शियम के रूप में और साथ ही साथ जो आपका बोरेक्स है जिसमें कि बोरान होता है उसका 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, और जिप्सम जो है हमारा वो

0: 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अगर हम डलवा दें खेत में, तो इससे क्या होगा कि इस समय फ्लावरिंग मतलब फूल की अवस्था आ गई है मूंगफली में, और कुछ लोगों में खूंटी बन रही जो कि हम पेगिंग कहते हैं, तो उसमें ये जिप्सम का जो रोल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और उससे हमारी फसल को फायदा ही होगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने पोटास की बात की, बहुत सारे किसान भाई बहन बेसल डोज में पोटास नहीं दे पाते हैं,
0: जी जी
1: तो जो भी खरीफ की फसलें हैं क्या 0050 का छिड़काव
0: जी हाँ
1: फायदेमंद
0: जी हाँ
1: होगा?
0: 0050 का कर सके, लेकिन ये ध्यान रहे कि खेत में उचित नमी रहे, सूखे में ना करें, उचित नमी रहे, तभी उसका पानी छिड़काव कर दें, उसका घोल बना लें और घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इस समय जब खरीफ की फसलें खेत में हैं तो हानिकारक कीट और बीमारियों के प्रबंधन के लिए फसल सुरक्षा महत्वपूर्ण है?
0: जी हाँ जी, यह बहुत जरूरी है। इसमें फसल सुरक्षा में हमको समन्वित जो कीट प्रबंधन है, समन्वित जो हमारे रोग प्रबंधन है, वो प्रक्रिया हमको अपनाना चाहिए। जैसे धान में अगर हम देखें तो इस समय जो है धान में सुंडी लगती है, अगर संभव हो तो उसमें अगर चिड़ियों को बैठने की अगर व्यवस्था कर दिए हों और उस तरह का कीट आपका जो है प्रकोप नहीं दिख रहा है, तो आप दवा कतई न डालें।
1: यानी खेत में बर्ड पर्चर बना
0: जी
1: दें?
0: जी बर्ड पर्चर, उसमें चिड़ियों को बैठाने की व्यवस्था कर दें, और अगर तब भी नहीं रुक रहा है तब आप जो है दवाओं पे जाएं, तो पहले उन दवाओं का उपयोग में लाएं जो नीम आधारित हैं, जिसमें कि हम अजाडिरेक्टिन के नाम से मार्केट में हमारे बाजार में उपलब्ध होता है, उसका जो है 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाइए, और उस घोल में ये ध्यान जरूर रखिए कि क्योंकि ये जो है फार्मुलेशन जो आता है ईसी में आता है, इसको हम इंग्लिश में इमल्सिफाइड कंसंट्रेट कहते हैं, तो ये तैलीय होता है, तो इसको जो है अच्छे से पत्तियों पर फैलने के लिए इसमें आप चाहे डिटर्जेंट पाउडर या शैम्पू का जरूर समावेश करें।
1: ताकि स्टिकर का काम
0: जी
1: करें
0: जी स्टिकर
1: और
0: का, और वो फैल
1: स्प्रेडर
0: जाए।
1: का भी।
0: जी जी वो बूंद जो बनता है वो फैल जाए जो है।
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी कई तरह के हानिकारक कीट हैं, जैसे कहीं कहीं तना छेदक कीट की समस्या है, बहुत जगह फुदकों की समस्या है।
0: जी, तो ऐसे जगहों पे अगर हम देखें तो अगर आपका इन अजाडिरेक्टिन या हमने जैसे पहले पूर्व में आपको बताया, अगर इनसे नहीं नियंत्रण होता है, तब हमारे पास है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड SP उसको कहते हैं, और ये 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको उपयोग करना पड़ेगा, और इसका जो अगर मात्रा देखें तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाइए और सायंकाल इसका छिड़काव जरूर कर दीजिए।
1: डॉक्टर साहब, कारटाप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार में भी आता है?
0: जी हाँ, वो शुरुआती दौर में जब पत्तियाँ का जो कवरेज है, हमारी जो पत्तियाँ होती हैं उस समय पूरा जो है जमीन को ढकी नहीं रहती, इस समय जो पौधा है वो जमीन को ढक चुका है, इसलिए हम दानेदार का जो है हम अनुशंसा नहीं करते, खास करके इसमें छिड़काव के लिए ही अनुशंसा करते।
1: तो इसकी 2 ग्राम मात्रा
0: प्रति
1: प्रति
0: लीटर
1: लीटर
0: पानी
1: पानी
0: में
1: के
0: आप
1: हिसाब।
0: घोल बना के इसका छिड़काव करें सायंकाल करें।
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो और हानिकारक कीट हैं तो उनके प्रबंधन के लिए IPM के कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं?
0: जैविक उपाय भी हैं, जैसे बेवेरिया बैशियाना है, दूसरा हमारे पास है मेटाराइजियम है, इसके अलावा स्टिकर्स आते हैं हमारे पास, फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं, लाइट ट्रैप्स आते हैं, इनका भी उपयोग हमको खेतों में करना चाहिए। जैसे और दूसरे हैं बैसिलस थिरुजेंसिस, इसको हम BT भी कहते हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस होते हैं, इनका भी उपयोग अगर इनकी गुणवत्ता अच्छी है अगर आप डालते हैं तो ये टारगेटेड मतलब जिस कीट को हमको नियंत्रण करना, अगर उसके ऊपर इनका छिड़काव अगर हो गया तो वो उनको नियंत्रित कर देते हैं। इसके अलावा आपके खेत में भूरा फुदका भी देखने को मिलेगा,
1: जी,
0: जिसको कि हम हापर के नाम से जानते हैं, और इस
1: BPH।
0: जी हाँ BPH इस समय दिखेगा जरूर, क्योंकि ये मौसम है सितंबर का, बारिश बहुत ज्यादा हो गई है, खेत में नमी बहुत है, तो ऐसी अवस्था में भी आप ध्यान रखें कि खेत से हो सके तो पानी जरूर निकाल दें। इसके लिए दो हम दवा का नाम आपके सामने बोल रहे हैं, अगर ये मिल जाए तो आप उसका जरूर उपयोग करें। एक दवा का नाम है पाईमेट्रोजिन, जो कि 50% को हम लोग वेटेबल ग्रेन्यूल कहते हैं, जो कि 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से मिलता है, या इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक दवा और आती है ट्राइफ्लू मेजोरिन करके, ये 94 ml प्रति एकड़ की दर से इसका हम स्प्रे, दोनों में से कोई एक दवा आपको मिल जाए तो इसका आप छिड़काव कर सकते हैं।
1: पानी की मात्रा कितनी
0: जी हाँ,
1: होगी
0: जब
1: एक?
0: पानी की मात्रा इन में जो है 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से आप हमेशा जो है ध्यान रखें कि 200 लीटर का आपका जो है बनाना है, ताकि 1 एकड़ का आपका अच्छे से आप छिड़काव कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बीमारियां भी लगती हैं धान के अलावा और अन्य फसलों में भी?
0: जी, हम धान का भी मैं बता दूं, धान में इसमें सीथ ब्लाइट जो है खास करके आपको देखेंगे पत्तियों के नीचे आपको धब्बे लाल रंग के, उससे आपकी बाली टूट के गिर सकती है, तो उसको हम ये रोकथाम के लिए ये ध्यान रखें कि खेत में नमी न रहे, और अगर संभव हो तो आप यूरिया कतई नहीं डालिएगा, उसमें एक दवा आती है एजॉक्सीस्ट्रोबिन, उसके बाद उसमें दूसरी दवा होती है डाइफेनोकोनाजॉल, इसका जो है 200 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी के हिसाब से मतलब 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर लेंगे।
1: धान के अलावा दलहन और तिलहन भी है?
0: जी हाँ, हम किसान भाइयों को एक चीज और भी बता दें, आप जो

0: दलहनों में खास करके उड़द और मूंग हमारा है, अगर प्रजातियों के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो अगर वो प्रजातियां आपके पास हैं जो किसी भी बीमारी से या कीट से अगर वो सहिष्णु हैं और रोधी हैं तो उसमें तो दवा कतई नहीं डालिए, उसमें जो है वो अपने आप, उसमें उनके कैरेक्टर हैं कि वो अपने आप को बचा लेते हैं। तो हम कुछ वैरायटियों का नाम बोलेंगे, अगर है तो उसमें दवाएं नहीं डालिएगा, खास करके मूंग में पंत मूंग 2 है, 3 है, पीडीएम 54 है, पीडीएम 11 है, एमएल 337 है, नरेंद्र मूंग 1 है, ये विराट भी है। ये जो है पीली पत्ती जो मोजैक बीमारी आती है, खास करके सफ़ेद हमारे मक्खी से फैलता है ये, उसमें नहीं आती है, सहिष्णु होते हैं, टॉलरेट कर जाते हैं। दूसरी जो हमारी उर्द में आती है उसमें भी ये पंत उर्द 19 है, 30 है, PDU1 है और 1 है, हमारे पास UG218 तथा नरेंद्र उर्द 1 है, अगर ये भी प्रजाति हैं तो इसमें जो है पीली पत्ती मोजैक नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर आपका नहीं नियंत्रण हो रहा है, ये प्रजातियां नहीं है
1: और नुकसान का स्तर अधिक है,
0: अधिक है, तब इसमें हम करेंगे तो इसमें दो दवाओं का एक जो है मिश्रण होता है जिसको हम कहते हैं पायरी प्रोक्सीफेन प्लस बाइफेंथ्रिन होता है, उसका 400 ml प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में सामयिक प्रबंधन के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र जमनाबाद गोला लखीमपुर खीरी आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: किसान भाई, आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, 9453791558, 9453791558, 94-53-1558।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ फसलों में सामयिक प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: किसान भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि खास करके ये ध्यान दें कि अगर बहुत सारी जानकारियां आजकल इस जो हमारे डोमेन में या कहिए तो कई क्षेत्रों में बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं तो अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र, शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों से आप जरूर संपर्क करें और अपने ज्ञान का जो है बढ़ोतरी करें, साथ ही साथ जानकारी और इकट्ठा करें। और खास करके जो हमारे पास जो समन्वित कीट प्रबंधन या समन्वित व्याधि प्रबंधन के बहुत सारे हमारे पास मॉड्यूल्स हैं उसके बारे में भी आप जानकारी इकट्ठा करिए, उनको खेतों में उपयोग में लाइए और आवश्यकता पड़ने पे ही कीटनाशी या जो हमारे व्याधिनाशी का उपयोग करें, ये ध्यान रखें।
1: डॉक्टर पीके बिसेन साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ फसलों में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ओम भैया।
3: हाँ रत्ना बहनी,
2: अति नीक नीक जानकारी दे वही के साथ में या अगर बढ़िया से गौना सुनवा दो तो कत्ता नीक रहा है।
3: अरे बिल्कुल रत्ना बहनी, देखो गौना लेके आया है, नाव सुना जाए और पंचो भाई सुने सतीश चंद्र श्रीवास्तव भैया के स्वर मैया।

0: रत्ना बहनी।
1: हाँ ओम भैया।
0: देखो अपने बीच में बहुत किसान पंचायत होते हैं जो इतनी मेहनत तेरे खेती के बहुत नीकी तना तेरे करते हैं, तो आज के किसान अपने बीच में यहाँ हैं, तो आओ जान लीजिए उनकी कहानी उन्हें की जवानी।
2: किसान भाइयों बहनों आइए आज आपको ले चलते हैं बहराइच जनपद के चित्तौड़ा ब्लॉक के सुरजापुर माफी गाँव, जहाँ नॉनमेसी किसान जय सिंह साहब टेलीफोन लाइन पर है। जय सिंह साहब नमस्कार।
3: नमस्ते
2: सिंह साहब, आप केला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस साल रकबा कितना है आपका?
3: मेरे पास वही 25 एकड़ के आसपास लगता है। इस बार भी 23.5 एकड़ रकबा है, 25,000 प्लांट लगाए हैं।
2: और पुरानी फसल?
3: पुरानी फसल भी इतनी ही थी।
2: तो केला की हार्वेस्टिंग हो गई?
3: कटाई 96% कंप्लीट हो चुकी है, 5 तारीख को लास्ट गाड़ी लद के चली गई।
2: तो ये बताएं कि जो 24 एकड़ आपका केला है उसकी रोपाई और रोपाई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के फसल की कटाई तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं?
3: सबसे महत्वपूर्ण बात केले की खेती में समय होती है, और समय बीत जाने के बाद में कभी भी आपको अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिलते हैं।
2: आगे कौन कौन सी देखभाल आप खड़ी फसल में करेंगे ताकि जाड़े के पहले आपकी अभीष्ट ऊंचाई तक पहुंच जाए फसल?
3: विशेष करके अभी हमारे पास 60 से 65 दिन बचे हैं 15 नवंबर आने में, और यही ये सबसे तेज बढ़वार का समय है। इसमें गोबर की खाद इकट्ठी की हुई रखी है, जैसे पहला मौका लगेगा वैसे उठा के हम पहुंचाएंगे पौधे के पास, गोड़ जोत ठीक से करेंगे। तो हमारी अपेक्षित हाइट जो 3 फुट से 3.5 फुट 15 नवंबर के आसपास आनी चाहिए, उसके लगभग फसल पहुंच जाएगी।
2: अभी जो आपने रोपाई इस बार की है केले की, उसका अंतरण क्या है, लाइन से लाइन की दूरी, पौध से पौध की दूरी?
3: मेरे पास में मशीन का काम ज्यादा रहता है, तो 7 फुट लाइन से लाइन है और 5.5 फुट पे प्लांट से प्लांट है। लगभग 1080 से 1100 पौध एक एकड़ में लगती है।
2: तो फसल की भूख मिटाने के लिए क्या किस्तों में आप उर्वरक की मात्रा देते हैं?
3: जी ऐसा है कि पिछले अनुभव से समय से जब हम गोबर की खाद लगा लेते थे तो नॉर्मली ये देखा जाता था कि 15 नवंबर तक पौधा रुकता नहीं है, उतनी ही गोबर से जो करीब 400 से 500 क्यूबिक फीट एक एकड़ में हम लगाते थे उससे उसकी अपेक्षित ग्रोथ 3.5 फुट बन जाती थी, तो उर्वरक बहुत कम देना पड़ता था, ना के बराबर, यूं कहिए सिलेक्टिव फर्टिलाइजेशन करना पड़ता था जो प्लांट अपेक्षाकृत कुछ छोटे रहते हैं उसको देखते हुए
2: जी।
3: और उसका एक पैमाना था, मैंने जो

0: अपने अनुभव से बनाया कि 15 सितंबर तक के जो पौधा है वो लगभग 10 इंच हाइट जरूर ले ले। अगर छोटा होता था तो उसको 10 दिन पहले से पालना पोसना शुरू कर देते थे। ऐसे ही 15 अक्टूबर तक वो आपका 2 फुट से 2.25 फुट हाइट अवश्य ले ले। और ऐसे पौधे ये देखा जाता था कि 15 नवंबर आने तक 3.5 फुट हाइट, 1 मीटर की गर्दन इनकी बन जाती थी।
1: जी, तो जो इस बार आपने हार्वेस्टिंग की है केले की फसल, तो उसका
0: जी
1: क्या आंकड़ा रहा? एकड़ में कितना लागत गिरी, उत्पादन कितना तक ले लिए और आपका मुनाफा हुआ
0: उत्पादन
1: कितना?
0: जी 14.87 रुपए का एवरेज रेट छूटा है बिक्री का, और एक घार का वजन 24 किलो, 24.5 किलो करीब आया है।
1: और लगभग 1100 पौधे प्रति एकड़ आए हैं आपके?
0: 1050 सर्वाइवल, 1000 पौधा। इस बार पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि फ्रूटिंग ऑलमोस्ट नहीं 100% आई, और आप यकीन करें कि 96% कट के मैं दिल्ली के पास साहिबाबाद की मार्केट में जहां सेल करता हूं सेल भी हो गया।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है केला उत्पादन का, उसके
0: जी
1: आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो केला उत्पादन से जुड़े हैं?
0: सबसे पहली सलाह ये देना चाहूंगा कि खेत की गर्मी में जुताई गहरी करके खेत अच्छा प्रिपेयर करें, ढैंचे की बुवाई करके उसकी हरी खाद से उसका जीवांश कार्बन बढ़ाएं, और पौधा अच्छी नर्सरी से लेके अपने यहाँ 15 जुलाई से और 20 जुलाई के बीच हर हाल में एक छोटा सा शेड नेट अपनी जरूरत के अनुसार बना के रख लें, और उस पौधे को 2-4 दिन जो आया है, जो थकान है उसकी या जो उसकी जड़ें रूट जोन डिस्टर्ब है, उसको मौका दें कि वो सुधर जाए, और इस बीच में उसकी थोड़ी एनपीके पड़नीय छिड़काव जो 15-15-15 या 19-19-19 से करके, और एक फंजीसाइड जैसे एमी स्टार टॉप है इसका 0.75 ml पर लीटर तीस दर से हफ्ते में एक बार दो बार करके उनको ये जिलाएं। और इन पौधों में एक बहुत सावधानी के साथ बताना चाहूंगा काम करने को भाइयों को कि जो ये प्लांट्स आते हैं ये कभी भी एक रूप नहीं होते हैं, उनको अपनी नर्सरी में उतार के ग्रेडिंग करके एक रूप बना लें।
1: जी,
0: जो
1: हार्डनिंग कर लें।
0: पौधे जी आप 4 दिन से 1 हफ्ता भी अगर 5 दिन भी रोकेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कौन सा 6 पौधे में 8 पौधे की सेट तख्ती जो आती है उसमें छोटा है उनको निकाल के एक तरफ कर लीजिए, और जो बड़े पौधे हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, तो आप अपने खेत में जहाँ पर उर्वरा शक्ति ज्यादा है उधर छोटे वाले लगा लीजिए, और जिधर जरा सा के नीचा या जहाँ उर्वरा शक्ति हल्की कम है वहां वो बड़े लगा लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि छोटे पौधे एक तरफ लग जाएं, बड़े पौधे एक तरफ लग जाएं, तो आपको उनके प्रबंधन में भी आसानी होगी और कटाई में एक रूपता रहेगी।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-151-21-488 94151-21-488 94-151-21-488।
1: जय सिंह साहब, आज इतनी अच्छी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: अब ओम भैया, मौसम की जानकारी बता दीजिए। काहे कि हम पंचन की खेती जो है मौसम पर आधारित रहा थे।
6: तो जो मौसम की जानकारी प्राप्त भय है वह भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ तेरे अगले 7 दिनों तक का जो वर्षा का पूर्वानुमान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15, 16, 17, 18 तारीख

0: तक संभाग में कहूं कहूं वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की संभावना है और 19-20-21 तारीखियां मौसम शुष्क रहा की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की संभावना है। तो यू तो रहा मौसम का हाल।
1: ओम भैया, देखो पंच भाई बहनी सब कुछ प्रे कार्यक्रम में सुनत हैं, जानत हैं, लेकिन जैसे कुछ कहा चाहत हैं या बतावा चाहत हैं तो वही के खातिर हम जो है पता सबका पता हो चाहिए।
0: हाँ, तो अपने कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, जो पिन कोड है 226001।
1: और भैया ये तो चिट्ठी पत्री वाला पता है और एक नवा पता चलत है, वो है ईमेल एड्रेस।
0: तो ईमेल भेजे खातिर जो अपन पता है farmandhomeairlko@gmail.com।
1: तो चले खोई रही बिरिया और पंच भाई से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर किए हस्ताक्षर। कहा, जल संसाधनों के समुचित उपयोग और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा ये कदम। केंद्र सरकार ने कहा, 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। वित्त मंत्रालय ने बदलावों को किया अधिसूचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर प्रदेश में तैयारियां तेज। ये अभियान नागरिकों को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ेगा। और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में अपनी पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट का किया विमोचन। स्कूली बच्चों से साझा किए अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस परियोजना का लगभग 90% वित्तीय

0: भार भारत सरकार वहन करेगी और शेष 10% राशि 1994 के समझौते के अनुसार भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस समझौते को जल संसाधनों के समुचित उपयोग और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि परियोजना के साकार होने से उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से अन्नदाताओं को संबल, पेयजल की उपलब्धता को मजबूती और यमुना की अविरलता को नई शक्ति मिलेगी। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहने वाली टोंस नदी पर कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा, जहां 1562 मिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहण होगा। इससे 97,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 1476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जल विद्युत भी प्राप्त होगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आज 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट में साल के 11 महीने एथेनॉल बनाने का काम होगा।
2: 19 वर्ष पहले शुगर फैक्ट्री बंद हो गई, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो प्रस्ताव पास हुआ है, इथेनॉल प्लांट जो गन्ने से मक्का और धान, गन्ना समाप्त होने के बाद मक्का और धान से इथेनॉल बनाया जाएगा। ये प्लांट साल में 11 महीने चलेगा। जो भी इथेनॉल की मात्रा 3,96,00,000 लीटर एक साल में इथेनॉल बनेगा एक साल।
1: मंत्रिपरिषद ने अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत प्रदेश के पीआरडी जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि बैंक 2,000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद यूपीआई लेनदेन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में समीक्षा बैठक कर अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में हापुड़ के प्रभारी मंत्री KP मलिक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर एक माह तक चलने वाले इस अभियान की कार्य योजना पर चर्चा की। उधर शाहजहांपुर के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को अभियान के सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से कराने और अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और नागरिकों को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ना है।
4: सेवा संकल्प के अभियान को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन और संगठन के समन्वय के साथ कार्य योजना तैयार की है। 17 सितंबर को शाहजहांपुर जनपद में रक्तदान का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद 17 से लगातार 17 अक्टूबर तक बहुत सारे अभियानों के माध्यम से जन कल्याण की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को देने का काम भी पूर्ण होगा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचार

0: का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब अंतिम भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में निर्माण की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए निर्माण कंपनियों से बैंक गारंटी ली जा रही है, साथ ही निर्माण के अंतिम भुगतान का ऑडिट भी थर्ड पार्टी से कराने का फैसला लिया गया है। श्री मिश्र ने बताया कि अब रामकथा संग्रहालय का काम शुरू होगा, जिसके लिए 10 अक्टूबर से टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।
1: संग्रहालय का जो सबसे बड़ा कार्य अब शुरुआत होगी, आने वाले 10 अक्टूबर तक टेंडर जारी कि जो टेक्नोलॉजी होगी उसका हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, वह बनाना है और उसको अंतिम रूप दिया जाए। अनुमान है कि टेंडर फाइनलाइज जो कि अक्टूबर के अंत तक कदाचित हो पाएगा, उसके बाद लगभग 6 महीने लगेंगे गैलरी को कम्प्लीट करने में।
0: अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज लखनऊ में चल रहे गोमती पुस्तक महोत्सव में अपनी किताब द सेकेंड ऑर्बिट का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और युवाओं के साथ संवाद किया और अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा किए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में जानने की जिज्ञासा है और उन्हें सही दिशा दिखाना हमारी जिम्मेदारी है।
2: ज्यादातर सवाल प्रैक्टिकल थे कि हम क्या करें, हम कैसे आगे बढ़े और हम कैसे इन फील्ड्स में पार्टिसिपेट करें। तो आई थिंक कि जिज्ञासा है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं और आई थिंक अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये पूरा इकोसिस्टम इनेबल करें ताकि जो बच्चे आज स्कूल में हैं कल को वो निकल के भारत के लिए इन क्षेत्रों में कंट्रीब्यूशन कर सके।
0: भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। वर्ष 1982 में दिल्ली एशियाई खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में राज्य के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर किए हस्ताक्षर, कहा जल संसाधनों के समुचित उपयोग और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा ये कदम। केंद्र सरकार ने कहा ₹2000 तक के यूपीआई भुगतान पर नहीं लगेगा कोई शुल्क, वित्त मंत्रालय ने बदलावों को किया अधिसूचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर प्रदेश में तैयारियां तेज। ये अभियान नागरिकों को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ेगा। और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में अपनी पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट का किया विमोचन, स्कूली बच्चों से साझा किए अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर सौम्या कृष्णा की वार्ता। विषय है दूरदर्शनम जन माध्यमस्य विश्वसनीय स्वरः।
4: आकाशवाणी श्रोतेभ्यः सादरं नमस्कारः। भारतस्य समृद्धाया, सांस्कृतिक परंपराया, ज्ञान विज्ञानस्य च संवाहकेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतेभ्यः मम सादरं प्रणामः। अद्य वयं दूरदर्शन दिवसं उपलक्ष्य एकस्य अत्यंत प्रभावशालिनः जन संचार माध्यमस्य विषये चिन्तयामः। अस्माकं चिन्तयस्य विषयः अस्ति दूरदर्शनं जनमाध्यमस्य विश्वसनीयः स्वरः। आदरणीय श्रोतारः,

अभी आप सुन रहे थे मीराबाई का भजन, स्वर कीर्ति चौधरी का था। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं कीर्ति चौधरी। आइए अंत में सुनते हैं इनके स्वर में सीतेश आलोक का लिखा गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। कलाकार थी कीर्ति चौधरी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको पहला गीत जो सुना रहे हैं उसकी फिल्म का नाम है कभी हाँ कभी ना। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अमित कुमार की। गीत लिखे हैं मजरू ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उसकी फिल्म का नाम है किंग अंकल। आवाज है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की। गीत लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अब जो गाना हम आपको सुना रहे हैं उसकी फिल्म का नाम है दुश्मनी। आवाज़ है एसपी बाला सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है आनंद मिलन ने।

अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उसकी फिल्म का नाम है मझधार। आवाज़ है अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी प्रयागराज केंद्र से कार्यक्रम।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है सबरस कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में आइए हम आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में ये गीत।

सबरस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की गाई ये गजल। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं सबरस कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं बेगम अख्तर की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल।

0: अभी आप सबरस कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 202.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य, लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2000 रुपये से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
2: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका

0: एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
1: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
0: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं और उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
1: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक समझौता है।
3: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
4: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपये से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का यह शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 43 अरब 81 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर 26 अरब 86 करोड़ डॉलर पर आ गया। जून 2022

0: इसके बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉ सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
1: We need to develop sports infrastructure.
2: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
1: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
0: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और नीट प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने HIV/AIDS के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: पाक खाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. New Delhi says core concerns of India-China relations should be guided by mutual respect, interest and sensitivity. India says targeting of commercial ships and seafarers in Gulf region is unacceptable, expresses concern on escalating situation in Red Sea. Finance Ministry clarifies charges of 0.4% to be levied on person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupee will be paid by merchants. No charges on person-to-person transactions. Saudi Arabia activates warning in Mecca amid Houthi attack speculations. And in men's cricket, second T20 international between hosts Afghanistan and India underway in Delhi. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
2: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
1: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region.
2: We are deeply concerned with the escalation in the situation that we see in the Red Sea region. We have condemned the attack on the Saudi sovereign territory, including on civilian infrastructure and economic assets. Such attacks, they undermine regional stability and threaten freedom of navigation through the Bab el-Mandeb. These are unacceptable to us. We hope that there is early restoration.

0: Meteorological Department or IMD has forecast heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, sub-Himalayan West Bengal, Kerala and Mahi tomorrow. Heavy rainfall accompanied with thunderstorms, lightning and gusty winds is likely to prevail over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. Northeastern parts of India, including Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Sikkim, are also likely to witness heavy rainfall tomorrow. Prime Minister Narendra Modi has paid tribute to Bengali writer Sharat Chandra Chattopadhyay on his 150th birth anniversary. In a social media post, Mr. Modi said that his works, translated into every Indian language and several foreign languages, are remembered for their accurate depiction of 19th century India, especially Bengali society in rural areas. The Prime Minister also noted Chattopadhyay's commitment to social reform, women's rights and nationalism. He called upon youngsters to read his writings in the times to come. National Engineers Day is being observed today. Prime Minister Narendra Modi shared a video in which he highlighted the role of engineers in turning ideas and aspirations into tangible achievements and described them as karma yogis working towards the progress of the country. Ms. Visveswaraya is renowned for his pioneering contributions to engineering, who transformed the country's infrastructure through innovative designs and visionary planning. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. New Delhi says core concerns of India-China relations should be guided by mutual respect, interest and sensitivity. India says targeting of commercial ships and seafarers in Gulf region is unacceptable, expresses concern on escalating situation in Red Sea. Finance Ministry clarifies charges of 0.4% to be levied on person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupee will be paid by merchants. No charges on person-to-person transactions. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। भारत ने कहा है कि भारत चीन ताल्लुकात से मुताल्लिक अहम तश्वीश के सिलसिले में बाहमी एहतराम, दिलचस्पी और हसासियत रहनुमा उसूल होने चाहिए। भारत ने कहा है कि खलीजी खित्ते में तिजारती बहरी जहाजों और मल्लाहों को निशाना बनाया जाना नाकाबिले कबूल है। उसने बहरे अहमर में बढ़ती कशीदगी पर तश्वीश जाहिर की। वजारत खजाना ने वजाहत की है कि किसी शख्स से कारोबारी के लिए 2,000 रुपए से ज्यादा के UPI लेन देन पर 0.04% चार्ज लगेगा जो कारोबारी अदा करेंगे। किसी शख्स से किसी शख्स को किए जाने वाले लेन देन पर कोई चार्ज नहीं होगा। सऊदी अरब ने हौसी हमले की कयास आराइयों के दरमियान मक्का में वार्निंग जारी की है। और मर्दों के क्रिकेट में दिल्ली में मेजबान अफगानिस्तान और भारत के दरमियान दूसरा T20 बैन अलावामी मैच खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजारत खारजा ने कहा है कि हाल ही में नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजीर आजम ने भारत की तशवीश का हवाला दिया और इस बात को उजागर किया कि तरफेन को एक दूसरे की बुनियादी तशवीश के सिलसिले में हसासियत का मुजाहरा करना चाहिए।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत बहरे अहमर खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर गहरी तश्वीश रखता है। भारत ने सिविल बुनियादी ढांचे और इकतसादी असासों समेत सऊदी इकतदार आला पर हमलों की मजम्मत की है। जनाब जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं और आबनाए बाबुल मंदीप के जरिए आजादाना जहाजरानी के लिए खतरा हैं। عمان کے ساحل کے نزدیک تجارتی بحری جہاز ایم ٹی الگیا پر حملے کے سلسلے میں ایک سوال کے جواب میں جناب جسوال نے کہا کہ خطے میں کمرشل جہازرانی، ملاحوں، شہریوں اور سویلین بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جانا بھارت

0: मिसाइल से रडार, जंगी तैयारों से आबदोजों और इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम से मस्नूई ज़हानत तक हर शोबे में अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया है।
1: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: जनाब सिंह ने वाज़ेह किया कि विकसित भारत के हदफ का मकसद महज मुआशी तौर पर ताकतवर मुल्क बनाना नहीं, बल्कि मुल्क को टेक्नोलॉजी के एतबार से खुद कफील, समाजी तौर पर शमूलियाती, माहौलियाती तौर पर पायदार और स्ट्रेटजी के एतबार से महफूज बनाना भी है। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने कहा है कि ऐसे में जब दुनिया तनाज़ात और तजाद से गुजर रही है, नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग का कामयाब इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। जनाब राधाकृष्णन आज कौमी राजधानी दिल्ली में कौमी अहमियत के हामिल इदारे इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की सिल्वर जुबली तकरीबात से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत आलमी खत्े जनूब से ताल्लुक़ रखने वाले सभी मामलों समेत आलमी चैलेंजों से बेहतर खुद अतमादी और नजरियात के साथ निमट रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज से कहा है कि वो सुबुकदोष हो रहे प्रिसाइडिंग अफसरान और नीम अदालती इदारों के अराकीन की मुद्दत कार में एक महीने या नए तकर्रुरात तक तौसी पर गौर करे। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोट किया कि खाली ओहदों की वजह से ट्राइब्यूनल्स गैर फ़ाल न हो जाएं। इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मालिया बागची और जस्टिस V मोहाना पर मुश्तमिल बेंच ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमानी के तवसुत से मरकज से दरखास्त करते हुए कहा कि नए तकरारात का अमल शुरू हो चुका है और एडहॉक तौसी की दरखास्तों पर गौर न किया जाए। मरकज ने इस महीने की 8 तारीख को बेंच को बताया था कि मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स के 248 अराकीन ट्राइब्यूनल्स इस्लाही कानून 2026 के तहत खिदमात में तौसी के अहल पाए गए हैं और उनकी खिदमात में तौसी की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बंगाली मुसन्निफ सरद चंद्र चट्टोपाध्याय को उनको 150वें यौम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उनकी तख्लीकात का भारत की सभी जबानों और कई गैर मुल्की जबानों में तर्जुमा हुआ है। सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक मरकजी अथॉरिटी CCPA ने रोपन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह को इश्तहारात के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। ये कंपनी सवारी के लिए प्लेटफॉर्म रैपिडो पर खिदमात फराहम करती है। सारिफिन के उमूर से मुतालिक वजारत ने कहा है कि जिस तरह सवारी करने वालों को उनकी सवारी की तस्दीक से पहले ही ज्यादा पैसे अदा करने के लिए कहा गया, इस सिलसिले में कारोबार के गलत तौर तरीकों, नाजायज कॉन्ट्रैक्ट और धोखा देने के मामले में जुर्माना नाफिज किया गया है। इस कार्रवाई के बाद मुल्क में सरगर्म टैक्सी और बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म का एक शोभाजाती जायजा लिया गया। अपने जायजे के दौरान CCPA ने पता लगाया कि रैपिडो का तरीक़ाकार शर्मिंदगी का एहसास दिलाने वाला है, जो डार्क पैटर्न्स की रोकथाम और उसे मुंजबित करने से मुतालिक रहनुमा खतूत 2023 के तहत एक डार्क पैटर्न है, क्योंकि इसके तहत अगर सारिफ ज्यादा पैसा अदा करने से इत्तफाक नहीं करता तो उसे सवारी ना मिलने का डर होता है। सऊदी अरब में सिविल डिफेंस ने आज मक्का, जद्दा और ताइफ में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सऊदी अरब की बहरे अहमर की तेल की असल बंदरगाह यम्बोह समेत 6 शहरों में अलर्ट जारी किया गया और फिर हटा लिया गया। हौसियों के इम्कानी हमलों के पेश नज़र कम वक्त के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी किए गए। अहलकारों की जानिब से ये कहे जाने के बाद कि खतरा टल गया है, अलर्ट कुछ मिनटों के बाद ही हटा लिए गए। पीर के रोज़ खमीस मुशैत, अबहा और ताइफ में हौसी हमलों में 13 शहरी जख्मी हो गए थे और घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। इस दौरान आज एक हौसी अहलकार ने दावा किया कि सऊदी जंगी तैयारों ने यमन के ताइज सूबे पर हमला किया, जिसमें 3 अफराद की मौत हो गई। यमन में एक मरतबा फिर लड़ाई शुरू होने से शहरियों के साथ साथ बहर अहमर के रास्ते जहाजरानी को भी खतरा लाहक हो गया है, जो आब नए हुरमुज में रुकावटों के बाद एक अहम गुजरगाह है। डिफेंस अकाउंट्स के महकमे ने पेंशन के निज़ाम से मुतालिक सिस्टम रक्षा स्पर्श पर फजाइया और बहरिया के पेंशन मामलों को 100% हल कर लिया है। وزارت دفاع نے آج بتایا کہ خصوصی مہم کے حصے کے طور پر محکمے نے بھارتی فضائیہ اور بھارتی بحریہ سے تعلق رکھنے والے 145,182 معاملوں کو کامیابی سے نمٹایا. ان معاملوں میں 112,000 معاملوں کا تعلق بھارتی فضائیہ اور

0: तकरीबन 32,000 का ताल्लुक भारतीय बहरिया से था। वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2026 के लिए 70 हुनरमंद नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल भारत के अब तक के सबसे बड़े दस्ते को झंडी दिखाई गई। हुनरमंदी के फरोग और एंटरप्रेन्योरशिप की वजारत ने आज नई दिल्ली के कौशल भवन में अलविदाई तकरीब के दौरान इन खिलाड़ियों की मेज़बानी की। भारतीय दस्ता इस महीने की 22 से 27 तारीख तक चीन के शंघाई में मुनक़द होने वाले 48वें वर्ल्ड स्किल्स मुकाबलों के 63 हुनरमंदी जुमरों में मुल्क की नुमाइंदगी करेगा। वजारत ने बताया कि भारत पहली मर्तबा 11 नए हुनरमंदी जुमरों में मुकाबला आरआई करेगा। मर्दों के क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा T20 बैन अलावामी मैच खेला जा रहा है। अफगानिस्तान ने भारत की जीत के लिए 160 रन का निशाना रखा है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 159 रन बनाए। इससे कबल भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने कहा है कि भारत चीन ताल्लुकात से मुतालिक अहम तशवीश के सिलसिले में बाहमी एहतराम, दिलचस्पी और हसासियत रहनुमा उसूल होने चाहिए। भारत ने कहा है कि खलीजी खित्ते में तिजारती बहरी जहाज़ों और मल्लाहों को निशाना बनाया जाना नाकाबिल कबूल है। उसने बहर अहमर में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश जाहिर की। वजारत खजाना ने वजाहत की है कि किसी शख्स से कारोबारी के लिए 2000 रुपये से ज्यादा के UPI लेन देन पर 0.04% चार्ज लगेगा जो कारोबारी अदा करेंगे। किसी शख्स से किसी शख्स को किए जाने वाले लेन देन पर कोई चार्ज नहीं होगा। सऊदी अरब ने हौसी हमले के खतरे के दरमियान मक्का में वार्निंग जारी की है। और मर्दों के क्रिकेट में दिल्ली में मेज़बान अफगानिस्तान और भारत के दरमियान दूसरा T20 बैन अलावामी मैच खेला जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में सजेगी कहकशां की महफिल।

आप सभी को नमस्कार, आदाब। रात की खामोशी में जब दिल की धड़कने कुछ कहने लगे, जब कोई भूली बिसरी याद चुपके से पलकों पर उतर आए, और जब शब्द कम पड़ जाएं, तो एहसास गजल बन जाता है। गजल सिर्फ एक खूबसूरत अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि दिल में छुपी उन अनकही बातों का आईना है, जिन्हें हम कहना तो चाहते हैं मगर कह नहीं पाते। इसी एहसास, इसी नज़ाकत और इसी रूहानी मिठास के साथ हम लेकर आए हैं आपकी अपनी महफिल कहकशां, जहां हर शेर में कोई कहानी होगी, हर सुर में कोई एहसास होगा, और शायद किसी नगमे में आपको अपनी ही कोई याद मिल जाए। तो आइए कुछ पल दुनिया की भागदौड़ से दूर गजलों की इस खूबसूरत महफिल में साथ साथ सफर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी मेजबान दोस्त एकता शुक्ला, और आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम कहकशां।

उनके अल्फाज दिल के किसी खामोश कोने में उतरते हैं और फिर देर तक उनकी गूंज हमारे साथ रहती है। ऐसी ही तलत अजीज की आवाज में सजी है ये खूबसूरत गजल, जो कुछ ऐसा एहसास जगाती है जिसमें मोहब्बत है, इंतजार है और उन अनकहे जज्बातों की कमी है, साथ में नमी भी है जिन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। आवाज की नरमी, शायरी की गहराई दोनों ही मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां सुनने वाला कुछ पल के लिए अपनी यादों में खो जाता है।

कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होता, और कुछ सवाल ऐसे जिनके जवाब तलाशते तलाशते इंसान खुद अपने भीतर उतरने लगता है। कभी किसी की खामोशी हैरान करती है, कभी बदलती रिश्तों का अंदाज भी, और कभी अपनी ही जिंदगी के कुछ मोड़ हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उन्हीं अनकहे सवालों, उलझे हुए एहसासों और दिल में ठहरी हुई बेचैनियों को बेहद खूबसूरती से आवाज देती है अगली गजल। इसमें हैरानी भी है, तजुर्बे की कसक भी, और मोहब्बत की वह गहराई भी जो सुनने वाले कुछ पल के लिए अपनी यादों में खो जाते हैं। तो आइए कुछ देर इन यादों के कारवां के साथ चलते हैं और एहसासों के साथ ठहरते हैं, सुनते हैं ये खूबसूरत गजल।

मोहब्बत में भी कभी शिकायत होती है, कभी इंतज़ार, और कभी किसी की एक छोटी सी इनायत भी दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ जाती है जिसे भुला पाना मुमकिन नहीं होता। रिश्तों की यही नज़ाकत एक एहसासों की एक खूबसूरती गज़ल को कुछ ख़ास बना देती है। कभी किसी की बेरुखी में अपनापन महसूस होता है, तो कभी एक मेहरबानी के पीछे छिपे अनगिनत जज्बात दिल को छू जाते हैं। गज़ल की दुनिया इन्हीं महीन एहसासों को शब्द देती है, जहां हर शेर एक कहानी कहता है और हर लफ्ज़ दिल के किसी कोने में दस्तक सा देता है।

जिंदगी की राह में हर इंसान से कभी न कभी कोई भूल हो जाती है। कभी हालात हमें ऐसे फैसले लेने को मजबूर कर देता है जिनका बोझ बहुत देर तक दिल पर बना रहता है, और कभी अपने ही किए हुए काम हमें आईने की तरह ही हमारी कमजोरियां दिखा देते हैं, बिना किसी पर्दे के और बिना किसी बहाने के। लेकिन शायद जिंदगी का अर्थ केवल सही रास्ते पर चलना नहीं, बल्कि भटकने के बाद खुद को फिर से पहचानना है। ठोकरें हमें रोकती हैं, बदलने का अवसर देती हैं। कुछ गजलें भी हमें इसी आत्ममंथन को आवाज देती हैं। उनके दूसरे शब्दों पर दूसरों की उंगली उठाने के बजाय हमें अपने भीतर झांकने, खुद से सवाल करने और सच का सामना करने के लिए ऐसी गजलें हमें प्रेरित करती हैं। तो आइए कुछ पल दुनिया की आवाज़ों से दूर होकर अपने भीतर उतरते हैं और महसूस करते हैं उन एहसासों को जो हमारी यादों से जुड़े हैं।

0: अब हमें इजाजत दीजिए। उम्मीद है इन नगमों गजलों ने आपके दिल के किसी कोने में ठहरी हुई कोई याद जरूर जगा दी होगी। कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 800-49-26-250। नंबर पुनः सुन लीजिए 800-49-26-250। इस उम्मीद के साथ कि अगली मुलाकात तक ये खूबसूरत एहसास आपके साथ बना रहे, मैं एकता शुक्ला आपसे विदा लेती हूँ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिल में मोहब्बत को हमेशा जिंदा रखिए। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। अभी आप सुन रहे थे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण।
2: कार्यक्रम खेल दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपांकर मिश्र। श्रोताओं, खेल का मैदान केवल पदक जीतने की जगह नहीं है, यह सपनों को पहचान देने, अनुशासन सीखने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने का भी माध्यम है। भारत में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनमें से कितनी प्रतिभाएं सही प्रशिक्षण, संसाधन और अवसर प्राप्त कर अपने सपनों को मंजिल तक पहुंचा पाती हैं? विशेष रूप से छोटे शहरों और कस्बों में अनेक बच्चे ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा तो है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि इस प्रतिभा को सही दिशा कैसे दी जाए। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय है छोटे शहरों की प्रतिभाएं, सपनों से सफलता तक का सफर। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजय वर्मा, जो लंबे समय से खेल जगत को करीब से देखते और समझते रहे हैं। साथ ही हमारी दूसरी प्रतिभागी हैं सीमा विश्वकर्मा, जो कि रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिम्नास्टिक की कोच हैं और जो युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगी। संजय जी और सीमा जी, आप दोनों का खेल दर्पण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: संजय जी, चर्चा की शुरुआत हम आपसे करते हैं। जब हम भारतीय खेलों की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजर बड़े शहरों या बड़े प्रशिक्षण केंद्रों और चर्चित खिलाड़ियों पर जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर छोटे शहरों और कस्बों में खेल प्रतिभा की वास्तविक स्थिति आप किस तरह से देखते हैं?
4: आज जहां तक खेलों का सवाल है, पूरी दुनिया में खेल खेल नहीं रह गया है। ये किसी भी विकासशील देश की बात हो, चाहे विकसित देश की बात हो या अर्ध विकसित देश की बात हो, सभी में खेलों की स्थिति बदली है। विज्ञान, तकनीकी, आर्थिक संपन्नता, यूथ पावर, सभी कुछ इसमें समाहित हो गया है और यह ताकत का विषय हो गया है। चाहे ओलंपिक की बात लें, चाहे एशियन गेम की बात लें, इसमें भारत जैसे देश में जहाँ पे 70% भूभाग छोटे जगह पे है और कृषि प्रधान क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसमें है। लेकिन निश्चित रूप से हम बड़े शहरों की तुलना को अगर गौर करें तो छोटे शहरों में या छोटे कस्बों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके पीछे की पृष्ठभूमि में अगर जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गरीबी भी आता है, आर्थिक कमी भी आती है और खेलों को पढ़ाई के बाद लिया जाता है, यही कारण
2: जी
4: साफ दिखता है।
2: तो संजय जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि समस्या जो है वो प्रतिभा की कमी की नहीं है, बल्कि प्रतिभा को पहचानने और उसे सही अवसर देने की है?
4: निश्चित रूप से सर, भारत में कस्बों में, गाँव में टैलेंट बहुत ज्यादा है, चाहे किसी विधा को लें, खेल ही नहीं, कई ऐसे विषय हैं जिसमें भारत की प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो पूरी तरह से वहीं चूक जाती हैं क्योंकि वो जिले स्तर पे वो बहुत पहचान नहीं बना पाती हैं या उनको कोई खोजने वाला नहीं है। हम यहीं पे गड़बड़ हो जाते हैं और जब जिला स्तर से कोई चीज नहीं होती है तो आगे देश पे जाने में थोड़ी कठिनाई होने लगती है।
2: जी सीमा जी, अब आप पर आते हैं। आप जो हैं वो युवा खिलाड़ियों के साथ काम करती हैं, तो जब कोई बच्चा पहली बार जिम्नास्टिक सीखने आपके पास आता है तो आप उसमें किन गुणों को देखकर समझती हैं कि इसमें आगे बढ़ने की क्षमता या प्रतिभा है?
3: सबसे पहले तो हम बच्चे का बॉडी फिगर देखते हैं, वो कैसा है, मोटा ना हो, ज्यादा पतला भी ना हो, उसके पैर फ्लैट फुट ना हो, नॉकनी

0: ना हो, हाथ पैर सीधे होने चाहिए, टेढ़े नहीं होने चाहिए, ये सब देखते हुए उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अधिक से अधिक होनी चाहिए, तब हम लोग उसको जिम्नास्टिक के लिए रिकमेंड करते हैं।
1: जी, ये तो हो गई बात उनके शारीरिक क्षमता की। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या एक अच्छे जिम्नास्ट के लिए केवल शारीरिक क्षमता ही पर्याप्त होती है, या आप उसमें कुछ मानसिक तौर पर उसकी मानसिक दृढ़ता या अनुशासन जैसी चीजें भी देखती हैं?
0: मानसिक तौर से भी स्ट्रांग होनी चाहिए और फिजिकली भी स्ट्रांग होनी चाहिए,
1: दोनों का समन्वय होना। जी अच्छा, संजय जी, क्या आपको लगता है कि आज छोटे शहरों के खिलाड़ियों को मीडिया या अन्य खेल संस्थानों में पहले की तुलना में अधिक पहचान मिल रही है?
2: निश्चित रूप से सर, पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। खेलों में जो परिवर्तन हुआ है, आप देखेंगे पहले क्रिकेट या कई ऐसे खेल हैं जिसको एक विदेशी या खेलों या बहुत संपन्न लोगों का माना जाता था, आज गांव से क्रिकेट में निकलने लगे हैं प्लेयर। हॉकी में भी यही स्थिति है, कुश्ती बॉक्सिंग वगैरह में तो पहले से निकल जाते, एथलीट भी में आने लगे हैं। इसलिए गांव का कहीं ना कहीं विकास तो जरूर हुआ है, जब से खेलो इंडिया या इस तरह का स्कीम चला है कहीं ना कहीं असर है, और गांव से हर खेल में लगभग बच्चे आने लगे हैं।
1: जी अच्छा, किसी भी खिलाड़ी की यात्रा की शुरुआत जो है वो बहुत छोटी उम्र से होती है, लेकिन समस्या ये होती है कि अक्सर जो माँ बाप हैं, माता पिता, यह तय नहीं कर पाते हैं कि बच्चे की अगर रुचि है तो उसे केवल शौक रहने दिया जाए या उसे गंभीर प्रशिक्षण दिलाया जाए। तो सीमा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किसी भी माँ बाप को कब ये समझना चाहिए कि नहीं, बच्चे में खेल की प्रतिभा है और उसे विशेष प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता है।
0: बच्चा अगर एक्टिव है, बहुत खेल में रुचि रखता है, तो माँ बाप को चाहिए कि वो उस प्लेटफॉर्म तक ले जाए और जो वो बच्चा खेलना चाहता है उसमें उसका एडमिशन कराएं और ट्रेनिंग दिलवाएं। इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए। ले जाना और ले आने में बहुत मेहनत लगती है, एक छोटे बच्चों के साथ अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है।
1: और साथ ही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे जिम्नास्टिक है तो क्या उसमें कम उम्र में शुरुआत करना जरूरी है?
0: जी सर, बड़े होने पे बॉडी स्टिफ हो जाते हैं, 4 साल के बच्चों में लचीलापन होता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छे से, उसको अच्छे से हम लोग करा सकते हैं।
1: जी यानी कि अगर कम उम्र से करें तो वो बेहतर संभावनाएं उनमें होंगी। जी संजय जी, दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि कई माता पिता जो हैं वो पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए खेल को समय की बर्बादी मानते हैं। बड़ा पुराना सवाल है ये, है ना, लेकिन हम अभी भी ये नहीं कह सकते कि हम इससे उभर गए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या ये सोच बदल रही है?
2: नहीं, देखिए सोच काफी बदली है। देखिए भारत, मैंने पहले भी कहा, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी चीज समस्या रहती है रोजी रोटी की। तो जब भी अभिभावक आता है सबसे पहले सोचता है कि हमारा लड़का इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए या किसी पेशेवर उसमें जाए, तो इसलिए खेलों की स्थिति खराब हो जाती थी। लेकिन जब से लीग चलने लगे हैं, जैसे कि आप देखिए IPL चलने लगा, इंडियन हॉकी लीग चलने लगा, इंडियन फुटबॉल लीग चलने लगा, कुश्ती के कमीशन बढ़े, तो पैसे अच्छे मिलने लगे, खेल को जब से पेशा में जोड़ा जाने लगा है तब से थोड़े सी स्थिति अभिभावकों की भी बदली है। अब वो देखते हैं कि बच्चों में काफी कुछ अच्छा है खेल के लिए, तो खेल के लिए छोड़ रहे हैं। हालांकि इसमें पर्याप्त सुधार अभी भी जरूरत है, अभिभावकों को थोड़ा सा अभी भी सोचने की जरूरत है।
1: जी सीमा जी, आप जिन बच्चों को प्रशिक्षण देती हैं, स्वाभाविक है कि वो पढ़ाई भी करते होंगे, स्कूल भी जाते होंगे, तो एक प्रशिक्षक के रूप में आप उन्हें करीब से देख रही हैं, आपको क्या लगता है कि खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाया जा सकता है?
0: जी सर, बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ाई के साथ साथ खेल का विकास किया जाए तो खेल भी आगे बढ़ेगा और पढ़ाई भी, और उसका मानसिक रूप से भी विकास होगा।
1: जी संजय जी, अब हम आते हैं कि भाई जो छोटे शहर हैं, छोटी जगह हैं, वहाँ की चुनौतियाँ क्या हैं? तो आपके अनुभव में, आपका एक लंबा अनुभव है, बहुत लंबे समय से आप गोरखपुर और आसपास के खेल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को भी देखते रहे हैं, समझते रहे हैं, लिखते रहे हैं, तो आपके अनुभव में जो छोटे शहरों के खिलाड़ी हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल सुविधाओं की कमी, या आर्थिक समस्या होती है, या उचित कोचिंग का अभाव होता है, या प्रतियोगिताओं में उन्हें अवसर नहीं मिलते हैं, क्या बड़ी समस्या है उनकी?
2: देखिए बहुत अच्छा सवाल है। खेलों के लिए सबसे अच्छा छोटा कस्बा है अभी भी भारत में, लेकिन होता क्या है कि जब बच्चे आते हैं या शुरुआत करते हैं उसी समय थोड़ा सा संसाधनों की कमी होती है, घर वालों का प्रेशर रहता है, रोजी रोटी की चिंता रहती है, इसमें वो गड़बड़ हो जाते हैं। हालांकि सही बात यह है कि छोटे शहरों में भी काफ़ी प्रयास चल रहा है, सुविधाएं कम है थोड़ी, और बड़े शहरों में सुविधाएं बहुत ज्यादा है। पहली बात तो देखिए खेलों का विकास अगर आप

0: करें तो दो चीजों से सबसे ज्यादा होता है, एक तो स्कूल में अगर स्पोर्ट्स नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या बढ़ सकते हैं तो नाम मात्र का। दूसरा, जिला यूनिट अगर हर खेलों में हॉकी, जिला हॉकी लीग हो या जिला फुटबॉल लीग हो या जिला जिमनास्टिक संघ हो, जिले स्तर पर अगर प्रयास किया जाए, सुविधाएं दिया जाए, तो अच्छे प्लेयर वहीं पर सर्च हो जाएंगे और वो हमारे प्रदेश, वो हमारे देश दोनों के लिए बहुमूल्य साबित होंगे। इसमें थोड़ी बदलाव की जरूरत है, हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास में काफी उन्नति है, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की जरूरत है।
1: जी सीमा जी, स्कूल की बात चली है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्कूल की क्या भूमिका है खिलाड़ी को शुरू में ही पहचान कर उसे उचित स्थान दिलाने के, उचित प्रशिक्षण दिलाने में स्कूल की क्या भूमिका है?
2: स्कूल में सर क्लास 1 से ही खेल को शुरू कर देना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ खेल अनिवार्य विषय होना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में और बच्चे खेलें।
1: और एक कोच के रूप में आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या अगर अच्छी खेल सुविधा सिर्फ उपलब्ध करा दी जाए खिलाड़ियों को, तो क्या वो पर्याप्त है या उसके साथ अच्छी कोचिंग, आधुनिक जो उपकरण हैं वो, अच्छी डाइट, ये सब भी जरूरी हैं?
2: जी सर, अच्छी डाइट और उपकरण के साथ साथ सर उनको मानसिक रूप से विकास के लिए भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है उनके साथ, और एपरेटस अच्छे होने चाहिए। डाइटिंग के लिए तो जिमनास्टिक में डाइटिंग का कोई रोल ही नहीं है, बच्चा वैसे ही स्लिम रहता है, भरपूर ज्यादा से ज्यादा वो डाइट ले नहीं सकता है, स्लिम रहेगा तभी जिमनास्टिक वो कर पाएगा।
1: जी, और जिम्नास्टिक के जो खिलाड़ी आपके पास प्रशिक्षण पाते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देती हैं कि अपनी जीवन शैली में, अपनी जीवनचर्या में किन चीजों को अपनाएं और किन चीजों से दूर रहें?
2: अनुशासन।
1: जी,
2: अनुशासन ही खेल को उड़ान देता है, अनुशासन ही नहीं है तो खेल नहीं सकता, ना तरक्की कर सकता है, दम हो जाएगा।
1: ये बताइए कि आप खुद जिम्नास्टिक की एक बहुत अच्छी खिलाड़ी रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आपने प्रतिनिधित्व किया है, और गोरखपुर से आप हैं, आपने भी इसी शहर में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अब आप यहां के बच्चों को प्रशिक्षण दे रही है, तो इस पूरे समय को देखें तो आपको क्या लगता है कि जैसे कोई अगर खिलाड़ी गोरखपुर या गोरखपुर जैसे छोटे शहर में प्रशिक्षण ले रहा है, तो जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनसे मुकाबला करने के लिए क्या उसे अतिरिक्त मेहनत करनी होती है, क्या करना होता है?
2: सर, सुविधाओं की बहुत अभाव है, जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो तो अपना अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर जो गांव के बच्चे हैं या छोटे शहर के बच्चे हैं, वहाँ उपकरण के अभाव होने के कारण जिम्नास्टिक के एपरेटस ही इतने महंगे होते हैं कि उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, टैलेंट की कमी नहीं है जिम्नास्टिक में।
1: जी, जो एस्पायरिंग जो बच्चे हैं या जो गार्जियंस हैं, माता पिता हैं, उनके लिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, उनके लिए एक जानकारी की चीज है, आप मुझे बताएं कि अगर कोई बच्चा आपके पास प्रशिक्षण प्राप्त करने आता है तो क्या जो सुविधाएं उसको चाहिए वो आपके स्टेडियम में या जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ जो उपलब्ध है, क्या वो पर्याप्त है या उसे अपने घर पर भी कुछ और व्यवस्थाएं करनी होती है?
2: घर पे तो जिम्नास्टिक की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जो स्टेडियम में है उसी व्यवस्था में ही करना होगा।
1: जी, तो यानी कि यह पर्याप्त है, जो आपके पास अगर प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं तो आपके जो उपकरण हैं वहाँ जो सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाकर वो कर सकते हैं?
2: कर सकते हैं, पर हमारे वहाँ भी अभी उपकरण उतने अच्छे तो नहीं हैं।
1: जी,
2: सब पुराने ही हैं।
1: मतलब ये सवाल पूछने का मेरा आशय जो था वो ये था कि जैसे बहुत सारे खेल हैं, जैसे बैडमिंटन है, जैसे टेबल टेनिस है, तो वहाँ आपको घर पर भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, जैसे क्रिकेट ही है, महंगे खेल उपकरण होते हैं और आप सिर्फ प्रशिक्षण केंद्र पर डिपेंड नहीं रह सकते, आपके पास अपने व्यक्तिगत उपकरण होने चाहिए। तो मेरा आशा यही था कि क्या जिम्नास्टिक में अगर आपके पास व्यक्तिगत रूप से चीजें नहीं है तो भी क्या वो खेला जा सकता है?
2: नहीं सर, जिम्नास्टिक के उपकरण ही इतने महंगे आते हैं कि वो आपको उपलब्ध ही नहीं करा सकते।
1: जी जी जी,
2: गद्दे पे अगर आपने एक गद्दा भी खरीद लिया तो एक गद्दे पे आप जिम्नास्टिक नहीं करा सकते।
1: तो यह एक उत्साहजनक बात है कि मतलब आप प्रशिक्षण केंद्र के सहारे भी आप जिम्नास्टिक का खेल सीख सकते हैं, उसके लिए स्वयं से आपको कोई बहुत
2: तो सबसे बड़ा रोल कोच का होता है।
1: कोच का है जी,
2: कोच नहीं तो जिम्नास्टिक बच्चा कर ही नहीं सकता।
1: जी, यही मुझे जानना था कि बाकी खेलों की अपेक्षा मुझे लगता है कि यह एक उत्साहजनक बात है।
2: वो टच बॉडी गेम होता है।
1: जी,
2: मतलब हाथ से हाथ देना, सब कुछ करना, टच करके ही सब कुछ किया जा सकता है।
1: जी जी जी, तो सबसे बड़ी भूमिका प्रशिक्षक की है, और अगर अच्छा प्रशिक्षक है तो आपके पास व्यक्तिगत रूप से चीजों की आवश्यकता नहीं है, आप उसके संपर्क में रहें, उसे प्रशिक्षण लें और आप अच्छा कर सकते हैं, है ना, जो कि जिम्नास्टिक को एक आकर्षक खेल बनाता है। संजय जी, अब आप पर आते हैं कि आपको क्या लगता है कि खेल सुविधाओं का विकास पहले तो महानगरों तक ही सीमित था, क्या अब ये छोटे शहरों तक आ रहा है, क्या जो सुविधाएं हैं खेलों की छोटे शहरों में उपलब्ध हो रही हैं?
0: एक्चुअली विकास तो जरूर है, पहले की तुलना में हम लोग उत्साहवर्धन स्थिति में आए और प्रैक्टिस चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप देखिएगा जीवन में किसी भी विभाग में

0: अगर आप पढ़ाई को भी ले लें तो बहुत अच्छा बच्चा इंटेलिजेंट है तो जरूरी नहीं कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो ही जाएगा। जब तक आप कोचिंग नहीं करते हैं तो या एकेडमी नहीं है तो अब वो जवाना गया। अगर अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होना है तो आपको स्पोर्ट्स एकेडमी या स्पोर्ट्स क्लब या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को भी बहुत आगे आना होगा, तभी हम आ सकते हैं। सही बात यह है भारत में जो सच्चाई है कि स्पोर्ट्स एकेडमी की फीस बहुत ज़्यादा है, जो दिल्ली बम्बई मद्रास बड़े शहरों में है उसमें कोई छोटा मोटा आदमी एफोर्ड नहीं कर सकता है। 40,000 रुपया 50,000 रुपया से ज़्यादा ही है। इसमें गांव का आदमी कैसे इसको कर सकता है, ये बड़ा दुर्लभ चीज़ है भारत के व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचें तो। हाँ, ये हो सकता है कि जिले स्तर पर भी थोड़ी सी एकेडमी या सुविधाओं को दी जाए उपलब्ध, कुछ सरकारी लोग उपलब्ध कराएं, कुछ प्राइवेट लोग उपलब्ध कराएं, हम आप भी सुधरें तो खेल सुधरेगा।
1: किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे केवल उसका अपना परिश्रम नहीं होता बल्कि मेरा मानना है कि परिवार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सीमा जी, विशेष रूप से जो जिम्नास्टिक जैसा खेल है जहां प्रशिक्षण लंबा होता है और बहुत मेहनत वाला होता है, तो वहां माता पिता को बच्चों को किस तरह का सहयोग प्रदान करना चाहिए?
2: सहयोग ये है, हम उनसे यही अपील करेंगे कि उनको टाइम से ले जाएं, क्योंकि अगर एक दिन भी गैप होता है अगर बच्चे का जिम्नास्टिक में तो एक हफ्ते का समझ लीजिए प्रैक्टिस खराब। इसलिए गैपिंग नहीं होना चाहिए।
1: संजय जी, खेल पत्रकार के रूप में आपने सफल खिलाड़ियों की यात्रा को भी बहुत करीब से देखा होगा, तो क्या आपको लगता है कि जिन खिलाड़ियों के पीछे परिवार का मजबूत समर्थन होता है उनके लिए लंबी खेल यात्रा जारी रखना आसान हो जाता है?
0: देखिए, ये यात्रा तो थोड़ा कठिन है। आप ऐसे गौर करें अपने पूरे जीवन को, तो हम 6-7 साल में इंजीनियर बन सकते हैं, 6-7 साल में कोचिंग पढ़ के एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं या कोई भी विधा में सर्विस के आ सकते हैं। कोई बहुत टफ नहीं है, 5-6 साल के प्रैक्टिस के बाद ऐसा होता है, लेकिन खेल एक बहुत बड़ा विधा है। इसके लिए आपको कम से कम 10-12 साल की प्रैक्टिस चाहिए जम के, जो दोनों में बहुत अंतर है। तो 10-12 साल गार्जियन पेशेंस रखे, बच्चे पेशेंस रखें और ईमानदारी से प्रैक्टिस करें तो रिजल्ट सामने है। स्थितियां देखिए बहुत बदली हैं। अभी कल का ही उदाहरण लें आप तो भारत जो है क्रिकेट में श्रीलंका को हरा के वर्ल्ड 8वीं बार चैंपियन रहा, वहीं एशियाई खेल में पुरुष हॉकी को अगर देखें दक्षिण कोरिया को हरा कर चैंपियन बना, लड़कियों ने तो कमाल कर दिया है, ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन की और विश्व कप में भी 4थे नंबर पे ना आके सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची लेकिन 5वें स्थान तक पहुंची, जो एक बहुत बड़ा स्थिति है। और लड़कियां प्रैक्टिस भी कर रही हैं अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग बदल रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी जरूरत है सुविधाओं की।
1: अच्छा, अब आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगा कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चे के शुरुआती प्रदर्शन देखते हैं और देखकर जब वो बच्चा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है तो उसे बहुत जल्दी वो परिणाम चाहने लगते हैं, ठीक है ना? तो क्या यह खिलाड़ी पर अतिरिक्त मानसिक दबाव नहीं पैदा करता है यह प्रवृत्ति अगर माता पिता की है तो?
0: निश्चित रूप से सर, ये देखा जाए तो खेल में माँ बाप का रोल बहुत बड़ा है। माँ बाप हुआ, गार्जियन हुआ, एनवायरमेंट हुआ, इस सभी का कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा है तभी आप खेल सकते हैं। क्योंकि आज के एज में होता क्या है, सब लोग पढ़ाई के लिए भाग रहे हैं, फीस बढ़ रहे हैं और एजुकेशन के प्रति उसमें एक लगा बहुत कुछ हो जाएगा, वो अभी थोड़ी कमी है हम लोग की सोच में। बच्चा खेल भी कह रहा है तो व्हाट्सएप पे खेल रहा है, ये जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है ये है, स्पोर्ट्स से दूर है, ग्राउंड से दूर हो जाता है। और भारत में इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, ज़्यादातर लोग मोबाइल पे गेम खेलते हैं। अगर ग्राउंड पे जाके वही बच्चा एक बार अगर वो 400 मीटर का दौड़ हल्का हल्का कर ले तो शायद जीवन में बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो गार्जियन का भी माइंडसेट थोड़ा बदलना पड़ेगा। पढ़ाई के अलावा बहुत चीज़ें हैं, हालांकि खेल में भी बहुत चीज़ें हैं। अब खेल के भी जो सब्जेक्ट हैं बढ़े हैं, कमेंटेटर आप हो सकते हैं, स्पोर्ट्स क्रिटिक हो सकते हैं, प्लेयर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के स्टैटिकल अफसर हो सकते हैं, इसमें भी बहुत डाटा बढ़ा है। तो खेलों के प्रति लोगों को आम उजान जो आम लोगों का आना चाहिए।
2: पेरेंट्स सोचते हैं कि तुरंत हमको रिजल्ट,
1: जी यही मैं जानना चाह रहा था,
2: तुरंत रिजल्ट नहीं मिल सकता क्योंकि बच्चा जब मेहनत करेगा धीरे धीरे धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, तुरंत रिजल्ट नहीं दिया जा सकता स्पोर्ट्स में। आप पढ़ाई करते हैं तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा, पर खेल ऐसा चीज है कि तुरंत आपको रिजल्ट नहीं, उस पे मेहनत करना पड़ेगा।
1: तो गार्जियन को यह समझना चाहिए कि इसे समय देना होगा, है ना? ये अच्छा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत परिणाम आने लगेंगे।
2: नहीं डालना चाहिए मानसिक रूप से कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, बेकार कर रहे हो, कुछ और करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं, इस सब चीजों के लिए पेरेंट्स को बिल्कुल भी
1: सीमा जी, अब ये बताइए कि भाई आप प्रशिक्षण दे रही हैं तो आपको जब प्रतिभाशाली बच्चा मिलता है, उनकी पहचान हो गई, प्रशिक्षण शुरू हो गया, आपके स्तर पर प्रशिक्षण उनका हो भी गया, तो अब जब खिलाड़ी को आगे जाना है राष्ट्रीय

0: प्रतियोगिताओं में भाग लेना है, तो उसका रास्ता क्या है, कैसे वो आगे जाते हैं?
1: देखिए, पहले तो जिला स्तरीय प्रतियोगिता होती है, मंडल स्तरीय प्रतियोगिता होती है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती है।
0: जी,
1: उसमें बच्चा सीढ़ी बाई सीढ़ी सिलेक्ट होता है। जब मंडल स्तर पे बच्चा सिलेक्ट होता है तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जाता है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो बच्चा सिलेक्ट होता है फिर राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में जाता है। राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में जब सिलेक्ट होता है इंटरनेशनल के लिए बच्चा जाता है। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं एक कैंप लगता है, सारे बच्चे वहाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर एक कोच नियुक्त होता है जो उन बच्चों को ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देने के बाद उनका इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जाता है।
0: तो अगर कोई बच्चा जिला स्तर पर हुई प्रतियोगिता और उसमें उसने अच्छा किया तो आगे बढ़ने के अवसर कितने बच्चों को मिलते हैं? फिर राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में जिले स्तर से कितने खिलाड़ी जा सकते हैं?
1: हमारे में तो सर 6 जाते हैं।
0: जो शीर्ष पर 6 लोग रहे हैं उन्हें आगे भेजा जाता है, और शायद ऐसा ही कुछ राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भी होता होगा।
1: सभी राज्य स्तर हमारी जिम्नास्टिक में ही शॉर्ट है और गेमों में।
0: और जो प्रतियोगिताएं होती हैं चाहे जिला स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, तो इसमें कैटेगरी किस तरह की होती है? मतलब महिला और पुरुष के अलावा उम्र को ध्यान में रखकर किस तरह की कैटेगरी और बनाई जाती है?
1: कैटेगरी अंडर 12 होता है
0: जी,
1: मतलब 14 साल के बच्चे से नीचे, उसके 17 साल के बच्चे के नीचे का होता है, 19 होता है सर।
0: अच्छा,
1: 19 साल के बच्चों को नीचे का, 3 श्रेणियों में जिम्नास्टिक कराया जाता है।
0: एक जो महत्वपूर्ण सवाल है विशेष रूप से जिम्नास्टिक के खेल में, वो है चोटों से बचाव, है ना? जिम्नास्टिक जैसे खेल में प्रशिक्षण के दौरान चोट लगने की आशंका रहती है, तो आप अपने खिलाड़ियों को किस तरह से इसके लिए तैयार करती हैं कि चोटों से बचे और चोटों से उभरें?
1: उनको सबसे पहले सर बेसिक चीजों करा के उनको मजबूत किया जाता है, जिससे उनको चोट कम से कम आए। और पिट की व्यवस्था होती है, जो नए एलिमेंट सीखते हैं बच्चे, पिट अगर नहीं है तो डेंजरस हो सकता है सर।
0: पिट बताएं मुझे, पिट क्या है
1: सर? फॉर्म भरे, एक गड्ढे होते हैं।
0: अच्छा,
1: उसमें फॉर्म भरे रहते हैं सर।
0: ओके।
1: और बच्चा अगर हाई बार वगैरह कर रहा है तो गिरता है तो उस फॉर्म में चला जाता है, तो उसको चोट नहीं लगती है। सर वो बेसिक चीज है सर, ये सारी चीजें, तब जाके वो दूसरे जगह मैट पे परफॉर्म कर सकता है।
0: संजय जी, आप मीडिया कर्मी भी हैं, लेख वगैरह आप लिखते रहे हैं, तो ये बताइए कि किसी खिलाड़ी की जब सफलता प्राप्त करता है राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो हम देखते हैं कि मीडिया अक्सर उसकी उपलब्धियों तक ही सीमित रहता है, उस पर खूब चर्चे होते हैं, लेकिन जो उसकी पूरी यात्रा रही है या उसकी जो चुनौतियां रही हैं उनको सामने नहीं लगता है, आपका क्या कहना है?
2: एकदम सही बात है सर। जब आदमी एक जनरल प्लेयर, सामान्य खिलाड़ी जिला से गुजरता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराता है तो वो पूरी तरह से लाइमलाइट में आ जाता है, मीडिया उसको लाइमलाइट में नहीं लगती है। लेकिन वही खिलाड़ी जिला में कैसे परेशान हुआ या बाधा उसको कितनी आई या पारिवारिक रूप से अड़चन कैसे हुआ या फूडिंग में उसको कैसे प्रॉब्लम आई, जल्दी लिखा नहीं जाता है। तो मैं तो हमेशा इसका मुरीद रहा हूँ कि प्लेयरों को रोल मॉडल के रूप में यूज करना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी बनना बहुत कठिन है। और अगर आप रोल मॉडल बनाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिशियन को बनाया जाता है, उसी तरह से उनको भी आप रोल मॉडल बनाएं तो ये खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होगा। कुछ नहीं कर सकते तो टूर्नामेंट को देखें, कोई टूर्नामेंट के लिए अगर स्पॉन्सर्ड में आता है तो हम जो मदद हो सकता है करें, किसी खिलाड़ी को ही मदद करें। इतना अगर मोरल सपोर्ट है तो देश शायद नई वर्ल्ड तो एशिया के हम चुनिंदा 2-3 कंट्री में शामिल हो जाएंगे।
0: अच्छा, एक सवाल जो आज आधुनिक समय में उठ खड़ा हुआ है कि पहले के समय में हम देखते थे कि भाई बच्चों को क्या करना होता था, पढ़ाई करनी होती थी और बाकी के समय जो बचा उसमें खेलकूद करना होता था, लेकिन आजकल अनिवार्यतः बच्चों को जो है जो डिजिटल दुनिया है, जो सोशल मीडिया है या मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसमें उनको सहभागिता वो करते भी हैं और कुछ कारणों से उन्हें करनी पड़ती भी है और उसमें उनका काफी समय जाता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है खेल को जीवन का हिस्सा क्यों बनाया जाए, खेलों में प्रतिभा क्यों किया जाए, क्योंकि समय तो कम हो गया है?
2: देखिए, खेल जो है एक्चुअली मेंटल स्टेटस के लिए भी जरूरी है। और खेलकूद को अगर ये माना जाए कि सिर्फ खेल है तो हम यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि अच्छा खेल खेल रहे हैं तो जरूरी है कि किसी टीम को परफॉर्म कर रहे हैं, हम शरीर से स्वस्थ रहेंगे। और कहा गया हेल्थ इज वेल्थ, अगर स्वस्थ है शरीर तो स्वस्थ मन उसी में निवास भी करता है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय ऋषि विवेकानंद को देखें अगर, तो उन्होंने भी कहा था एक बार कि हमें अगर गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलने दिया जाए तो हम ज्यादा हर्षित होंगे। एक लाइन में ही सब कुछ निहित है, जबकि होता क्या है हम लोग खेल को खेल के नजरिए से देखते हैं और एक खिलाड़ी कितना तेज होता है ब्रेन का इसको हम लोग नहीं

0: देखते हैं, फिर पूरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन आते हैं, उसको भी झेलने की क्षमता रखता है कोई उतार चढ़ाव हो। इसलिए मेंटल स्टेटस को तो स्पोर्ट्स से जोड़ना ही चाहिए। और सही पूछिए, आज के एज में कई देशों में ऐसा है साइकिलिंग बहुत मस्त है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। भारत में साइकिलिंग कम, अभी चीन को ही आप देखें तो चीन में कहा गया है 5 आदमी है तो 5 साइकिल बाहर खड़े रहते हैं और उनके यहाँ कोई नहीं है। उनके अगर आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना है तो आपको पास इशू कराना पड़ेगा पेट्रोल के लिए। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई साइकिल लेके जाता है तो लोग हंसने लगते हैं, क्या इसको आर्थिक रूप से जोड़ने लगते हैं। क्योंकि सही है कि मेंटल स्टेटस के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का होना बहुत जरूरी है।
1: यानी कि यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि आज के समय में जब हमें अधिकांश समय जो है कार्यालय में बैठकर या मोबाइल पर टीवी पर बैठकर काम करना होता है तो खेलों का महत्व एक तरह पहले से भी बढ़ गया है, है ना? खेलना जो है आज के समय में और ज्यादा जरूरी है।
0: जी, बहुत जरूरी है। आज के जो स्थिति है वो तनाव का ये है। हर अच्छा ये इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड हर तरह का स्ट्रेस है। उसमें अगर मानसिक रूप को आप सुदृढ़ होना चाहिए पहले तो आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा। अगर ग्राउंड पे भी आप नहीं आ सकते हैं तो कम से कम योगा कीजिए, घर में एक्सरसाइज 15 मिनट का कीजिए, आप देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है ऐसा, इंडिया में भी 2-3 स्टेट है। जैसे महाराष्ट्र आप ले लें, योगा वहाँ सब लगभग 75% लोग करते हैं, लेकिन बाकी स्टेट में ऐसा नहीं है। तो आपको शारीरिक चुस्ती के लिए कुछ नहीं तो करना ही करना पड़ेगा और डाइटिंग पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा।
1: सीमा जी, अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है और वो खेल में करियर बनाना चाहता है, आगे जाना चाहता है, तो आप क्या सलाह देंगे, उसे किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए?
2: अपनी प्रैक्टिस पर उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, समय देना चाहिए और अपना शेड्यूल बना के प्रैक्टिस करना चाहिए।
0: शेड्यूल
2: नहीं तो बच्चा आगे नहीं जा सकता।
1: और ऐसे जो बच्चे हैं जो प्रतिभाशाली हैं और जो आगे इस खेल में किसी भी खेल में जाना चाहते हैं, तो उनके माता पिता के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
2: उनके माता पिता की यही सलाह है कि बच्चों को मोटिवेट करें, खेलें, घर से बाहर निकलें, मोबाइल थोड़ा सा कम देखें और स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान दें।
1: अब कार्यक्रम के अंतिम खंड में हैं हम, और जो है सीमा जी, थोड़ी सी जानकारी मैं आपकी जीवन यात्रा पर भी जानना चाहूंगा, क्योंकि एक छोटे शहर से निकलकर आप भी राष्ट्रीय स्तर तक गई हैं और आपने अच्छा प्रदर्शन किया है और आज एक जानी मानी कोच हैं आप, तो आपकी यात्रा कैसी रही? राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने में आपको किन संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
2: मैं यही गोरखपुर की रहने वाली हूँ और मेरा एडमिशन गोरखपुर वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में क्लास 6 से हुआ, जिससे मेरा वहीं से करियर बनना स्टार्ट हुआ। मेरे कोच डोईलाल सर थे और उसके बाद सविता मैडम, ये दो कोच हमारे हमको आगे बढ़ाने में बहुत मदद किए हैं सर। स्पोर्ट्स कॉलेज के हाई स्कूल पास करने के बाद मैं लखनऊ छात्रावास में एडमिशन लिया, उसके बाद वहाँ से बीए कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मैं पटियाले गए, पटियाला में जिमनास्टिक का डिप्लोमा की, फिर वहाँ से आने के बाद सर मैं 1 साल तक वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में कोच रही। और उसके बाद मैं फिर मैं बीपेट करने गई और फिर मैं बीपेट करके आने के बाद मैं रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोच नियुक्त हो गई।
1: इस यात्रा में आपके सामने सबसे बड़ी जो है चुनौतियां क्या रही, किन संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा?
2: पहले तो स्पोर्ट्स कॉलेज में भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, वहाँ भी मैट के अभाव था, प्रेटस का अभाव था, अच्छे मैट भी नहीं थे, अच्छे प्रेटस भी नहीं थे, लेकिन हमारे कोच बहुत अच्छे थे, मैम और सर बहुत अच्छे थे जो हम लोग को मोटिवेट करते थे उसी अप्रेटस पे, वो भी हम लोग के साथ उतने ही वक्त देते थे और लगे रहते थे हमको आगे बढ़ाने के लिए। कभी हम लोग का हाथ फट जाता था, कभी चोट लग जाता था मैट ना होने के कारण, तो हम लोग को भी बहुत उसका सामना करना पड़ा सर। पर स्टार्टिंग वो स्पोर्ट्स कॉलेज उसमें स्टार्टिंग पे था।
1: अच्छा, एक महिला खिलाड़ी के रूप में संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगा कि महिला खिलाड़ी के रूप में आपको अपने जीवन में अपनी खेल यात्रा में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा जो पुरुष या पुरुष जो खिलाड़ी हैं उन्हें नहीं सामना करना पड़ता है, क्या अलग रहा?
2: अगर पुरुष महिला खिलाड़ी के साथ जाते हैं तो थोड़ी बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो नहीं कह पाते हैं और डांट भी पड़ती है कि तुमने नहीं किया, क्यों नहीं किया। अब हम लोग उससे बोल नहीं पाते अपनी बातें, मतलब जेंट्स को उससे कहने ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है।
1: तो ऐसा हो सकता है कि जो महिला खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रही हो तो उनका जो सपोर्ट स्टाफ है, कोच है, उसमें एक महिला भी रहे।
2: हाँ, महिला भी जाए तो बच्चा जो है अपनी परेशानी उसे कह सकता है, वो जाके कोच से बता सकता है
1: जी
2: ऐसी प्रॉब्लम है।
1: अच्छा चलिए, अब चलते चलते आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर इस समय कोई युवा खिलाड़ी या उसके माता पिता हमें सुन रहे हैं रेडियो सेट पर और उनके मन में सवाल है कि क्या छोटे शहर से निकलकर राष्ट्रीय

0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बना जा सकता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीता जा सकता है? आप क्या कहना चाहेंगे संजय जी, सबसे पहले आप बताएं।
1: निश्चित रूप से देश आगे गया और अब छोटे शहर से ज्यादा प्लेयर आ रहे हैं बड़े शहरों की तुलना में। थोड़ा सा संसाधन अगर बढ़ा दिया जाए या स्पोर्ट्स अकेडमी बढ़ा दिया जाए या कोचिंग कैंप बढ़ा दिया जाए, रिजल्ट और भी अच्छा होगा। और गार्जियन को इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि खेल एक ऐसा विषय है जो तुरंत इसका परिणाम नहीं आता है, इसलिए उनको थोड़ा सा अपने पर प्रतिलोम बिठाना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव को समन्वय देना पड़ेगा, बच्चे को सपोर्ट करना पड़ेगा। बच्चे को डांटना नहीं है तो हम खेल में अपनी गतिविधि और भी सक्रिय होकर तेज हो जाएंगे और शायद भारत एशिया में एक शक्तिशाली देश हो जाए।
0: जी सीमा जी, आप क्या कहेंगी?
2: सर, हम ये कहेंगे कि अगर स्पोर्ट्स को बढ़ाना है तो जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर, फिर कोचेस को बढ़ाया जाए, अच्छी कोचेस की नियुक्ति की जाए जिससे खेल का स्तर बढ़ सके।
0: तो श्रोताओं, बात बिल्कुल स्पष्ट है, प्रतिभा चाहे किसी महानगर में जन्म ले या किसी छोटे शहर और कस्बे में, उसे आगे बढ़ने के लिए चाहिए सही दिशा, निरंतर अभ्यास, अनुशासन, परिवार का विश्वास और अवसर। आज की चर्चा ने यह भी बताया कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और बेहतर जीवन की आधारशिला भी है। मैं अपने दोनों अतिथियों, खेल पत्रकार संजय वर्मा और रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर की जिम्नास्टिक कोच सीमा विश्वकर्मा का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप दोनों ने अपने अनुभव और विचार हमारे साथ साझा किए। श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी का कार्यक्रम खेल दर्पण और इस परिचर्चा का विषय था छोटे शहरों की प्रतिभाएं सपनों से सफलता तक का सफर। मैं हूं दीपांकर मिश्र, आपसे फिर मुलाकात होगी खेल दर्पण में एक नए विषय और नई खेल चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज कलाकार हैं पंडित नारायण राव व्यास। आइए सुनते हैं इनका राग हमीर में ख्याल। विलंबित रचना एक ताल में है। बोल हैं ढीट लंगरवा कैसे घर जाऊं। द्रुत रचना तीन ताल में। बोल हैं करण चाहूं रघुपति गुण गाथा।

Mama,

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित नारायण राव व्यास का राग हमीर में ख्याल। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गैला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। होती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तर्फ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉलफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
3: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
1: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने